सुप्रभात। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 462.9 मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

देशभक्ति सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हमारे दिलों की धड़कन है। ये उस मिट्टी का कर्ज है जिसने हमें पहचान दी है। आइए अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ पल निकालें और उन वीरों को नमन करें जिनकी वजह से हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं।

संसार एक मेला है जहां हम अक्सर खुद को भूलकर बाहरी चकाचौंध में खो जाते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो परमात्मा तो तुम्हारे भीतर ही मुस्कुरा रहा है। तो चलिए इस भागती दौड़ती जिंदगी में दो पल ठहरते हैं और आनंद लेते हैं इस परम सत्य से भरे निर्गुण।

अब चलिए इस सांसारिक दुनिया के शोर को थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ते हैं और अपने मन के आंगन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्वागत करते हैं।

गोविंद को खोजने निकलेंगे तो शायद रास्ता भटक जाएं, लेकिन अगर गुरु का हाथ थाम लिया तो गोविंद खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर उस परम शक्ति अपने गुरु की वंदना करते हैं और उनके चरणों में शीश झुकाते हैं।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं चिंतन, आलेख किशोर कुमार श्रीवास का और वाचक स्वर मुकाम सिंह चौहान का।
1: अक्सर हम अपने जीवन की सफलता और विफलता को केवल अपने कार्यों से मापते हैं। हम देखते हैं कि हमने क्या किया और हमें क्या मिला, लेकिन क्या हमने कभी अपने उस बीज को देखा है जहां से हर कार्य का जन्म होता है? वह बीज है हमारा इरादा। चिंतन की इस घड़ी में आज हम विचार करेंगे कि हमारा इंटेंट यानी हमारा इरादा हमारे जीवन की दिशा कैसे तय करता है। दो व्यक्ति एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके पीछे का इरादा अलग है तो उनके परिणाम और उनके मन की शांति भी पूरी तरह अलग होगी। एक सर्जन जब चीरा लगाता है तो उसका इरादा जान बचाना होता है, और वही काम जब कोई अपराधी करता है तो उसका इरादा नुकसान पहुंचाना होता है। कर्म एक जैसा दिखता है पर इरादा उसे स्वर्ग या नरक बना देता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा सबकॉन्सियस माइंड हमारे शब्दों से हमारे इरादों को पकड़ता है। अगर आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन मन में ईर्ष्या का इरादा है तो वह प्रशंसा सामने वाले को कभी प्रभावित नहीं करेगी। अक्सर हम कहते हैं कि मेरा इरादा बुरा नहीं था, लेकिन क्या हमने सजग होकर अपना इरादा चुना था? बहुत बार हम अनजाने में स्वार्थ या डर के वशीभूत होकर काम करते हैं। चिंतन का अर्थ ही यही है कि हम रुकें और अपने हर बड़े कदम से पहले खुद से पूछें, मेरा असली इंटेंट क्या है। श्रीमद्

0: गीता में भी निष्ठा और भाव पर जोर दिया गया है। कर्मफल हमारे हाथ में न हो, लेकिन कर्म का भाव या इरादा पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। जब हमारा इरादा नेक होता है तो संघर्ष के समय भी हमें आंतरिक शक्ति मिलती है, क्योंकि तब हमारा लक्ष्य केवल जीतना नहीं बल्कि सही होना होता है। नेक इरादा वह ढाल है जो असफलता के समय में भी हमें टूटने नहीं देती। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी के लिए नेक इरादे से प्रार्थना करते हैं तो उसे हमारी बात सुनाई दे या न दे, उसे एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव जरूर होता है। यह विज्ञान भी मानता है कि हमारा इंटेंट एक फ्रीक्वेंसी की तरह काम करता है। यदि आप सुबह घर से इस इरादे के साथ निकलते हैं कि आज मैं जहां भी रहूंगा खुशी बांटूंगा, तो यकीन मानिए इंदौर की ट्रैफिक वाली सड़कें और दफ्तर की फाइलें भी आपको बोझ नहीं लगेंगी। लेकिन यदि इरादा केवल काटना या पूरा करना है तो दिन भर की थकान आपके चेहरे पर साफ नजर आएगी। अक्सर लोग पूछते हैं कि अच्छे इरादे के बावजूद हम असफल क्यों हो जाते हैं। यहां चिंतन की एक और परत खुलती है। इरादा केवल एक विचार नहीं, वह एक प्रतिबद्धता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां यहां सटीक बैठती हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। यह एक अडिग इरादा ही तो था। जब इरादा महान होता है तो मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं। चिंतन का आज का संदेश भी यही है कि हम अपने इंटेंट की सफाई ठीक वैसे ही करें जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं। मन के किसी कोने में छिपा हुआ छोटा सा भी बुरा इरादा या स्वार्थ हमारे पूरे व्यक्तित्व के स्वाद को बिगाड़ सकता है। जैसे दूध के एक बड़े बर्तन को खराब करने के लिए नींबू की एक बूंद ही काफी होती है, वैसे ही हमारे चरित्र को प्रभावित करने के लिए एक गलत इरादा काफी है। आज के चिंतन के इस पड़ाव पर आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे पास हमेशा दूसरों को देने के लिए कुछ न कुछ होता है, चाहे वह एक मुस्कुराहट हो, सांत्वना का एक शब्द हो या बस एक नेक इरादा। जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़े काम करें, बस छोटे छोटे काम बड़े इरादे और साफ नीयत के साथ करें। क्योंकि दुनिया भले ही आपकी सफलताओं की गिनती करे, लेकिन कुदरत हमेशा आपके इरादे का हिसाब रखती है। अपने भीतर के उस छोटे से शुभ इरादे को जगाए रखिए।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख किशोर कुमार श्रीवास का और वाचक स्वर मुकाम सिंह चौहान का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं खेती की बातें। वाचक स्वर डॉक्टर अनुराधा शर्मा का और विषय है बीज चयन, अंकुरण, परीक्षण, बीज उपचार।
2: सभी किसान भाई बहनों के डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों, आज बात करांगा बीज को चयन, बीज की अंकुरण क्षमता और बीज उपचार का बारे में। खेती का उत्पादन में बीज को चयन सबसे महत्वपूर्ण काम है। किसान भाई बहनों के बीज को चयन करते समय इन्हीं बात को ध्यान रखनू पड़े कि बीज संकर नहीं होए, संकर बीज को चुनाव उनके नहीं करनू है। पारंपरिक और स्थानीय बीज की चुनाव आवश्यक है। पारंपरिक और स्थानीय बीज को चुनाव ज़्यादा अच्छो रहे, वे प्रमाण भी है उनको और वे उत्पादन भी अच्छो दे। इक्कासी किसान भाई बहनों के सबसे पहले यह सुनिश्चित करना है कि अपने खेती के लिए सबसे स्थानीय नस्ल का बीज चयन करना है। ये सबसे उच्चतम दर्जा का बीज रहे। स्थानीय बीज खेत होने में अपनी जी जलवायु है उसका अनुरूप रहे, वहाँ की मिट्टी का अनुरूप रहे, अच्छो पोषण दे और बीमारी होने से भी प्रतिबंधित रहे। बीज का चयन का बाद बीज को अंकुरण प्रतिशत मालूम होना बहुत आवश्यक है। इकालिए बीज अंकुरण को परीक्षण करना पड़ेगा। बीज बुआई का पहले किसान भाई बहनों स्थानीय उपलब्ध बीज को अंकुरण परीक्षण करी ले और अंकुरण को प्रतिशत मालूम करी ले। जब बीज होने की अंकुरण क्षमता के बारे में जानकारी मिली जाए तो बीज की बुआई को नियोजन बहुत आसान हो जाए और भविष्य में होने वाला आर्थिक नुकसान से भी हमारा किसान भाई बहनों बची जाए। और बीज अंकुरण क्षमता को परीक्षण करना बहुत ही आसान है और किसान भाई बहनों इके अपना स्तर पर भी करी सके है। किसान भाई बहनों के करनू कही है कि उनने जो बीज रखा है उनमें से 100 दाना गिनी के उनके निकालनू है और उन 100 दाना उनके गीला सूती बोरी के ऊपर रखी के उके बोरा से ढकी के अगला 2-3 दिन उ कपे पानी डालते रहनू है जैसे कि उनमें गीलोपन बने और रहे। दो चार दिन का बाद

0: बोरा से दाने निकाली के 100 दाना में से गिनू है कि कितना में अंकुर फूट गया था। 100 दाना में से जितना दाना में अंकुरण हुयो है वे दाना अंकुरण क्षमता के बताई रहा है, वे साबित कर रहा है कि उनमें अंकुरण क्षमता अच्छी थी। यदि अपन मानी के चला कि 100 में से 70 दाना उगया है तो हमारो अंकुरण को प्रतिशत 70% आयो, अंकुरण क्षमता 70% है। अब यह सुनिश्चित हो जाएगा कि बुआई करता समय हमारे प्रति एकड़ का अनुसार 30% बीज ज़्यादा उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि वो 30% जो बीज अपना उगया नहीं था नहीं तो वहाँ छेटी रह जाएगी। तो पहला बीज की मात्रा अपन बढ़ाई दांगा, जी अपन मालूम है कि बहुत सारा बीज उगा में से नहीं उगेगा तो बीज की मात्रा पहला बढ़ाई दी, तो अब पूरा खेत में फसल एक जैसी लगेगी, छेटी नहीं पड़ेगी कहीं पर भी और उत्पादन भी एक जैसा आएगा और हमारो किसान भाई भविष्य में होने वाली आर्थिक क्षति से भी बची जाएगा, वो आर्थिक क्षति टाली सके अपन। बीज अंकुरण का परीक्षण करना का वैध, अब बीज उपचार करना बहुत आवश्यक है। बीज उपचार भी एक पारंपरिक क्रिया है जो बीज संरक्षण का लिए आवश्यक है। बीज उपचार बीज बुआई का बाद जो बीज उनमें बीमारी और कीट लगे नहीं उनका सी बचाई दे। बीज उपचार से हमारे बीज उनमें अपना शत्रुओं से लड़ने की ताकत आई जाए, ये ताकत पाई के हमारा बीज बहुत अच्छा उत्पादन दे। बीज में मिट्टी से होने वाली बीमारी उनसे लड़ने की ताकत भी मिली जाए। अब यदि हमारा भाई बहन बीज उपचार के लिए कोई प्राकृतिक तरीका का बारे में सोच रिया हो तो हम उनके एक बहुत अच्छी विधि बताई दा। इका में गाय को गोबर उनके 3 किलो लेनू है, गोमूत्र 3 लीटर लेनू है, हल्दी 50 ग्राम और पानी जरूरत के हिसाब से जितना आवश्यक है उतना ले ले और ये सब चीज़ें उनके मिट्टी या प्लास्टिक का ड्रम में डाली के अच्छा तरीके से हिलाई के तैयार कर ले, मिलाई ले और 24 घंटा तक इके ढकी के रखी दे। अब 24 घंटा का बाद ये जो द्रव्य तैयार हुए है इमें बीज के उपचारित कर ले। उपचारित करना के लिए बीज के वो में डुबई के 3-4 घंटा तक अच्छा सूखने दे और सूखना के बाद बीज की बुआई वे करी सके। ये गाय को गोबर गोमूत्र हल्दी और पानी से जो ये उपचार को घोल अपन ने जो तैयार करे थे नहीं इक्कासी कही है कि बीज प्रक्रिया बहुत आसान हो जाए, बीज को अंकुरण बढ़ी जाए, फसल की प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छी हुई जाए, मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ी जाए और सबसे अच्छी बात मिट्टी में जीवाणु उनके विकास के लिए अच्छा उपयुक्त वातावरण उनके मिली जाए। तो यदि अच्छा बीज को चयन हमारा किसान भाई बहन कर ले, अंकुरण क्षमता की जानकारी ले ले न फिर बीज उपचार का बाद यदि उन्हें बीज के लगाएगा तो निश्चित रूप से उनके उत्पादन में बढ़ोतरी मिलेगी। आज किसान भाई बहनों से हमारो योज कहनू है।
1: आप सुनाई थी खेती की बातें, विषय था बीज चयन अंकुरण परीक्षण बीज और उपचार, वाचक स्वर डॉक्टर अनुराधा शर्मा का। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है। विडंबना यह है कि आत्मग्लानि के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया।

अभी आप श्री रामचरित मानस कांड का आज का प्रसंग सुन रहे थे। गायक स्वर कविता कृष्णमूर्ति का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:20 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल। 8:30 पर सुनिए विविधा। आप सुनेंगे रमन रावल, पूजा चौरसिया और होशन सौराब जी हवलदार को। इनसे बातचीत करेंगे ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी। 9:00 लोक संगीत में कलाकार हैं रणजीत मालवीय और साथी। 9:15 पर सुगम संगीत में सुनिए श्रद्धा जगदाब को। 9:30 शास्त्रीय संगीत में सुनिए बसवराज राजगुरु का गायन, राग है शुद्ध सारंग। सुबह 10:00 होगी जिले की चिट्ठी और 10:05 पर हम लेकर आएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम है सुबह 11:00 फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। इस घंटे के खास खबरें 11:58 पर, 12:58 पर और 2:58 पर। फिल्म संगीत सुनिए 12:00। 1:00 होगा महिला कार्यक्रम। आप सुनेंगे आरंभिक चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस पर चर्चा, स्टैंड अप इंडिया मिशन पर जानकारी होगी। मेरी उड़ान क्रम में सुनी योगा टीचर माया खिलवाड़िया से दीप लक्ष्मी की बातचीत। रूप लावण में जानिए इन सब चीज़ों के बारे में और फूड जोन में मैंगो मलाई कुल्फी रेसिपी के बारे में आप सुन सकेंगे। 1:30 पर सुनिए लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत का प्रोग्राम होगा। 2:00 होगा फिल्म संगीत। 2:30 पर सुनिए आपकी फरमाइश और 5:00 युवाणी में युवा साथी सुनेंगे आज के क्रम में हमारे शहर मुरैना के बारे में और इसके साथ ही फिल्म संगीत होगा। 5:45 पर हम लेकर आएंगे फिल्म संगीत का प्रोग्राम।

शाम 6 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। 6:30 बजे सुगम संगीत में कलाकार है श्रद्धा जगताप। और 6:45 पर लोक संगीत में सुनिए रणजीत मालवीय और साथियों को। 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा, आप सुनेंगे ऋषभ जैन का कविता पाठ। साथ ही जानकारी होगी आयुष्मान भारत योजना पर। रात्रि 8 बजे हम लेकर आएंगे आपका पसंदीदा प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। 9:15 पर होगा चित्र गीत और 9:30 बजे उर्दू कार्यक्रम कहकशां हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे होगा पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम मन भावन। 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत में सुनिए प्रवीण गोट हिंडी का बांसुरी वादन, राग है पूरिया कल्याण। आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: श्रोताओं, आपको पुनः याद दिला दें, सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन, जिसमें आप फोन करके अपनी पसंद के फिल्मी नगमे सुन सकते हैं। हमारे फोन नंबर से 2710223 और 2710224, इंदौर का सिटी कोड है 0731। तो फोन करना ना भूलें, हमें आपकी फोन कॉल्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। संस्कृत समाचारों के ठीक बाद हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः संबंधः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्य अनन्तरं श्रम, प्रवास, डिजिटल, तंत्रज्ञान, रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनम् संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् संबंधानाम् उन्नतिः सह विश्वासानाम् प्राथमिकतानाम् भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायाम् यात्रायाम् श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरम् कृतवन्तौ।
2: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्री के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्ष्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस

0: फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर गोजेना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो कार्डो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: और सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की तो
1: यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात। युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: इस समय आप हैं हमारे साथ।
4: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
5: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र, मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपको बता दें, सुबह 10:05 से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन, जिसमें आप फ़ोन करके अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का सिटी कोड है 0731। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह सचिव ने नीट UG पुनः परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने संस्कृति विभाग से सभी समाजों की परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय, आज ग्वालियर भोपाल समेत 30 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। इस पुरस्कार को श्री मोदी ने गर्मजोशी, विश्वास और भारत तथा स्लोवाकिया के लोगों को एकजुट करने वाले प्रेम का प्रमाण बताया। इससे पहले उन्होंने भारत स्लोवाकिया संबंधों को लेकर संबोधित करते हुए कहा कि
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे के तीसरे चरण में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भाग लेंगे, जिसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। इस सत्र में G7 देशों के नेताओं, सहयोगी देशों के प्रमुखों और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के निमंत्रण पर फ्रांस के एवियन शहर का दौरा भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत G7 शिखर सम्मेलन में 13वीं बार हिस्सा ले रहा है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार इसमें शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा को लेकर उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम कल घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि पिछले वर्ष 1087 रिक्तियां थीं और मुख्य परीक्षा के लिए 14000 से अधिक उम्मीदवारों को चयन किया गया था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल मंत्रालय में हुई बैठक में संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 6-7 माह में बड़े त्यौहार, सांस्कृतिक पर्व एवं मेले मनाए जाएंगे। ये सभी त्यौहार हमारी धार्मिक आस्थाओं और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक हैं। इन सभी अवसरों पर संस्कृति विभाग सभी समाजों को उनकी आस्थाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़कर वृहद आयोजन करे। प्रदेश में वर्ष 2025-26 की कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा आज से शुरू हो रही है। ये 23 जून तक चलेगी। इस परीक्षा में सत्र 2025-26 की मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदेश भर में कुल 2795 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। कक्षा 5वीं की पुनः परीक्षा में लगभग 1,17,000 से अधिक और कक्षा 8वीं के लगभग 1,32,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश को एग्रो सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में कल नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और जर्मन सरकार समर्थित इंडो जर्मन एग्री वोल्टाइक सहयोग परियोजना के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया गया। इसमें बताया गया कि एग्री वोल्टाइक कृषि एवं सौर ऊर्जा के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया एक संगठन है, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि पर खेती के साथ साथ उसी खेत में ही सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है, ताकि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता कम हो, खाद्य सुरक्षा बनी रहे तथा भूमि संबंधी विवादों से भी बचा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के शीर्षक से एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: छत्तीसगढ़ में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एवं सब जूनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 12 से 14 जून तक आयोजित इस प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के खिलाड़ियों ने 25 स्वर्ण, 11 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 39 पदक अर्जित किए। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बेटों और बेटियों ने सभी 4 वर्गों में चैंपियनशिप जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून इस हफ्ते दस्तक दे सकता है। उससे पहले राज्य के बड़े हिस्से में प्री मानसून की गतिविधियां सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए भोपाल, ग्वालियर समेत करीब 30 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कन्या क्रीड़ा परिसर में बड़ी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत छात्राओं का चयन 22 जून से 26 जून तक किया जाएगा। नर्मदापुरम के पचमढ़ी वायसन लॉज में आज उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जिला प्रशासन के द्वारा आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा पन्ना के पवई विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम में संवाद करेंगे। मंडला में आज समान नागरिक संहिता के उच्च स्तरीय समिति सदस्य बुधपाल सिंह आरडी कॉलेज में आयोजित जन परामर्श समिति बैठक में शामिल होंगे। डिंडौरी में उत्कृष्ट विद्यालय मैदान करंजिया में जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। सतना में पल्स पोलियो अभियान के लिए कुल 1809 टीकाकरण बूथ, 7 ट्रांजिट बूथ और 26 मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। और आगरमालवा जिले के कानड़ स्थित प्राचीन हनुमान बावड़ी पर बावड़ी उत्सव और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे फ्रांस। केंद्रीय गृह सचिव ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संस्कृति विभाग से सभी समाजों की परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम करने का किया आह्वान। और प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय, आज ग्वालियर और भोपाल समेत 30 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र, जिसे आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल।

श्रोताओं, सुबह का वक्त बेहद ख़ास होता है क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ कई उम्मीदें भी जाग जाती हैं। हर नए दिन के साथ नई ताजगी और नए सपने भी दस्तक देने लगते हैं और विश्वास भी कि जिंदगी भी तरोताज़ा हो जाती है। तो इस सुबह में जो आपको तरोताज़ा कर देने वाली है

जबहर ने आपकी रेडियो दोस्त माजिदा खान स्टूडियो में हाजिर हो गई है। तो आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुरुआत करते हैं सुनहरे पल प्रोग्राम की।

सत्यम शिवम सुंदरम, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना आनंद बख्शी की, सुरों में पिरोया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आप सुन रहे थे हसरत जयपुरी का लिखा गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की, फिल्म का नाम था बेटा बेटी।

0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: पर सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

फिल्म में हम दोनों का ये खूबसूरत सा नगमा आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा साहिर लुधियानवी ने।

आप सुन रहे थे फिल्म त्रिशूल का गीत लता मंगेशकर और यशोदास के स्वर में, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार खयाम। और आइए अब सुनते हैं फिल्म ममता का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की।

आप सुन रहे थे फिल्म ममता का ये गीत लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के स्वर में। गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने। और अब प्रोग्राम का आखिर गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म भरोसा से, आवाज़ लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
2: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यार्स का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री

0: मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनुप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बमवर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेटनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Slovakia confers its highest honor, Order of the White Double Cross, First Class.

0: श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विविधा कार्यक्रम के विविध रंगों में आज का पहला रंग हम भरने वाले हैं रमण रावल जी से। रमण रावल लेखक हैं और पत्रकार हैं और अलग अलग विषयों पर उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। और इतना ही नहीं, उनकी कुछ पुस्तकें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के ऊपर आधारित हैं वो भी बड़ी लोकप्रिय हैं उनकी, और अन्य पुस्तकें भी हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि कौन कौन से लेखन कार्य उन्होंने किए हैं और उनकी कुछ रुचियों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो रमण रावल जी, आकाशवाणी के स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार
0: रमण जी। इतनी सारी पुस्तकें आपने लिखी हुई हैं और कुछ विशेष पुस्तकें जो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी आपने लिखी हैं, तो वो कौन सी पुस्तकें हैं और उनका कंटेंट क्या है, हमें बताइए।
1: दरअसल मोदी जी पर 3 किताबें लिखी हैं मैंने। पहली किताब 2014 में आई थी जब प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद में जुलाई में उसका लोकार्पण किया था, मोदी युग उसका शीर्षक था। मैं दरअसल 2011 से मोदी जी पर लेख लिख रहा था अलग अलग अखबारों में, उन्हीं का संकलन उसमें प्रस्तुत किया था। और मेरा ये अनुमान, ये विश्लेषण उन लेखों में रहता था कि एक ऐसे व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जो भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो। उन आकलनों का संकलन था वो किताब। फिर 2014 में आई थी, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट भी की है। उसके बाद 2019 में मैंने, जब उनका दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ, युग युग मोदी शीर्षक से किताब लिखी थी, उसमें भी मेरे लेखों का ही संग्रह है। 2014 से 2019 तक जो आलेख मैं मोदी जी पर केंद्रित करते हुए, उनके व्यक्तित्व पर, विदेश में उनको लेकर जो आकर्षण है, देश में जो विकास और तरक्की हुई है उनके नेतृत्व में, उस पर केंद्रित जितने भी आलेख थे उनका समावेश फिर उसमें था। ताज़ा पुस्तक मेरी अभी इसी 2024 में आई है, वो युग पुरुष मोदी के नाम से है। इस तरह से 3 किताबें मोदी जी पर केंद्रित आई हैं अभी तक मेरी।
0: जब आप ये पुस्तकें माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है इन पुस्तकों को लेकर?
1: देखिए, वैसे तो किसी भी व्यक्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री से मिलना निश्चित रूप से एक काफ़ी संतोष और गौरव का पल होता है, पर मैंने जो महसूस किया, मतलब मैं आपको मोदी जी के बड़प्पन को बताना चाहूँगा कि पहली मुलाकात खंडवा एयरपोर्ट पर हुई थी, वहाँ संत सिंगाजी पावर प्लांट के कार्यक्रम में वो आए थे, मुझे समय मिला था तो वहाँ उनको किताब भेंट की थी मैंने। तो वो किताब भेंट करने के बाद में, अब चूँकि पत्रकारिता जीवन रहा है 1979 से, 45 साल का जीवन हुआ है, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनसे यूं मिलना होता है, लेकिन समूह के तौर पर व्यक्तिगत मुलाकात किसी प्रधानमंत्री से पहली बार थी। तो ये उनका बड़प्पन था कि जब वो गाड़ी से उतरे तो काफ़ी दूर से ही उन्होंने मुझे नाम से बोल कर बोला कि आपके कैसे हाल चाल हैं। ठीक है, नाम होता है प्रधानमंत्री के पास सभी का, लेकिन आमतौर पर किसी को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करते हुए नहीं हम पाते हैं, तो ये उनके बड़प्पन की पहली निशानी थी। फिर किताब भेंट की, वो विदा हो गए, विदा हो रहे थे, तब जो है फिर मुझे ध्यान आया कि प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकात हुई लेकिन उनके साथ में कोई तस्वीर अपन नहीं ले पाए। मोबाइल का दौर तो आ ही गया था, मोबाइल मेरे पास में था, तो मैंने उनसे निवेदन किया तो हेलीकॉप्टर से पलट कर आए वो सीढ़ियों पर से, और मेरे हाथ से मोबाइल लेकर कैमरामैन को दिया और तस्वीर खिंचवाई उन्होंने। एक और इसी से जुड़ा एक प्रसंग है जो उनका बड़प्पन को दर्शाने वाला है, ये मेरी कोई उपलब्धि या मैं कोई अपना वो नहीं बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि चूँकि उनके हस्ताक्षर लेना भूल गया था मैं किताब पर, तो इंदौर जब लौटा वहाँ से तो फिर मैंने सोचा कि 2 किताबें मैं फिर से भेजता हूँ और निवेदन कर देते हैं, कभी हो गया तो ठीक है। तो करीब 15-20 दिन बाद फिर से किताब पर हस्ताक्षर करके भी उन्होंने भेजे और उसमें एक टिप्पणी लिखी थी, वो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी, मतलब मेरे लिए उपलब्धि है वो और उनकी महानता है। उसमें उन्होंने लिखा था कि प्रिय रमण जी, कुछ ही देर आपसे मिलना हुआ, आपके प्रेम के लिए आपका आभारी हूँ। तो ये बताता है कि आज देश और दुनिया में उनके प्रति जो सम्मान और आकर्षण है वो उनके बड़प्पन की वजह से, उनकी विनम्रता की वजह से, उनके सरलपन की वजह से।
0: जी बिल्कुल। इसके अलावा और कौन कौन सी पुस्तकें आपने लिखी हैं? काफ़ी लेखन कार्य आपका चलता रहता है।
1: मैंने इंदौर पर केंद्रित 3 किताबें लिखी है, इंदौर के सितारे शीर्षक से
0: जी,
1: और उसमें विभिन्न क्षेत्र के व्यक्तियों को शामिल किया है उनकी सक्सेस स्टोरी है। मैं प्रोफेशनल व्यापारी उद्योगपति
0: कुछ नाम उसमें से ले सकते हैं आप, कौन है इंदौर के सितारे?
1: इंदौर के सितारे मैंने कहा ना कि बहुत सारे जो है वो लोग इसमें शरीक हैं, और अगर मैं आपको जैसे इंदौर के सितारे
0: कुछ नाम ले लीजिए उसमें से,
1: जो विनोद अग्रवाल जी हैं जिनकी गिनती मिलेनियर के तौर पर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े मिलेनियर के तौर पर हुई है, उनको मैं ले चुका हूँ 2018 में। इस तरह से जो है मिठाई के कारोबार से, उद्योगों से, समाज सेवा से, ऐसे अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं, कला से, संस्कृति से, ऐसे कई नाम उसमें रहे हैं
0: जी।
1: तो वो चूंकि अब पत्रकारिता जीवन इतने बरसों का रहा है, शहर में लोगों को काम करते हुए देखा है, तो एक थोड़ा सा स्पष्टता ये हो जाती है कि किन चरित्र को इसमें शामिल करने से किताब की भी ग्रेस बढ़ेगी और ऐसे पात्रों के जीवन के संघर्ष को आप समाज के सामने लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोग उससे प्रेरणा ले सकें।
0: बतौर पत्रकार और बतौर लेखक कौन सी भूमिका ज़्यादा गंभीर होती है?
1: भूमिका एक ही है, दोनों में मूल काम लिखना ही है। पत्रकारिता में यह है कि आप खबर लिखते हैं, लेख लिखते हैं, संपादन करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा अलग मामला है। लेकिन अब जब 2015 के बाद मैंने स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता और लेखन का काम शुरू किया, किताबें भी उसके बाद ही लिखी है मैंने, तो उसमें बंधा हुआ काम नहीं है लेखन में जो इस समय आप कर रहे हैं। वो आपके समय, आपकी सुविधा, आपके विषय चयन, इन सबको ध्यान में रखकर और उस पर काम किया जाता है। दोनों के दायरे अलग हैं
0: जी। और चुनौती भरे अगर हम लम्हे कहें दोनों में, लेखन में और पत्रकारिता में, तो कोई स्मृतियां आपकी हों पत्रकारिता से लेकर और लेखन कार्य को लेकर, तो वो भी हमारी श्रोताओं के साथ आप बताइएगा।
1: देखिए, पत्रकारिता का तो जीवन ही जो है चुनौतियों का होता है दैनंदिन, खासकर जब आप फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तब कई तरह की चुनौतियाँ और मुश्किलें होती है।
0: हाँ हाँ।
1: और ऐसा कोई बहुत बड़ी चुनौती के रूप में कोई बात सामने आई हो वो तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन दैनंदिन कार्य में जो संकट होते हैं, मतलब आप जो चाहते हैं वो आपको मिले ऐसा आवश्यक नहीं होता है, कई बार आप खाली हाथ भी रह जाते हैं, तो चुनौती तब शुरू होती है जब आप शाम में अपने दफ्तर पहुंचते हैं और आपके पास करने को या देने को, संपादक को बताने को, या आप संपादक हैं तो क्या विशेष आप अखबार में दे सकते हैं, ये उस दिन ही सामने आता है और उसी दिन आपको तय करना पड़ता है। अखबार का जीवन बड़ा संक्षिप्त होता है, आप जानते हैं कि उन्हीं 24 घंटे में आपको सब कुछ करना है और फिर आगे बढ़ना है।
0: आपके संपादक ने कभी कोई ऐसा काम आपको सौंपा हो कि बहुत जोखिम भरा हो, बहुत चुनौती भरा हो, और फिर आपने वो करके दिखाया हो, ऐसी कोई स्मृतियाँ आपकी हैं?
1: नहीं, ऐसा विशेष तो वाकई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो काम जो है एक दायरे के भीतर रहता है और सबकी अपनी जिम्मेदारियां तय कर दी जाती हैं, समय सीमा सबको मालूम है जो इस पेशे में आता है
0: जी।
1: वो पहले दिन भले ना जानता हो लेकिन धीरे धीरे उसको ये समझ उसकी विकसित होती है कि आपको अपना काम तय समय में करना है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको बात के लिए भी टाला जा सकता है, ऐसा होता है।
0: लेखन में अभी और कितना खजाना आपके अंदर भरा हुआ है, किन विषयों के ऊपर, किन क्षेत्रों के ऊपर या किन व्यक्तित्वों के ऊपर अभी आपका लेखन कार्य बकाया है?
1: मैं कुछ ऐतिहासिक पात्रों के बारे में, मैंने अभी कोई अध्ययन शुरू नहीं किया लेकिन मन जरूर है कि उनके बारे में कुछ लिखा जाए, और वो अभी सोच के स्तर पर है, अभी कोई संदर्भ नहीं खंगाले हैं मैंने, कोई उसकी भूमिका नहीं बनाई है, पर है इच्छा कि मैं ऐतिहासिक पात्रों को लेकर और खास करके जो देश में जिनका स्वतंत्रता के लिए जो गुलामी के दौर में हमारे महापुरुष हुए हैं, या आध्यात्मिक चेतना जिन्होंने जगाई है, ऐसे महानुभावों पर लिखने की बहुत इच्छा है। मुझे पता नहीं मैं इसमें सफल हो पाऊँगा भी नहीं या कर पाऊँगा भी कि नहीं, क्योंकि अभी तक जो किया है वो राजनीतिक लेखन है, सामाजिक लेखन है
0: जी,
1: और ये एक विशिष्ट तरह का रहेगा जिसमें पहले मुझे अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार

0: पड़ेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा।
1: कोई नियमित तौर पर भी लेखन आपका होता रहता है, या कभी जब एक मिशन की तरह किसी पुस्तक को लिखना होता है तब लेखन कार्य शुरू
0: नहीं,
1: करते
0: लेखन
1: हैं?
0: तो नियमित रूप से मेरा बना हुआ है, और उसकी वजह यह है कि जो सोशल मीडिया का युग आया है, तो ब्लॉग, व्हाट्सएप, फेसबुक, पोर्टल्स, तो मैं नियमित रूप से जो है पोर्टल्स के लिए लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कुछ अखबारों में भी मेरे आलेख आते हैं
1: जी। और किस तरह की आपकी अभिरुचियाँ हैं, और क्या आपको अच्छा लगता है करना लेखन और पत्रकारिता के
0: लेखन के
1: अलावा?
0: अलावा संगीत में रुचि है, सुनना बहुत अच्छा लगता है। प्रयास करता हूँ कि इंदौर में जितने भी अच्छे कार्यक्रम हों उनको जरूर जाकर सुना जाए, और ये सिलसिला बरसों से, मतलब आप समझ लीजिए कि पत्रकारिता के साथ साथ में ये रुझान बना रहा है, और इंदौर आने वाले लगभग सभी महान गायक, संगीतकार, इन सबको समीप से देखने का, मिलने का, सुनने का अवसर मिला है। बहुत भाग्यशाली समझता हूँ मैं अपने आप को इसमें।
1: तो फिर क्यों ना कुछ गुनगुनाएं हमारे श्रोताओं के लिए आप,
0: नहीं,
1: दो चार लाइनें?
0: मैं गायक नहीं हूँ, तो मैंने कहा ना कि वो भूमिका जो है।
1: आप गायक नहीं हैं, लेकिन जिस भी सुर में आप गाना चाहें जरा दो लाइनें गुनगुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए।
0: चलिए, आप कह रहे हैं तो मैं बोल देता हूँ। वो बोल नहीं रहेगा दरअसल, गाना तो क्या रहेगा वो।

0: कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर, मुझे जीने दो।
1: काफी पुराना गाना है लेकिन आपके दिल के करीब है।
0: अच्छा लगता है।
1: तो रमण जी, और हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहते हैं आप अपने बारे में?
0: मेरे बारे में तो बताने जैसा कुछ नहीं है, मतलब ये आकाशवाणी का मैं आभारी हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया, यहाँ बातचीत के लिए बुलाया। और
1: तो अगली पुस्तक अब हम कब तक कई प्रतीक्षा करें कि अगली पुस्तक आपकी
0: प्रयास है
1: आएगी?
0: कि 2025 में, और अब मैं साहित्य की तरफ भी कदम बढ़ाने की सोच रहा हूँ, तो हो सकता है अगली पुस्तक मेरी साहित्यिक विषय पर हो।
1: तो श्रोताओं, ये थे रमण रावल साहब, जो कि पत्रकार भी हैं और लेखक भी हैं, और लेखनी बहुत अच्छी करते हैं, और प्रधानमंत्री जी के बारे में इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, और जो कि खुद प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सराही गई हैं। तो रमण जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

कामों में सबसे आगे रहने वाली। उसके अंदर हमेशा से कुछ बड़ा करने का जुनून था। रेडियो और अखबारों में आने वाली सफलता की दास्तानों से वो बहुत प्रभावित होती। इन दास्तानों से प्रभावित होकर चंदा ने एक सपना देखा। सपना सरकारी अफसर बनने का। सपना अपने आसपास के माहौल को बदलने का। सपना लोगों की लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच बदलने का। और सपना उसके जैसी हजारों लड़कियों के लिए एक मार्ग खोलने का, जिन्हें केवल घर के कामकाज तक सीमित रखकर उनकी असीम क्षमताओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। चंदा पढ़ाई में औसत थी, पर उसे ये विश्वास था कि किसी भी क्षेत्र में अगर वो जी जान से मेहनत करे तो उसमें वो सफलता ज़रूर हासिल करेगी। फिर क्या था, चंदा ने हर जगह से जानकारी निकालना शुरू की और परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में खोजबीन जारी की। चूंकि गांव में पढ़ाई लिखाई के लिए ना तो उस स्तर के संस्थान थे और ना ही संसाधन, इसीलिए चंदा के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। चुनौती शहर जाकर परीक्षा की तैयारी करने की। चंदा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जिनके लिए शहर का खर्चा उठा पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। चूंकि चंदा ने ठान लिया था कि वह शहर जाकर अपने सपने को साकार करेगी, अतः बहुत सोच विचार और मंथन के बाद परिवार वालों ने चंदा का साथ दिया। माँ पापा भाई बहन सब ने चंदा पर विश्वास जताया और उसका हौसला बढ़ाया। चंदा शहर आई। शहर की चकाचौंध, भौतिकवादी प्रकृति चंदा ने पहली बार महसूस की। मामूली से गांव में रहने वाली लड़की शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगी। यहाँ उसे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर काम अकेले करना था। नया शहर, नए लोग, शुरुआत में चंदा को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके दृढ़ विश्वास के कारण वो हर कठिनाई को पार करती गई। शुरुआत में अकेलापन लगा, फिर धीरे धीरे उसके नए दोस्त बनते गए, जिनसे वो अपनी भावनाएं साझा करती, हंसी ठिठोली करती और पढ़ाई करती। परीक्षा के दिन नज़दीक थे। चंदा ने जी जान लगाकर तैयारी की। सुबह से शाम वो अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगी रहती। पहले ही प्रयास में चंदा ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली और दूसरे पड़ाव की तैयारी में लग गई। कुछ ही महीने गुजरे थे कि चंदा ने एक और प्रारंभिक परीक्षा भी पास कर ली। चंदा के परिवार वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि उनका विश्वास सच साबित हो रहा था। चंदा के हृदय में भी एक सकारात्मक लहर ने दस्तक दी। उसका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर था। परंतु कहते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। ठीक वैसे ही चंदा के जीवन में वो मोड़ आया जो उसकी कल्पना से परे था। रिजल्ट का दिन आया और चंदा दोनों परीक्षाओं में असफल हो गई। उसके पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई थी। उसका दिमाग कुछ सोच पाने की हालत में नहीं था। एक दो दोस्तों के अलावा किसी ने उसका साथ भी नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि चंदा ने मेहनत नहीं की थी, पर शायद वो अपना शत प्रतिशत नहीं दे पाई। परिवार वालों को इसकी सूचना देना सबसे कठिन काम था, लेकिन चंदा ने हिम्मत करके घर पे अपनी असफलता की सूचना दी। चंदा को डर था कि परिवार में कोई उसका साथ नहीं देगा, जो कि गलत साबित हुआ। उसके परिवार में सब ने उसका साथ दिया और उसे समझाया कि हार जीत तो जीवन का हिस्सा है और ये अभी तुम्हारे शुरुआती प्रयास ही थे, अभी से दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। चंदा की भीगी आंखों में जैसे चमक सी आ गई। उसके शिथिल शरीर में मानो ऊर्जा का प्रवाह हो गया। चंदा ने एक बार फिर से कमर कसी और फिर से तैयारी में लग गई। सुबह शाम अब उसे केवल एक ही ख्याल आता कि कैसे भी करके उसे अपने मुकाम तक पहुंचना है। इन असफलताओं ने चंदा को सिखाया कि वो क्या गलतियां कर रही थी। चंदा ने इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाया और परीक्षा दी, लेकिन तीसरे, चौथे और पांचवें प्रयास में भी वह कभी एक, दो तो कभी तीन नंबरों से पीछे रह जाती। लगातार मिल रही असफलताओं का असर चंदा के व्यक्तित्व पर इस कदर हुआ कि वो धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खोने लगी। समय का पहिया चलता गया और चार पाँच साल ऐसे गुजरे

0: भी कल की ही बात हो। दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों के ताने चंदा को चुभने लगे। परिवार से भी अब दबाव आने लगा। आखिर उसके परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां थी। रिश्तेदारों और समाज के लोगों की बातें, असफलता का कलंक चंदा को अंदर ही अंदर निचोड़ने लगा। और अब वो दौर आया जब चंदा सकारात्मकता के खुले आसमान की जगह नकारात्मकता के घने बादलों में खोने लगी। उसे अपने आसपास केवल अंधकार नजर आने लगा। काल के चक्र में चंदा ऐसी फंसी कि उसे अब उम्मीद की कोई किरण दूर दूर तक नजर नहीं आती दिखाई दी। इस अवसाद के चलते चंदा वो कदम उठाने चल दी जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। चंदा के व्यथित मन में अपनी जीवन लीला समाप्त करने के ख्याल घूमने लगे। उसकी नकारात्मकता किसी चील कौओं की तरह उसके अंतर मन को नोचने लगी। चंदा आत्महत्या करने के दो कदम ही दूर थी कि अचानक से उसकी माँ का फोन आया। कहते हैं माँ की ममता में वो शक्ति होती है कि वो अपने बच्चों के साथ होने वाली चीज़ों को भी भांप लेती है। चंदा अपनी माँ का फोन उठाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो चीखी, चिल्लाई और इतने वक्त से जो बातें उसे परेशान कर रही थी वह कह डाली। चंदा की माँ ने उसके व्यथित मन को शांत किया। जहाँ सब लोग उसे असफलता के बल पर हीनता की भावना से देख रहे थे, वहीं उसकी माँ ने उसे सांत्वना देते हुए संभाला। चंदा के विचलित मन ने गहरी सांस ली और अपनी माँ की कही बातों पर विश्वास कर उसने फिर से उठ खड़े होने का निश्चय किया। इस क्षेत्र में ना सही, किसी और क्षेत्र में पूरी लगन से फिर से प्रयास करने का चंदा ने संकल्प लिया और उस नकारात्मकता के साए से बाहर निकलकर एक बार फिर से मेहनत में लग गई। दोस्तों, चंदा कोई और नहीं बल्कि मैं, आप और हमारे जैसा हर वो व्यक्ति है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर उसे कहीं असफलता हाथ लगती है तो पूरा समाज उन्हें सताने लगता है। वो ये जता देते हैं कि सफलता सामूहिक परंतु असफलता व्यक्तिगत होती है। आपकी असफलता पे समाज आपकी सालों की मेहनत को सिरे से नकार देता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सफलता असफलता जीवन का एक भाग मात्र है, संपूर्ण जीवन नहीं। अतः समाज के डर से या दबाव में आकर कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो अनुचित हो, क्योंकि असफलता केवल तब तक तकलीफ देती है जब तक हम उसे खुद पर हावी होने देते हैं। एक बार उसे चुनौती मान लिया जाए तो वही असफलता हमें सफलता की ओर धकेलने लगती है। तो दोस्तों, अपने काम में लगे रहिए क्योंकि सफलता किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आपके आसपास ऐसे दोस्त हैं जो अवसाद से ग्रसित हैं तो उनकी सहायता करिए और उन्हें अंधकार से उबरने में मदद करिए। धन्यवाद।
1: पूजा चौरसिया की इस कहानी के बाद अब हम जानेंगे बुरहानपुर की ऐतिहासिक और पौराणिक महत्ता के बारे में।
2: तापी महापुराण, सबसे पहले तो हमें उसको समझना होगा और उसके समझने के लिए है बुरहानपुर। त्वमेव माताश पिताश त्वमेव, त्वमेव बंधुश सखाश त्वमेव, त्वमेव विद्यायनाम द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। ताप्ती तटो पश्चिमी तीरे प्राचीनतम ब्रघ्नपुर नगरे, प्राचीन ब्रह्मपुर नगरे पुरातनस्य बसानपुर स्थले वर्तमानस्य बुरहानपुर शहरे, अहम होशंग सोराबजी हवलदार समस्त जनानाम च स्वागत करीशे। दोस्तों, अगर हमें आसिरगण को समझना है तो हमें बुरहानपुर को भी समझना पड़ेगा। तापी घाटी सभ्यता का यह नगर भ्रघ्नपुर अर्थात सूर्यपुत्र, त्रेता युग में भृगु ऋषि की तपोभूमि, ब्रह्मज्ञानी भृगु ऋषि जिन्होंने भृगु संहिता की रचना की उसकी वजह से इस नगर का नाम ब्रह्मपुर पड़ा। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब वे यहाँ पर सांदीपनी ऋषि के अपने गुरु के साथ में यहाँ पर कुछ पूजा पाठ करने के लिए सूर्य ग्रहण का ताप उतारने के लिए यहाँ आए तो उनके श्रीमुख से तापी माँ के शरण में जाने पर मात उनके मन निकला कि माँ तेरी गोद में आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बसानपुर आ गया और इस नगर का नाम हुआ बसानपुर। और उसके बाद में मिडवेल में जब यहाँ पर फारूकी बादशाहत आई तो 1407 में नासिर खां फारूकी ने इस नगर का नाम बदल करके किया बुरहानपुर। हमारे तापी महापुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि यहाँ का जो गुप्तेश्वर मंदिर है वो अत्यंत प्राचीनतम है, इसकी महिमा काशी विश्वनाथ जी से भी अधिक है। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों कहा गया है? इसका कारण यह है कि गंगा माँ पृथ्वी पर भागीरथ जी के आह्वान पर त्रेता युग में अवतरित हुई, किंतु हमारी माँ तापी जो है, जो पृथ्वी की आदि गंगा कहलाती है, वो सतयुग से ही गुप्तेश्वर मंदिर से प्रवाहित होती रहती है। इस वजह से इस गुप्तेश्वर मंदिर की महिमा को काशी विश्वनाथ जी से अधिक कहा गया। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया कि जब भी यह महाआरती होती है तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश उस महाआरती में उपस्थित होते हैं, अर्थात यह सिद्ध करता है कि वह काल सतयुग का काल। गुप्तेश्वर मंदिर, कौन सा गुप्तेश्वर मंदिर, उसके बारे में भी तापी महापुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि वह गुप्तेश्वर मंदिर जिसके बाईं ओर नागेश्वर का मंदिर, जिसके पीछे की ओर कामेश्वर का मंदिर, जिसके दाहिनी ओर कई शिवालय, वह गुप्तेश्वर मंदिर जहाँ अश्वत्थामा ताप्ती नदी में स्नान कर गुप्तेश्वर के दर्शन कर बिल मार्ग से आसा दुर्ग में जाकर शिवजी की आसिरेश्वर की पूजा उपासना करते हैं। शब्दों का चयन आप देखिए कि बिल मार्ग यानी सुरंग और आसा दुर्ग यानी आज का आसिरगढ़। आसिरगढ़ का तारतम्य उस समय से है। आसिरगढ़ का और बुरहानपुर का और गुप्तेश्वर का संबंध आज से नहीं, हजारों हजारों वर्ष पहले सतयुग के काल से है। आसिरगढ़ ये आसा दुर्ग है वंशीय किला है। इसे यदि इसके हम पीछे तारतम्य में जाएं तो ये भृगु ऋषि जो हुए उनके बेटे शुक्राचार्य और शुक्राचार्य की सुपुत्री देवयानी, जिनका विवाह ययाति से हुआ और उन दोनों से दो संतानों की उत्पत्ति हुई, यदु और है, और यदु से यदु वंश का प्रारंभ हुआ और है से है वंश का। चूंकि यदु जो थे वो विष्णु भगवान के उपासक थे और है जो थे वो शिवजी के उपासक थे, इस नाते से यदि आप पूर्व काल में देखें तो हमारा ये संपूर्ण क्षेत्र शैव है। हमारे संपूर्ण क्षेत्र चाहे भोजपुर, नेमावर, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, बुरहानपुर, औंधा नागनाथ, परली वैजनाथ, त्र्यंबकेश्वर, ये सारे संपूर्ण क्षेत्र जो है ये शैव क्षेत्र है। और वो शैव होने के नाते उन्होंने अपने भाई को कहा कि आप मथुरा संभालिए, और यहाँ महिष्मती को उन्होंने अपनी राजधानी यानी आज के महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया, और ये संपूर्ण क्षेत्र जो है वह है वंशीय क्षेत्र के नाम पर जाना गया। और इसी प्रकार से ये जो आसा अहिर जो हुए हैं उन्होंने इस गढ़ की स्थापना की, इस दुर्ग को स्थापित किया, इसलिए ये दुर्ग जो है वो है वंशीय है। कालांतर में इतिहासकारों में कुछ मतभेद भी रहे। कुछ लोगों ने माना कि आसा अहिर तो जो है वो फारूकी काल में भी था, और आसा अहिर के जो है 5000 भेड़ बकरियां चरा करके और ऊपर वो दुर्ग में रहता था, गढ़ में रहता था, और उससे जो है वो नासिर खां फारूकी ने इस आसिरगढ़ को जीता। तो इतिहास में हम लोगों ने देखा होगा कि कई दफा नामों की लगातार एक के बाद एक कई दफा उपयोग होता है। कोई विक्रम कहता है, कोई विक्रमादित्य कहता है, इसी प्रकार से नामों का जो रिपीटेशन होता है, उस नाते से यह संभव है कि वो जो आसा ही जो है काल में हुए, जिन्होंने आसा दुर्ग की स्थापना की, उसी प्रकार से ये भी हो सकता है कि इस दफा जो आसा ही रहे हो जिसके ऊपर फारूकी बादशाह नासिर खां फारूकी ने विजय भी प्राप्त किया।
1: बुरहानपुर के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के बारे में अभी होशंग सोहराब जी हवलदार से बातचीत कर रहे थे ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे विविधा, जिसमें आपने सुना रमन रावल, पूजा चौरसिया और होशन सोहराब जी हवलदार को बातचीत कर रहे थे ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत का प्रोग्राम। आज कलाकार हैं रणजीत मालवीय और साथी।

लोक संगीत आपकी सेवा में आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित किया जा रहा है। कलाकार हैं रंजीत मालवीय और साथी।

0: लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे रणजीत मालवीय और साथियों के स्वर में ये लोकगीत।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

रणजीत मालवीय और साथियों के गाए इसी लोकगीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। आज कलाकार हैं श्रद्धा जगताप।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थे श्रद्धा जगताप। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित बसवराज राजगुरु का गायन, राग है श्रद्धा सारंग। तबले पर संगत कर रहे हैं सलमान खान, हारमोनियम पर मोहन मुंगरे और सारंगी पर मोइनुद्दीन खान।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित बसवराज राजगुरु का गायन राग था शुद्ध सारंग। तबले पर संगत कर रहे थे सलमान खान, हारमोनियम पर मोहन मुंगरे और सारंगी पर मुइनुद्दीन खां। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे भोपाल केंद्र से।

0: से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रीवा जिले की चिट्ठी। आलेख आरती श्रीवास्तव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। रीवा जिले में इन दिनों गर्मी, उमस और बारिश की बूंदों वाले मिले जुले मौसम का असर देखा जा रहा है। कभी धूप की तेज तपन है तो कभी तेज आंधियां अपना असर दिखा रही हैं, लेकिन इन सबके बीच भी तेज गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। जिले में 12 जून से जनकल्याण शिविर आयोजित कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। 18 जून तक चलने वाले जनकल्याण शिविरों की मॉनिटरिंग के लिए सभी अधिकारी क्षेत्र के विकासखंड मुख्यालयों तथा नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों में पहुंचते हैं। अधिकारियों द्वारा शिविरों में विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। शिविरों में स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, आयुष्मान योजना, संबल योजना, प्रधानमंत्री किसान कल्याण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, व्यय वंदन योजना, आयुष्मान भारत योजना तथा अन्य योजनाओं के आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। आगामी 21 जून को होने वाले योग दिवस को लेकर योग सप्ताह जिले में भी मनाया जा रहा है। केंद्रीय कारागार रीवा में बीते दिनों इसके तहत योग शिविर का आयोजन किया गया। वहीं उप जेल त्योथर में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस पर 14 जून को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल पर आयोजित रक्तदान शिविरों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। संजय गांधी अस्पताल में 50 यूनिट तथा ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित शिविर में 7 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। जिले में इन दिनों खेत बचाओ अभियान में किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग एवं प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में जिले के सिरमौर विकासखंड के अंतर्गत बीरखाम गांव में कृषि विभाग एवं आत्मा परियोजना के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और लगातार संघर्ष के बल पर युवा अपनी मंजिलों को हासिल कर ही लेते हैं, इसे ही चरितार्थ कर दिखाया है रीवा जिले के ग्राम बुसौली निवासी बाबूलाल रावत ने। बाबूलाल का चयन भारतीय सेना में हुआ है। बाबूलाल रावत शासकीय आईटीआई रीवा के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र रहे हैं। बाबूलाल बताते हैं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने पिछले 4 वर्षों तक लगातार कड़ा संघर्ष और अथक परिश्रम किया है। रीवा जिले में मछली पकड़ने पर आज से 15 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्षा काल में मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी जलाशयों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। इस अवधि में मछली का शिकार, विनिमय तथा परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में संभागायुक्त सहित अन्य अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने पौधे लगाए। कृषि विभाग द्वारा जिले भर में किसानों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। वन विभाग ने जयंती कुंज में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन विषय पर एक विशेष संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर में मातृशक्तियों द्वारा पौधों का रोपण कर प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। बीते दिनों रीवा के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में प्राकृतिक खेती की जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किसानों से प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया। आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत पुलिस प्रशिक्षण शाला रीवा में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें जिला पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल एवं होमगार्ड के कुल 49 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत निर्मित रीवा जिला स्थित गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन टनल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर पूरे टनल में कुल 52 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। इन कैमरों के माध्यम से टनल के प्रत्येक हिस्से पर नजर रखी जाएगी। कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग रीवा स्थित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की जाएगी। बीते दिनों रीवा के मेहरसेन तरणताल में 54वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 114 इवेंट्स में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी तथा उनके साथ 50 ऑफिशियल्स भी शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विजयी खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। रीवा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे रीवा जिले की चिट्ठी, आलेख आरती श्रीवास्तव का, वाचक स्वर अभिषेक कटियार का। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र, जिसे आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। आइए सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त माजिदा खान। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम आपको अपने फ़ोन नंबर्स बता दें। हमारे फ़ोन नंबर से 2710223 और 2710224 इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो हमसे बात कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत। अभी हम देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, कौन बात कर रही हैं?
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग,
1: बात कर रही हूँ देवास से।
0: देवास से
1: जी, रानू गुप्ता।
0: रानू गुप्ता बात कर रही हैं देवास से। जी स्वागत है आपका एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम में।
1: जी जी, और आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल अच्छी हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ।
1: जी जी, और मुझे आज एक गाना सुनना है। ज्यादा समय तो नहीं लूंगी क्योंकि दूसरे कॉलर भी लाइन में
0: है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। जी
1: हाँ, मूवी का नाम है हम आपके दिल में रहते हैं।
0: जी,
1: और गाने के बोल है जरा आंखों में काजल लगा लो सुनो, और डेडिकेट आपको रहेगा।
0: थैंक यू जी, अनुराधा पौडवाल की आवाज में लगाती है। थैंक यू। बिल्कुल रानू जी, हम आपको सुनवाते हैं और आपने बहुत अच्छी बात की कि बहुत सारे श्रोता हमारे लाइन पर रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनसे भी हमारी बात हो जाए। तो मैं आपका गाना जल्दी से सुनवा देती हूँ। नमस्ते।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी, छत्तीसगढ़ से योगेश जी से बात हो रही है हमारी।
1: हाँ जी
0: जी, बहुत अच्छी बात है आपने इतनी दूर से हमें कॉल किया, और हम हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बताएं क्या पसंद है आज
1: जी।
0: आपकी?
1: फिल्म है खुदगर्ज और गीत के बोल हैं आप क्या जाने से।
0: जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज में। ये गीत है फिल्म खुदगर्ज का।
1: कुछ नाम ले लें क्या?
0: जी बिल्कुल लीजिए।
1: हाँ जी, रंजीता जी, रानू जी, श्रीपाल जी, लोकेन्द्र वर्मा जी, दिलीप पहुजा जी, रोशन देवांगन जी, और हमारे हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के तमाम साथी।
0: बिल्कुल, आपने तमाम साथियों के साथ सुनी फिल्म खुदगर्ज का ये गीत जो आपने पसंद किया है, अपने रेडियो सेट पर
1: जी
0: सुनिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नमस्कार।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: इस अंतराल के बाद आइए देखते हैं हमारे कौन से कॉलर हमसे बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो।
3: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
2: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
2: जी, लोकेंद्र जी उज्जैन से बात कर रहे हैं, आज क्या है आपकी पसंद?
3: आज मैडम जी गाना है पुरानी फिल्म है, मिलन फिल्म है,
2: फिल्म मिलन का जी।
3: आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, लता मंगेशकर जी की आवाज में।
2: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गीत है
3: जी मैडम जी।
2: आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं।
3: हाँ, आपका प्रोग्राम तो मैं हमेशा सुनता हूँ, अभी उज्जैन में मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन रहा हूँ।
2: अच्छा अच्छा
3: जी, अच्छा लगता है प्रोग्राम, MH हॉटलाइन और मालवा हाउस हॉटलाइन।
2: धन्यवाद धन्यवाद है हम
3: आप सभी श्रोताओं का। काफी सालों से सुन रहे हैं, बचपन से ही, मतलब रेडियो के दीवाने हैं
2: जी जी जी।
3: और 90 वर्ष जो आकाशवाणी के पूर्ण हुए हैं
2: जी,
3: इसमें आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी श्रोताओं की भी शुभकामनाएं उसमें शामिल है
3: जी जी मैडम।
2: आप सभी का साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे और आप यूं ही गीत सुनते रहे, हमसे बातें करते रहे। लीजिए अपनी पसंद का गीत सुनिए अभी, जो आपने पसंद किया है। धन्यवाद
3: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते।
1: मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: जी, कौन से जिले से?
1: जिला अशोकनगर एमपी।
0: अशोकनगर से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा प्रसारण आपको कैसा सुनाई दे रहा है वहाँ?
1: बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है, मैं रेडियो के माध्यम से सुनता हूँ।
0: रेडियो के माध्यम से, बहुत अच्छी बात है। इस समय भी आपके पास रेडियो है मतलब?
1: जी हाँ, चार्ज वाला रेडियो है मेरे पास।
0: अच्छा, अभी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है क्या दिल ने कहा और इसका टाइटल सॉन्ग सुनना है, क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना?
0: जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे टाइटल सॉन्ग ये। आप कब से रेडियो सुन रहे हैं?
1: मुझे 10-12 साल हो गए रेडियो सुनते, कम से कम 2015-16 से सुन रहा हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है ना, आप रेडियो का आनंद लीजिए, प्रोग्राम सुनिए। और अभी हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का गीत,
1: जी
0: लीजिए
1: मैम,
0: सुनिए।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्ते माजी,
0: नमस्ते जी, नमस्ते भंडारे जी, हम आपको बिल्कुल पहचान गए।
1: बढ़िया आप
0: जी, बिल्कुल हम अच्छे हैं।
1: आप गायक हैं, आप गायक संगीतकार हेमंत कुमारकर जनम जी हैं
0: जी,
1: उनकी याद में फिल्म बॉक्स नंबर 999 से सुनाएंगे
0: जी, बिल्कुल आपको सुनवाएंगे पुराने
1: गाना। बहुत बढ़िया, बहुत गाना लता के साथ है, बहुत पुराना गाना है, बहुत बेकार है
0: जी। बिल्कुल हेमंत कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में है,
1: और जी का संगीत है
0: जी जी जी,
1: और पीएल संतोष जी का गीत है।
0: बिल्कुल सही बता रहे हैं आप बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं गानों पर पुराने, वो मैंने देखा है जी।
1: इस चीज को गाया है परजे में, परजे में गाया है, परजे में गाया है, सिंगर सकेला ने
0: जी जी हाँ। जी आपने मतलब बहुत ही अच्छी तरह से देखी है फिल्म, जो आपको याद है बिल्कुल अच्छी तरह से।
1: पांच छह बार देखी।
0: अरे वाह,
1: इसका मधुर संगीत, इसका मधुर संगीत इतना प्यारा है
0: जी जी,
1: 7 साल हो गए फिर भी हम सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पुराने गीतों की बात ही कुछ और होती थी, अगर नए गीत भी बहुत सारे अच्छे होते हैं। बिल्कुल लीजिए, सुनिए जी, सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी,
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी, नागदा जिला उज्जैन से बात कर रहे हैं प्रेम सिंह जी। जी हाँ। क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपको बताऊँ अभी बहुत तेज हवाएं चल रही है हमारे यहाँ पे
0: जी।
1: और हाँ जी, अब खेतों में कुछ ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, किसान के अब फसल के लिए तैयारी हो रही है, सोयाबीन की फसल लगाएंगे बरसात होने पर।
0: बिल्कुल।
1: हाँ जी,
0: क्या लगता है आपको मानसून का?
1: जी मानसून अभी प्री मानसून तो आया है, लेकिन अभी मानसून ऐसा बताया जा रहा है कि 25 जून के बाद ही हमारे मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा।
0: जी जी जी, किसानों हाँ जी। के लिए तो बहुत सारा ये हो जाती है ना, खुशी की बात है कि कब मानसून प्रवेश करता है, फिर आपकी फसलों की तैयारी शुरू हो जाती है ना।
1: जी हाँ
0: जी,
1: कुछ
0: बताए।
1: बताऊँ, जब बरसात होती है ना तो किसानों को काफी खुशी होती है, क्योंकि फसल लगाने का होता है उसमें, वो सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और हम
1: जी
0: सबको भी खुशी होती है बारिश देखकर, है ना। और
1: जी और
0: क्योंकि
1: आपको एक बात
0: किसान तो
1: बताऊं,
0: हमारे
1: जैसे
0: अन्नदाता हैं, है ना,
1: हाँ जी,
0: तो हम
1: जब हम
0: सबको भी बहुत
1: खेत
0: खुशी
1: जाते
0: होती है।
1: हैं
0: जी
1: जी, और अभी हमने सिंचाई के लिए मतलब चरी लगा रखी है पशुओं के लिए, तो
0: जी
1: यहाँ पे हम पानी पिलाने आते हैं ना, तो टिटेरी के बच्चे भी मतलब पानी पीते हैं जब मोटर ट्यूबवेल चालू करते हैं तो।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सभी का, पशुओं
1: हाँ
0: का भी ध्यान रखना होता है, फसलों का भी ध्यान रखना होता है, आप लोगों की जिम्मेदारियां, उत्तरदायी तो बहुत होते हैं। आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी, हम फिल्म का सुनवा दीजिएगा, कागज कलम दबादला।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनाएंगे फिल्म हम का गीत।
1: जी
0: लीजिए सुनिए, हम आपको
1: जी
0: सुनवाते
1: थैंक
0: हैं
1: यू सो
0: आपकी
1: मच,
0: पसंद का गीत। जी
1: जी थैंक यू
0: नमस्ते,
1: सो मच,
0: बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्ते। कौन बात कर रहे हैं?
1: ग्राम पाली, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से शिवम बात कर रहा हूँ मैं।
0: शिवम बात कर रहे हैं ललितपुर से। बहुत अच्छी बात है। आज हमारे बहुत सारे श्रोता दूर दूर से फोन कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है हमको। जी बताएं, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: साजन का घर फिल्म का एक गाना है, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा।
0: जी, बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे ये गाना। और आप क्या करते हैं शिवम?
1: हम खेती बाड़ी करते हैं मैम।
0: अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी में अभी क्या लगा रखा है खेतों में आपने?
1: अभी धान लगी है मैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। खेती बाड़ी का काम आप करते हैं और साथ में रेडियो सुनते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, और
1: जी
0: गीतों के साथ साथ और भी मनोरंजनात्मक और भी कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होते रहते हैं, वो आप सुनते होंगे।
1: जी
0: जी चलिए, हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का गीत, फिल्म साजन का घर से। लीजिए सुनिए। धन्यवाद।

0: हेलो हेलो
1: हेलो बहन जी, आपको और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी। बिल्कुल, हमने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। और आप कौन बोल रहे हैं, आपका शुभ नाम बताइए।
1: बहन जी, मेरा नाम है जगदीश राय गर्ग, बस
0: जी
1: स्टैंड मानसा पंजाब से बोल रहा हूँ।
0: वाह, पंजाब से बात कर रहे हैं आप, क्या बात है,
1: हाँ जी, पंजाब से
0: बड़ा
1: बोल रहा
0: अच्छा
1: हूँ।
0: लग रहा है सुनकर। हमारे श्रोता छत्तीसगढ़ से, पंजाब से, अलग अलग क्षेत्रों से बात कर रहे हैं हमसे।
1: अभी तो
0: बताएं
1: बहन जी, जब से ऐप आ गई है
0: जी।
1: तब से ऐसे लगने लगा है कि छोटा सा एक घर बन गया है
0: हाँ,
1: और
0: बिल्कुल
1: एक
0: सही कह रहे
1: छोटा
0: हैं
1: सा
0: आप, छोटा
1: परिवार
0: सा
1: बन
0: एक
1: गया है।
0: परिवार बन गया है हमारे श्रोताओं का।
1: परिवार बन गया तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अब दूरियां नहीं रही।
0: बिल्कुल, इस ऐप के माध्यम से हम हर कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और हम हमारे श्रोताओं से भी जुड़ पा रहे हैं। बहुत सारे श्रोता हमारे साथ होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है
1: बहन जी, ये तो बड़ी हमारी खुशनसीबी है कि
0: जी।
1: ऐप जो तकनीक नई आई है हम उसको प्रणाम करते हैं कि हमें
0: जी
1: एक छोटा सा परिवार बना दिया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सूचना प्रौद्योगिकी ने इतना तरक्की कर ली है, हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हैं, दूर बैठे भी सब एक दूसरे को सुन पाते हैं। बताएं आज आपकी कौन सी पसंद है।
1: बहन जी, आज गायक और संगीतकार हेमंत कुमार जी का जन्मदिन है,
0: बिल्कुल बिल्कुल जी
1: तो उनकी फिल्म 20 साल बाद का गीत मैं अपनी तरंग में बजाना चाहूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनाए।
1: जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए। जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा का दिल कहलाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए।
0: बिल्कुल,
1: जरा
0: बहुत खूब
1: नजरों
0: गाया आपने,
1: से
0: बहुत
1: कह
0: खूब।
1: दो
0: और
1: जी।
0: लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का गीत जो आपने गुनगुनाया है, अब अपने रेडियो सेट पर सुनिए।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, आकाशवाणी इंदौर।
0: आकाशवाणी इंदौर से बिल्कुल आपकी बात हो रही है। मैं शॉर्टलाइन प्रोग्राम में,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, मैं माजिदा खान बात कर रही हूँ।
1: हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। मैं खातेगांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: गोविंद जी खातेगांव से बात कर रहे हैं
1: हाँ
0: जी, बताएं
1: गाना है फिल्म बरसात पुरानी वाली,
0: जी।
1: हवा में
0: जी
1: उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का।
0: बिल्कुल, बहुत फेमस और खूबसूरत सा गीत आपने पसंद किया है, हवा में उड़ता जाए।
1: हाँ मौसम भी ऐसे ही है थोड़ा।
0: बिल्कुल मौसम के अनुसार आपने गीत पसंद किया है, और मौसम के अनुसार गीत सुनने में अलग ही मज़ा आता है। बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे ये गीत, और आप सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
1: रोड सुनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए सुनिए।
1: सर एक दोस्त है मेरा, सर
0: बिल्कुल बिल्कुल, बताएं
1: महेश खत्री है सर, रेस्कोट रोड से।
0: जी। बिल्कुल, आपके दोस्त और आप दोनों ही मिलकर सुनिए आपकी पसंद का
1: हाँ
0: गीत।
1: हाँ
0: दीजिए, आपके रेडियो सेट पर
1: ठीक
0: सुनिए।

0: पुराने या नए?
1: ये ओल्ड वाले तो पुराने ज्यादा हैं, नए तो कम सुनती हैं तो।
0: अच्छा, तो ठीक है, आपकी गीतों में से आज आपकी चॉइस कौन सी है?
1: जी मुझे कालिया पिक्चर का सुनना है,
0: जी
1: जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे सबर है।
0: अरे वाह, आप गुनगुनाती भी हैं यानी कि
1: जी
0: जी
1: आप तो सेकंड बार बात हो रही है।
0: जी बिल्कुल
1: जी जी
0: बिल्कुल सही पहचाना है आपने।
1: जी
0: चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: शुक्रिया
0: धन्यवाद आपको फ़ोन करने के लिए और हमसे
1: जी
0: जुड़ने के लिए।
1: जी

0: हेलो हेलो
1: माजीदा जी, आदाब।
0: नमस्ते, आदाब। और बताएं कैसे हैं?
1: मध्य प्रदेश से मोहम्मद तस्लीम शेख बोल रहा हूँ
0: जी। जी जी जी, तस्लीम शेख जी, आपके पत्र भी आते रहते हैं, मेल भी प्राप्त होते रहते हैं।
1: जी जी, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं माजीदा जी?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और हमारी सबकी कामनाएं ये रहती हैं कि आप सभी श्रोता भी स्वस्थ रहें, बहुत अच्छे रहें, ईश्वर की कृपा पर बनी रहे,
1: खुदा आमीन, आमीन।
0: जी, खुदा की मेहर आप पर बनी रहे। जी बताएं क्या सुनना चाहते हैं?
1: मोहब्बत जिंदगी फिल्म के गीत है रफी साहब की आवाज में, ना जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा।
0: ना जाने क्यों मोहब्बत जिंदगी है, बिल्कुल बहुत चुनिंदा फिल्मों से आप गीत सुनते हैं मैंने देखा।
1: जी जी, और गीत बहुत खूबसूरत रहते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रही ना, चुनिंदा मतलब बिल्कुल चुने हुए गीतों की आप फरमाइश रखते हैं। जी,
1: इतनी भीषण गर्मी में बरसात फिल्म का गीत भी बहुत दिल को बहुत सुकून दे रहा था, ठंडाई का एहसास हो रहा था।
0: बिल्कुल, उन्होंने ये कहा भी था कि हम मौसम के अनुसार ही गीत सुन रहे हैं, तो सभी श्रोताओं के लिए उन्होंने सुनवाया था। जी, आज आपकी पसंद जो है वो हम पूरी करते हैं मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में।
1: जी, शुक्रिया,
0: धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। लीजिए सुनिए गीत। जी

0: हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते
1: हाँ दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते। कौन बात कर रहे हैं?
1: आपके नियमित श्रोता भागचंद साहू जी राजेंद्र नगर गंज वासोदा से। फिल्म
0: जी, भागचंद साहू जी बताएं कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं? हम आखिर गीत ले
1: का
0: रहे हैं
1: नाम है
0: और हमारे
1: हम।
0: पास समय बहुत कम है। जी
1: हाँ फिल्म का नाम हम है दीदी। कोई सारी गीत सुनवा दो, सारे गीत अच्छे हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं हम फिल्म का गीत
1: और
0: आपको
1: दीदी
0: सुनवाती
1: कैसी हैं
0: हूँ।
1: आप?
0: जी जी जी
1: और दीदी
0: बोले।
1: कैसी हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं हम, ईश्वर की कृपा है। जी
1: बिल्कुल दीदी। मौसम कैसा है इंदौर का अभी?
0: अभी मौसम मिला जुला चल रहा है, कभी ठंडक हो
1: अच्छे
0: जाती है कभी
1: अच्छे
0: धूप हो जाती है, मिला जुला मौसम
1: बिल्कुल
0: चल रहा
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल चलिए
1: दीदी।
0: आप
1: आइए
0: सुनिए
1: गंज
0: अपनी
1: वासोदा
0: पसंद का
1: मणिपुरी
0: गीत।
1: सेंटर का ठेला लगाते हम।
0: जी, अभी आप अपनी पसंद का गीत सुनिए, हमारे पास समय बहुत ही कम बचा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: हम
1: सही बात है।
0: लीजिए सुनिए
1: ठीक है
0: अब गीत।
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: इस गीत के साथ ही MH हॉटलाइन प्रोग्राम समाप्त करने की अनुमति दीजिए माजिदा खान को। नमस्कार। और हमारे श्रोताओं से हमारा अनुरोध है कि जो श्रोता आज हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, जो अगले कार्यक्रम में ज़रूर प्रयास करें और आपका प्रयास ज़रूर सफल होगा।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 11 बजने को है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुबह के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति है श्वेता तिजोरिया की।
2: नमस्कार श्रोताओं, कुछ अंदाज, कुछ बात, कुछ ख्याल से बन जाते हैं विचार और यहीं से जन्म लेती है एक धारणा जो आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व की पहचान बनती है। ये धारणा आधुनिक नवीन दोनों हो सकती है। खास ये है कि आप अपने विचार किस तरह रखते हैं। श्रोता मित्रों, आज हम जानना चाहेंगे आपके विचार कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में कि आपके दैनिक जीवन में प्लास्टिक का क्या महत्व है। यह हम कहें कि बाजार जाते समय, यात्रा करते समय आप प्लास्टिक बैग, पॉलिथीन का प्रयोग करते हैं, क्या ये सुविधाजनक है या फिर इसके कुछ नुकसान भी हैं। हम जानना चाहेंगे आपके विचार हमारे फोन नंबर 2660902 और भोपाल के बाहर के श्रोता साथी हमें STD कोड लगाकर यानी 0755 लगाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो हमें इंतजार है आपके विचार का और आपके फोन का। हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार।
3: जी नमस्कार मैम,
2: आपका नाम जानना चाहेंगे हम।
3: जी मैम, मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल ग्राम सिरसा से।
2: जी तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, है ना। और आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपके विचार, है ना, आपके विचार जानना चाहेंगे, है ना? एक दैनिक जीवन में आने वाली एक बात है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपके विचार। जैसे आप अपने घर पर हैं या कहीं बाहर यात्रा करते हैं तो प्लास्टिक का कितना उपयोग करते हैं, प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग, इन सब चीजों का उपयोग आप करते हैं?
3: जी।
2: करते हैं
3: जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे प्लास्टिक जो होती है वो उसका सिंगल यूज जो प्लास्टिक होती है उसको एक निर्धारित करें कि हमें कितना करना है। उससे पहले तो एक थैला लें आप, तो वो ही बाजार में लेके जाएं, तो उससे थोड़ा पॉलीथीन कम होती है,
2: है ना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, आप जानते हैं प्लास्टिक का उपयोग, और पॉलीथीन जिसका उपयोग हम कर रहे हैं आज अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है ना।
3: जी।
2: तो क्या ये हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है आपको पता है?
3: जी मैम, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। जैसे कि हम कहीं से भी निकलते हैं तो जैसे देखते हैं कि कुछ पशु खा लेते हैं तो कहीं गंदगी बहुत रहती है, ये उड़ती हैं तो खेतों में बहुत नुकसान कर देती हैं।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं, हाँ यही मैं जानना चाह रही थी आपसे, है ना।
3: हाँ।
2: कि ये पॉलिथीन का उपयोग हमें कम करना ही नहीं चाहिए, इसके बदले हमें कपड़े के थैले, है ना, कपड़े के थैले हो गया उसका उपयोग करें बाजार जाते समय, है ना। तो ये अगर छोटी छोटी चीजों का हम अगर ध्यान रखते हैं तो हम अपने पर्यावरण को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। क्या सोचते हैं आप?
3: हाँ। तो जी, तो ये तभी होगा जब हम सजग रहेंगे और हम कदम उठाएं एक कदम स्वच्छता की ओर।
2: जी,
3: ये तभी संभव हो पाएगा।
2: जी बिल्कुल, और ये हम सभी का दायित्व है, है ना।
3: जी, जी, हाँ, ये तो, सभी का दायित्व है।
2: जी जी,
3: और आपने आसपास साफ सफाई बनाए रखी,
2: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ,
3: तो गंदगी नहीं होगी।
2: बिल्कुल, तो आपने देखिए फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: धन्यवाद, नमस्ते।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार दीदी। दीदी
0: नमस्कार, आपका नाम बताएं।
1: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ, सारनाथ वाराणसी से।
0: सारनाथ वाराणसी से आप बात कर रहे हैं। चलिए, कार्यक्रम
1: जी
0: में आपका स्वागत है, आपने फोन
1: धन्यवाद
0: किया
1: दीदी,
0: है।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: हाँ जी, तो आपने फोन किया है, कार्यक्रम बात आपकी और गीत हमारे में है ना। और
1: जी।
0: हम एक विचार जानना चाहेंगे आपके, आप हम सभी इस देश के नागरिक हैं है ना। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे हम अधिकतर अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक बैग है ना, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक का सामान यूज़ करते हैं, तो
1: जी
0: ये कहाँ तक हमारे लिए अच्छा होता है ये बताएं।
1: दीदी देखिए, ये तो अच्छा है नहीं, ये तो इंसान अपनी सुविधा के लिए करता है,
0: जी जी जी
1: लेकिन
0: बिल्कुल,
1: प्रकृति के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
0: हाँ बिल्कुल,
1: ये हमारे लिए नुकसानदेह है।
0: हाँ
1: ये जहाँ पड़ा रहता है गलता भी नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: और
0: अच्छी
1: इसको
0: बात है,
1: जलाने पर जैसे
0: हाँ
1: धुआं निकलता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल है ना।
1: तो इसलिए ये हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है और हम लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।
0: हाँ
1: और पहले दीदी मैं देखता था कि पहले जब इसका चलन नहीं था,
0: हाँ
1: तब भी तो मार्केट था, तभी तो लोग सामान ले आते थे।
0: बिल्कुल, वही हम
1: ये
0: जानना
1: तो
0: चाह
1: है
0: रहे
1: कि
0: हैं।
1: इसके पहले बाजार ही नहीं था या हम लोग नहीं थे, तो
0: हाँ बिल्कुल, मैं यही हाँ आपसे जानना चाह रही हूँ कि जैसे बाजार जाते समय, यात्रा करते समय, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कपड़े के बने थैले हैं है ना, स्टील की बॉटल है, इसका उपयोग कर सकते हैं है ना, यात्रा करते समय, बाहर जाते समय।
1: इसके इसके इजाद से पहले दीदी वही होता था कि लोग जाते थे मार्केट में तो कपड़े के थैले ले जाते थे या कागज के बैग मिलते थे,
0: हाँ जी
1: उसमें
0: जी जी
1: सामान ले आते थे जो
0: हाँ
1: कि फेंक देने पर सड़ जाते थे और मिट्टी हो जाते थे। तो
0: बिल्कुल,
1: उस जमाने में ये बात था, अब
0: हाँ
1: क्या है कि हर जगह इसका सुविधा है, लोग वही लेके चले जाते हैं
0: बिल्कुल,
1: और कोई थैला लेके जाना नहीं चाहता है।
0: हाँ। और बस हम तो
1: जबकि ये हमारे लिए मतलब प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है कि हम इसका उपयोग न करें।
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, और जो सारे हमारे साथी सुन रहे हैं वो भी ये चीज़ को मानेंगे कि हमें अधिक से अधिक वैसे चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण के लिए
1: मैं दीदी
0: बहुत अच्छी
1: बताना
0: होती हैं।
1: चाहूंगा
0: जैसे हाँ
1: मैं
0: बताएं।
1: बताना चाहूंगा कि जब ये प्लास्टिक नहीं था
0: जी
1: तब भी मार्केट लोग जाते थे और तब भी मार्केट करते थे, सामान
0: जी
1: ले आते थे, तो उस वक्त दुकानदार जो कागज के
0: जी
1: थैले देते थे
0: हाँ हाँ हाँ
1: या हम लोग अपना कपड़े का थैला लेके जाते थे, उसमें सामान ले आते थे, तो ये तो हम लोगों ने मतलब अपने सुविधा के लिए बना लिया, ये अच्छी
0: बिल्कुल
1: बात नहीं
0: बिल्कुल,
1: है।
0: अच्छी बात
1: और
0: नहीं
1: मैं
0: है,
1: तो कहना चाहूंगा इसका इग्नोर करना चाहिए,
0: हाँ
1: बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए।
0: बिल्कुल। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप वही चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो है ना।
1: जी
0: इन
1: दीदी
0: सब
1: बिल्कुल
0: बातों का
1: सही,
0: अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी प्रकृति भी अच्छी रहेगी और हम भी स्वस्थ रहेंगे है ना। आपने फोन किया
1: और
0: इसके लिए, हाँ
1: ये
0: जी
1: मुहिम जन जन की होनी चाहिए,
0: बिल्कुल
1: ये नहीं
0: बिल्कुल,
1: कि ये
0: हाँ
1: सभी की होनी चाहिए।
0: सभी
1: जी
0: की होना चाहिए है ना। चलिए, आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते मैडम, मैं गोपाल ओझा बोल रहा हूँ, ग्राम ककवासा, जिला गुना से।
0: गोपाल ओझा जी है ना। चलिए
1: आपका
0: कार्यक्रम।
1: नियमित होता हूँ मैं तो, पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ आकाशवाणी भोपाल के। तो
0: अच्छा, चलिए आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आज हम कुछ बातें साझा कर रहे हैं। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में है ना। वो ये है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने घर पर है ना,
1: हाँ
0: तो
1: कर दिया ना मदद।
0: हाँ उनमें प्लास्टिक का सामान भी होता है, प्लास्टिक की पॉलिथीन, प्लास्टिक की बॉटल है ना। तो
1: हाँ होती
0: क्या
1: है।
0: ये सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं, प्लास्टिक की पॉलिथीन, प्लास्टिक के पैकेट
1: हाँ
0: और
1: होते
0: बॉटल?
1: हैं ना, तो फिर वो क्या होता है तो वो घर में ही रखते हैं हम।
0: नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक क्या आपके लिए अच्छा है?
1: प्लास्टिक तो अच्छा।
0: प्लास्टिक का अगर हम अधिक से अधिक उपयोग करते हैं या प्लास्टिक की पॉलिथीन को हम बाहर यूं ही फेंक देते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे आपका पर्यावरण प्रदूषण होगा
1: फिर
0: प्लास्टिक?
1: हाँ जी, मैडम जी जी
0: ये जानना चाह रही हूँ मैं है ना। क्योंकि देखिए, पॉलिथीन अगर आप फेंक देते हैं, प्लास्टिक की बोतल कहीं पर भी फेंक देते हैं, तो ये मिट्टी में मिलती नहीं है, है ना
1: हाँ
0: जी।
1: हाँ
0: ये कचरा इकट्ठा होता जाता है, इसको हमारे पशु खा लेते हैं है ना, नदियों में जमा हो
1: हाँ
0: जाता है, तो नदियाँ भी
1: नदी में
0: प्रदूषित
1: जमा
0: हो
1: हो
0: जाती
1: जाती
0: हैं।
1: हैं।
0: हाँ, और वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए कैसी रहेंगी बताएं?
1: हाँ स्वास्थ्य के लिए तो वो तो क्या है, वो तो नुकसान ही है,
0: हाँ, उससे हमें समस्या होगी है ना। तो
1: समस्या होती है मैडम।
0: जी जी जी तो मैं तो यही चाहूँगी गोपाल ओझा जी कि प्लास्टिक का उपयोग हम ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा
1: ना
0: होगा
1: करें
0: है
1: ना
0: ना।
1: करें जी, सही
0: हाँ
1: बोला है आपने
0: जी ना,
1: मैडम
0: है
1: जी।
0: ना। और अपने घर के छोटे बच्चे, युवा अवस्था वाले जो भी बच्चे हैं, उनको सबको समझाएं है ना,
1: जी
0: तभी ये बात जन जन तक पहुंचेगी है ना।
1: जी
0: आपने फोन किया, इसके
1: जी
0: लिए
1: मैडम
0: आपका
1: जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: जी नमस्ते, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: मैडम जी नमस्कार, पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ मैडम जी, छत्तीसगढ़ गंडई पंडरिया से।
0: जी पवन कुमार सेन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम
1: बहुत
0: बात
1: बहुत
0: आपकी गीत हमारे में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैडम जी, और आकाशवाणी का तो हम पुराने श्रोता हैं,
0: जी,
1: और
0: हाँ
1: रेडियो तो एनी टाइम चलते रहते हैं हमारे, रेडियो मोबाइल के द्वारा सुन लेते हैं मैडम जी आप लोगों के प्रसारण।
0: हाँ हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप सुनते हैं हमारे कार्यक्रम, है ना?
1: जी, क्यों नहीं,
0: तो आज
1: कविता
0: हम
1: विशेष रूप से सुनता हूँ मैडम जी।
0: जी, बिल्कुल, आज हम आपसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे आपके विचार कि जैसे हम अपने जीवन में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग, है ना, पैकेट, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं, है ना, किसी अच्छे पर्यटन स्थल पर मार्केट में, और जाके उन्हें फेंक देते हैं, तो क्या ये चीज़ सही है?
1: बिल्कुल गलत है मैडम जी। अब क्या है, अब आजकल के आदमी को कौन समझाएगा, कैसे समझाएं यहाँ।
0: देखिए, हम तो ये कहेंगे कि सबसे पहले हमें अपने को ये जानना होगा कि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है या खतरनाक है, इस पर सोचना
1: बहुत
0: पड़ेगा।
1: खतरनाक है मैडम जी। अब क्या है, कई पशु पक्षी भी इसे खा लेते हैं, गाय लोग खाते हैं,
0: हाँ
1: और उसमें क्या है, कई प्रकार की बीमारी भी पैदा होते हैं मैडम जी। अब मैं तो कहता हूँ कि इस चीज,
0: और हम ये चाहेंगे कि आप, हम सभी पॉलिथीन का उपयोग ना करें, प्लास्टिक बैग, है ना, इन सब का उपयोग ना करें, वो चीजें करें जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, अच्छी हो, है ना।
1: बिल्कुल मैडम जी,
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: कपड़े के थैले, कागज, है ना,
1: जी।
0: और स्टील की बोतल, इन सब का उपयोग करें, है ना।
1: जी हम क्या है, हम लोग ना विशेष रूप से अब रेडियो में जो बताए जाते हैं बातें, उसको अपने जीवन में अमल जरूर करते हैं मैडम जी। हम जब भी सब्जी लेने जाते हैं तो बिल्कुल अपने घर से थैला लेके जाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात, बिल्कुल, और मैं ये सोच
1: जी
0: रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात को सुन भी रहे हैं, है ना,
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: भी अच्छी
1: मैडम जी,
0: बात है। जी बिल्कुल, और साथ साथ हम ये भी सिखाएं लोगों को, अपने घर के बच्चों को, छोटे बच्चों को, है ना,
1: जी मैडम जी,
0: हाँ, इस बारे में उन्हें जानकारी दें कि अधिक से अधिक उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो। आपने
1: जी
0: फोन
1: मैडम
0: किया,
1: जी,
0: इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम जी, नमस्ते।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: जी मैडम,
0: आपका नाम बताएं।
1: मैं सुमत कुमार जैन, पिंडरी जिला मंडला से रिटायर्ड शिक्षक बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी, तो आपका स्वागत है
1: सुमत
0: कार्यक्रम में।
1: जी,
0: और
1: सुमत
0: हाँ जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आजकल देखिए पर्यावरण बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित हो रहा है ना, आजकल है ना, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, कहीं बाढ़ अधिक आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे जीवन में, है ना, और प्रदूषण भी बहुत अधिक बढ़ रहा है, ठीक है ना। और इसके लिए कहीं कहीं हम भी दोषी हैं, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बॉटल, पॉलीथीन, तो क्या इनका उपयोग करना अच्छा होता है, बताएं।
1: हमारे चारों तरफ फैली हुई समस्त वस्तुएं,
0: जी
1: जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो भी चीजें हमारे चारों तरफ फैली, ये सब पर्यावरण ही है मैडम।
0: जी बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल,
1: इसे सुरक्षित रखना प्रत्येक मनुष्य का
0: हाँ
1: संकल्प लेकर के काम करना चाहिए, इसे सुरक्षित
0: हाँ
1: रखने का।
0: जी बिल्कुल
1: रहा सवाल ये, पेड़ पौधे जो कट रहे हैं,
0: जी
1: बड़े बड़े जो पहाड़ या जो सड़कें या जो खेल मैदान या कुछ भी बन रहे हैं, वो पहाड़ पेड़ पौधों को काट करके बनाए जा रहे हैं, इससे हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है मैडम।
0: जी और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस पर्यावरण को संतुलित करने में हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए, जन जन की
1: हमें
0: भागीदारी, है ना।
1: मैडम एक काम करें, लेकिन क्या है,
0: जी
1: आज पॉलिथीन का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है, उस पर कोई
0: बिल्कुल
1: ध्यान
0: बिल्कुल,
1: नहीं दे रहा है।
0: प्लास्टिक की बोतल हम खा पी कर
1: प्लास्टिक की
0: प्लास्टिक के
1: बोतलें
0: पैकेट फेंक देते हैं
1: जहां
0: कहीं पर
1: चाहे
0: भी,
1: जहां रास्ते में
0: हाँ
1: फेंक देते हैं लोग,
0: जी
1: वहीं
0: जी
1: उसका,
0: बिल्कुल, हाँ।
1: हाँ
0: और उसको देखिए हमारे पशु खा लेते हैं, है ना, नदियों में
1: हाँ
0: जमा हो जाते हैं, इससे
1: बिल्कुल
0: कितनी
1: बिल्कुल,
0: अधिक
1: पशुओं
0: गंदगी और
1: को भी,
0: बीमारियां
1: पशु
0: फैल रही
1: वगैरह
0: हैं।
1: जो सामान रख के ले जाते
0: जी
1: हैं उसे भी ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं, तो
0: जी
1: पशु खाते हैं, तो पशु भी मृत हो जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो ये
0: बिल्कुल
1: हमारी कुछ सुरक्षा है, पेड़ पौधे लगाना,
0: जी
1: संकल्पित होकर के कोई अच्छे कार्य करना
0: बिल्कुल
1: जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे,
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये
1: और
0: हमारा
1: लोगों
0: ही
1: में ऐसी
0: दायित्व
1: भावना
0: होगा,
1: पैदा, जागरूक पैदा
0: बिल्कुल
1: करना चाहिए।
0: हाँ, ये हमारा ही दायित्व
1: तो
0: होगा, जन जन का दायित्व होगा
1: बहुत
0: कि
1: अच्छा
0: वो
1: विषय है आपका, और
0: जी
1: बहुत बढ़िया आप विषय को उठाया है। जितने भी देश के अंदर रेडियो श्रोता श्रोता हैं, वो आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे और देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप में जनता को प्रभाव पड़ेगा और जागरूकता आएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पर्यावरण हमारा सबसे जीवन को सफल और सुरक्षित रखने का एक साधन है,
0: जी
1: जिसे
0: जी
1: हमें अब स्वयं को भी उपयोग करना पड़ेगा,
0: जी
1: और स्वयं भी सुरक्षित रखने के लिए हमें पेड़ पौधे और ये
0: अधिक से अधिक
1: बॉटल
0: लगाने पड़ेंगे,
1: और पानी वगैरह
0: बिल्कुल
1: इत्यादि
0: हाँ।
1: का
0: और
1: उपयोग
0: उसके बिल्कुल बिल्कुल, और उसके
1: करना।
0: पश्चात उसकी देखभाल भी जरूरी है कि पेड़
1: बिल्कुल
0: पौधे, है ना, बढ़ रहे
1: बिल्कुल
0: हैं कि नहीं, उनमें खाद डालें,
1: बिल्कुल
0: उनका ध्यान रखें, है ना।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: बहुत
0: बिल्कुल,
1: बढ़िया
0: तो
1: आपका,
0: आपने फोन
1: अभी
0: किया,
1: आप लोग
0: जी बिल्कुल आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: हेलो, नमस्कार मैम
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: जी, मैं लक्ष्मी घोषी बात कर रही हूँ।
0: लक्ष्मी
1: जी, लक्ष्मी घोरा, जिला क्षेत्र मध्य प्रदेश से।
0: क्या कहते हैं, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ,
0: पढ़ाई
1: करती हूँ,
0: करती हैं।
1: बीए स्टूडेंट, बीए की छात्रा हूँ।
0: अच्छा, तो आज हमने कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका फोन लगा है और कुछ बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, है ना?
1: जी
0: जैसे आप अपनी पढ़ाई कर रही हैं उसमें आप पर्यावरण के बारे में ज़रूर पढ़ते होंगे,
1: जी मैम
0: है ना? तो
1: जी
0: बताएं, पर्यावरण जो अभी प्रदूषित हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है, क्या क्या विचार हैं आपके?
1: देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के तो बहुत से कारण है, जैसे कि कारखानों से निकलने वाला धुआं, इनसे भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। और जैसे कि गाड़ी वाहन है, उनसे भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। हम कई ऐसी चीजें भी ले आते हैं, जैसे कि कुछ प्लास्टिक वाली चीजें हैं, वो जल्दी नष्ट नहीं होती हैं, और हम उनको ऐसे खुले में फेंक देते हैं,
0: है ना? हाँ बिल्कुल,
1: उनसे भी प्रदूषण होता है।
0: हाँ बिल्कुल। और हम उनका लगातार उपयोग कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक पॉलिथीन है, बॉटल है ना, प्लास्टिक की है, तो इन्हें हम क्यों ना, जरूरी ये हो कि इन्हें हम हटा कर कपड़े के बैग, जूट के बैग, है ना, और स्टील की बॉटल, इन सब का उपयोग करें।
1: हमें इन सब का उपयोग कम करना चाहिए, मतलब जो हमारी प्रकृति से बनी हुई

0: ज्यादा करना
1: हाँ
0: चाहिए,
1: वही मैं कहना
0: जो
1: चाह
0: हमें
1: रही हूँ।
0: लाभदायक भी हो
1: हाँ
0: और आज बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिक से प्रदूषण फैल रहा है।
1: हाँ बिल्कुल। और लेकिन हमारा दायित्व तो ये भी है खुश लक्ष्मी जी कि हम इसे संरक्षित करें, पर्यावरण को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, उन चीजों का उपयोग करें जो हमारे पर्यावरण को अच्छा बनाएं, स्वच्छ बनाएं, है ना
0: जी
1: जी। तो देखिए आपने फोन किया और आपके विचार भी हमें जानने को मिले, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: जी
1: हेलो।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम, आकाशवाणी
0: हाँ
1: भोपाल
0: जी,
1: से,
0: आपका नाम बताएं।
1: नाम सोनकांत, ग्राम पटेरी, जिला दमोह से बोल रहे हैं। जिला
0: अच्छा
1: दमोह
0: जी, तो आपका फोन लगा है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका फोन लगा है ना।
1: जी
0: तो
1: मैडम।
0: हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। कहाँ आप, कौन से गांव, मतलब कहाँ रहते हैं आप? दमोह में रहते हैं ना?
1: ग्राम पटेरी है, जिला दमोह।
0: हाँ जी, तो आपने अपने आसपास देखा होगा कई बार लोग प्लास्टिक के बैग, पॉलिथीन है ना, बॉटल का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल का, उन्हें फेंक देते हैं। तो क्या
1: जी
0: ऐसा
1: मैडम।
0: करना आपको सही लगता है?
1: नहीं मैडम, ये तो गलत है। ये प्लास्टिक के सामान है जो यहाँ वहाँ नहीं फेंक रहे, उनको इकट्ठा करके जला देना चाहिए।
0: हाँ, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि प्लास्टिक की चीज़ें को हम जलाते हैं तो उससे धुआं भी निकलता है, वो धुआं भी खतरनाक होता है ना।
1: हाँ मैडम, हाँ
0: हाँ, तो मैं ये
1: प्रदूषण भी।
0: कहना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक की बजाय हम कपड़े की थैली, जूट के थैले है ना, स्टील
1: हाँ,
0: की
1: इनका उपयोग
0: बॉटल,
1: ज्यादा से ज्यादा करें।
0: ज़्यादा से ज़्यादा इनका उपयोग करें है ना,
1: हाँ, इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, और जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं इनका उपयोग कम करें। ज्यादा
0: है
1: कम
0: ना।
1: करेंगे तो
0: प्रकृति,
1: प्रदूषण
0: जी
1: निकलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति से जो जुड़ी चीज़ें हैं है ना, जो पुराने समय में हम उपयोग करते थे, तो क्यों ना उन्हीं चीजों को हम फिर से उपयोग करें जो भूल गए थे शायद हम।
1: हाँ मैडम, अभी जो पहले जमाने में उपयोग करते थे उन्हीं को उपयोग करें तो बेहतर रहेगा। प्रदूषण नहीं होगा,
0: बिल्कुल
1: स्वस्थ रहेंगे,
0: बिल्कुल,
1: वातावरण में शुद्ध हवा मिलेगी,
0: हाँ
1: स्वास्थ्य ठीक
0: बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हम यही आपसे जानना चाह रहे थे, और इसमें हम सबकी भागीदारी होगी तभी हमारा
1: रहेगा।
0: पर्यावरण
1: भागीदारी तो
0: जी
1: हम
0: सुरक्षित
1: सुरक्षित
0: रहेगा, है ना।
1: रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत

0: जी नमस्कार। हाँ जी,
1: नमस्कार दीदी।
0: आपका नाम बताएं।
1: सनी शर्मा,
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप, आपकी जगह का नाम बताइए।
1: गंजवास होता राजीव नगर।
0: अच्छा जी, तो कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आज आपने फोन किया है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, और हम
1: हाँ
0: कुछ
1: दीदी,
0: बातें आपसे करना चाहेंगे, आपके विचार भी जानना चाहेंगे कि आजकल पर्यावरण में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण, तो इसके लिए
1: यार
0: क्या
1: सब मैम,
0: हम दोषी हैं कहीं ना कहीं,
1: जी,
0: कैसे बताएं,
1: हाँ हम दोषी हैं क्योंकि हम प्रदूषण फैलाते हैं।
0: है ना। बहुत सारी चीजें हम ऐसे भी उपयोग करते हैं जैसे कि प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के बॉटल, इसके अलावा हम अपनी जो बहुत सारी गाड़ियां भी आजकल चल रही हैं, और
1: हाँ कचरे की गाड़ी में कचरा
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: डाल
0: और
1: देते
0: दूसरी बात यह है कि जैसे कि एक कार है या एक बाइक है, उसमें हम एक ही व्यक्ति जा रहे हैं, हो सकता दो भी जा सके, है ना। कार में तीन लोग
1: हैं। हाँ
0: चार
1: दीदी,
0: लोग भी जाके जा सकते हैं अपने निश्चित स्थान पर,
1: हाँ
0: तो इससे क्या होगा कि पेट्रोल की बचत भी होगी और साथ ही साथ जो धुआं हो रहा है, प्रदूषण है, वो भी कम होगा। क्या सोचते हैं आप,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कुछ ऐसी
1: हाँ
0: चीजें
1: दीदी सही
0: हमें
1: सब।
0: अपनानी पड़ेंगी कि हम अपनी बिजली, अपनी ऊर्जा
1: जी हाँ दीदी,
0: की बचत करें।
1: जी हाँ
0: और क्या कर सकते हैं हम बताएं, आप पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए, संरक्षित करने के लिए और क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से उपाय।
1: हाँ हम कचरे की गाड़ी में कचरा डालें, प्रदूषण ना फैलाएं धुएं वाली गाड़ी में।
0: और दूसरी
1: हाँ
0: बात, हम ये चाहेंगे कि हम अपने आसपास हरियाली और स्वच्छता भी रखें।
1: जी बिल्कुल दीदी
0: जी,
1: बिल्कुल,
0: तो देखिए आपने फोन किया, हमारे साथ विचार साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, जिसमें आज हमने अपने सभी श्रोता साथियों से जाने कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें अपनानी चाहिए। आपके विचार जान के हमें बहुत अच्छा लगा। तो दीजिए मुझे इजाजत, अपनी रेडियो मित्र श्वेता को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी श्वेता तिजोरिया की। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे के तीसरे चरण में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे, जिसके बाद श्री मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भाग लेंगे, जिसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी राज्य सरकारों को दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल राज्य में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये रिसर्च सेंटर महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों एवं सांदीपनी विद्यालयों में आज से 30 जून तक स्कूल चले हम अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत शाला प्रारंभ उत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत प्री प्राइमरी से 8वीं तक के समस्त स्कूलों में बाल सभा के आयोजन के साथ ही पहले दिन विशेष भोज का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर व सब जूनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। चैंपियनशिप में 25 स्वर्ण, 11 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ कुल 39 पदक प्रदेश के खिलाड़ियों ने अर्जित किए। और प्रदेश में इस हफ्ते मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने आज के लिए भोपाल, ग्वालियर समेत करीब 30 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? पहला गीत हमने आपके लिए लिया है, फिल्म है एक दूजे के लिए, लता मंगेशकर के साथ SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस सब गीत को पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने, चिट्ठियां भेजी हैं। बीना जिला सागर से विमल कठरिया, राजमती कठरिया, सलिल सुनीता कठरिया, संजय रत्ना कठरिया, ग्वालियर से स्नेहलता हरिश्चंद, छिंदवाड़ा से अशोक जैन, शोभा जैन, जुमेराती भोपाल से संजय संध्या जैन और सुनील जैन गौतम नगर से। तो आप सभी की

0: फरमा लिए।
1: आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश आकाशवाणी मध्य प्रदेश से और मैं हूं आपके साथ साधना जैन। अगला गीत चौदहवीं का चांद इस फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत है रवि का। और इस गीत को बड़ी दूर से हमें चिट्ठियां भेजी हैं अमेरिका के बॉस्टन से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन, उनकी मित्रा बिंदु जैन, आपके परिवार से प्रियांक, पुनीता, अंकुर, आर्जव, अनिरुद्ध, जो भारत में अपने भाई और रिश्तेदारों को सुनाना चाहते हैं डॉक्टर विजय प्रकाश जी की ओर से, नागपुर से डॉक्टर विजय जैन, लता व किशोर मोहरिल, हेमंत देश पांडे, मोहन और रमेश बल्लाल को सुनाना चाहते हैं। तो लीजिए डॉक्टर विजय प्रकाश जी अमेरिका में सुनिएगा और नागपुर में अपने दोस्तों को सुनवाइए चौदहवीं का चांद इस फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश साधना के साथ। अगला गीत ड्रीम गर्ल फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। और इस गीत को पसंद करना चाहा है दिल्ली से बुलबुल आदि आर्यवीर, सपना और परिवार के सदस्य। दिल्ली से ही पंडित अशोक शास्त्री, सोनागिर से शशि श्रेयांश पप्पू जैन, खंडवा से बबली जैन ने इस गीत को सुनना चाहा। आप सभी की पसंद पर ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत है।

0: दी भला आँख में चोली, दाई आँख बंद के बाई आँख खोली।
1: किसने?
2: मैंने?
1: नहीं तो

आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, मैं हूं साधना। सरस्वती चंद्र का वो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मुकेश की आवाज़ में गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को पसंद किया है दिल्ली से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन, इंदौर से साइकिल वाले परिवार में चंदा जैन, सुशीला जैन, अरविंद उषा सिंघई, महेंद्र सिंघई, जितेंद्र भारती सिंघई और राजेश जैन, रजनीश जैन, रत्नेश जैन, निशांत, आशीष जैन, अंकेश जैन, मोहित, जानू जैन। और इसी गीत को सुनना चाहा है इंदौर से ही बिंजल, सुरभि, सिद्धि, सुनीता, रचना, प्रीति, रेशु और सारिका ने। इसी गीत को सुनना चाहा है शशि जैन ने पालीताना से। तो आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं सरस्वती चंद्र का ये गीत।

और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं तीसरी कसम फिल्म में मुकेश को। हसरत जयपुरी ने संगीत लिखा है और शंकर जयकिशन ने, हसरत जयपुरी ने इसका गीत लिखा है और संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने। और आप सभी ने इस गीत को पसंद किया है। दिल्ली से बिंदु, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर ने इस गीत को पसंद किया है। साथ ही रियांश ठाकुर भी हैं। तो आप सभी सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश का अंतिम गीत उपकार फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ है। गीत लिखा है गुलशन बाबरा ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और इस गीत को पसंद किया है जबलपुर से पातली वाले रुचिर शिखा ओमी और कामनी जैन ने। इसी गीत को पसंद किया है नवीन निश्चल अक्षत साहिल मनु जैन नेहा जैन सौम्या जैन जूही श्रुति जैनिशा जैन बीना से। तो आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं हम उपकार फिल्म का अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइशों में थी आपके साथ साधना जैन। इसी गीत के साथ संपन्न होती है आज के फरमाइश की ये यात्रा। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण अंतराल के बाद।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
5: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
4: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
5: अरे काहे का मजा।
4: क्यों, क्या हुआ?
5: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
4: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
5: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
4: ये हुई ना बात।
6: बदलो बदलो, आदत बदलो।
7: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
6: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान
8: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
9: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
10: क्या?
9: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
10: वो कैसे?
9: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
10: पर सुनेंगे कैसे?
9: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
11: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें सुनिएगा जंग लगी तलवार का भाग 11।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नारायणी के पकड़े जाने पर सभी लोग हकीकत जानने के लिए ठाकुर साहब के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। ठाकुर उन्हें बताता है कि भूख की मारी नारायणी इतनी रात गए उनसे पैसे मांगने आई थी। यशवंत नारायणी की ओर से बलबीर स्वामी से माफी मांगता है और नारायणी को घर छोड़ने जाता है। कंपनी अपना घाटा पूरा करने के लिए अपनी शर्तों पर बाहर से नए मजदूरों को बुलाती है। शांत पड़ी मशीनों का शोर फिर से शुरू हो जाता है। ये देखकर हड़ताली मजदूरों के सीने पर सांप लौटने लगता है। यूनियन के नेता शास्त्री जी से मिलने जाते हैं। शास्त्री से उन्हें पता चलता है कि लेबर इंस्पेक्टर मुंशीगंज के किसानों को मजदूरों को अनाज न देने के लिए भड़का रहा है। फंड का इंतजाम करने के लिए शास्त्री कंपनी के सीमेंट के ट्रक को लूटने की सलाह देता है। उधर कंपनी के दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर नया नोटिस लगाया जाता है, जिसमें हड़ताल को अवैध करार देते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा इस बात को मान्यता देने का उल्लेख होता है। नारायणी अपने मुन्ना के साथ तरबूज को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती है, जिसे उसने कटीली झाड़ियों के नीचे छिपा दिया था। साई नदी के तट पर पहुंचने पर नारायणी को बसुमती मिलती है, जो कि तरबूज खा चुकी होती है। बसुमती नारायणी को बताती है कि ठाकुर साहब नपुंसक हैं और उसे उसके चरित्र पर कोई संदेह नहीं है। ये सुनकर नारायणी खुश होती है। अब आगे।

0: शास्त्री जी, अगर जल्द ही कुछ न किया गया तो हमारे हित में अच्छा नहीं होगा। मजदूर हमारे खिलाफ भी विद्रोह कर सकते हैं।
1: उन भूखे नंगे मजदूरों की ये मजाल की हमारे खिलाफ विद्रोह करें? क्या वह जानते नहीं कि हम उनके लोकल लीडर हैं?
0: बात को समझने की कोशिश कीजिए शास्त्री जी। ये वही भूखे नंगे मजदूर हैं जिनके बल पर आपका राजनीतिक अस्तित्व टिका हुआ है। अगर ये भड़क गए तो कोई आपको कौड़ियों के भाव भी नहीं पूछेगा।
1: बलबीर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
0: अरे कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
1: ठीक है ठीक है, मैं कल ही कंपनी के अधिकारियों से मिलता हूं। हड़ताली मजदूरों का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और मेरा राजनीतिक अस्तित्व भी बचा रहेगा। भाई अगली बार विधानसभा का चुनाव जो लड़ना है मुझे, 4000 वोट बहुत मायने रखते हैं बलबीर, बहुत मायने। देखिए ठाकुर साहब, आपकी कंपनी ने अभी अगस्त महीने में ही दिहाड़ी मजदूरों को बर्खास्त करने का नोटिस दिया था, और अब फिर? अरे भाई ये कहां का न्याय है? कुछ तो मजदूरों के हित की सोचिए।
2: देखिए शास्त्री जी, मजदूरों को तभी बर्खास्त किया जाता है जब कंपनी के पास उनके लिए कोई काम नहीं होता। और फिर हड़ताल का इसलिए भी कानूनी तौर पर समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि सन 75 में हुए समझौते पत्र के अनुसार हड़ताल जायज नहीं है।
1: क्या इस समझौता पत्र पर मजदूर यूनियन की सहमति भी शामिल है ठाकुर साहब?
2: देखिए पिछले दिनों यूनियन और अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई थी।
1: ठीक,
2: इस बैठक में प्रोजेक्ट और मजदूरों की छटाई के मुद्दे पर भी बातचीत हुई थी। लेकिन इस बैठक के उद्देश्य लिखित रूप से तैयार करने और हस्ताक्षर करने तक यूनियन के नेता बहाना बनाकर चले गए थे।
1: क्या
2: बाद में हमें खुद सब कुछ तैयार करके अधिकारियों के पास भेजना पड़ा? अब आप देख ही रहे ना कि यूनियन हमें किस तरह निशाना बना रही है।
1: अब हमें क्या पता ठाकुर साहब कि यूनियन कंपनी को किस तरह निशाना बना रही है, आप बताइए।
2: यूनियन हमारी इसी चिट्ठी को निशाना बनाकर भोले भाले मजदूरों को गलत रास्ते पर ले जा रही है। हमेशा अधिकारियों के साथ कुछ बेबुनियाद विषय को लेकर बहस और झगड़ा करती रहती।
1: देखिए देखिए ठाकुर साहब, आप और आपकी कंपनी मजदूर यूनियन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। अरे आपकी कंपनी मजदूर हितों की भक्षक है जबकि यूनियन रक्षक है। कंपनी हितों को साधने और मजदूरों को शोषण करने बाबत ही आप ऐसा कर रहे हैं, सब जानते हैं हम।
2: नहीं नहीं शास्त्री जी, हमारे पास अपनी बात के पक्ष में पर्याप्त तर्क हैं।
1: कैसे तर्क?
2: मिसाल के तौर पर मासिक वेतन पाने वाले मजदूरों और रोज की मजदूरी करने वालों की सुरक्षा की मांग की गई है जबकि सन 75 के समझौते पत्र के अनुसार कंपनी के पास काम न हो तो मासिक वेतन पाने वालों को लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाता है और दिहाड़ी मजदूरों को बर्खास्त कर दिया जाता है।
1: इसका मतलब ठाकुर साहब कि कंपनी ये मानती है कि इस समझौता पत्र को नकार कर यूनियन ने कोई गैर कानूनी काम किया है?
2: जी हाँ, इसके अलावा बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखे जाने की मांग भी बिल्कुल निरर्थक है।
1: अच्छा, वो किस मायने में?
2: सन 47 के औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार यूनियन के साथ समझौता न होने पर बुजुर्गों को भी निकाला जा सकता है। इस बारे में कंपनी के पास सन 75 में बनाया गया कानूनी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी है।
1: तो आप मुझे कानूनी एग्रीमेंट का डर दिखा रहे हैं ठाकुर साहब? मैं भी लीगल फाइट करवा सकता हूँ, लीगल फाइट। अरे आपने यूनियन को समझ क्या रखा है?
2: कैश में ना आइए शास्त्री जी, सन 75 के ही राजीनामे के अनुसार कंपनी के लिए महत्वपूर्ण काम करने वाले मजदूरों को तुरंत नए विभाग में काम मिल सकता है। लेकिन उनका वेतन और अन्य सुविधाएं स्थानीय परिस्थितियों पर ही निर्भर रहेंगी। कंपनी इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती।
1: क्या कहा आपने? क्या कहा? कंपनी इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती?
2: जी हाँ,
1: जिला और केंद्र ने जो कानून बनाए हैं क्या उन कानूनों का कंपनी पालन करती है? कंपनी को दिहाड़ी मजदूरों और मासिक वेतन पाने वाले मजदूरों की कोई चिंता है या नहीं?
2: आप तो खामखा भड़क रहे हैं शास्त्री जी।
1: अरे मैं भड़कू नहीं तो और क्या करूं? हाथ पर हाथ धरे तुम्हारी सारी जायज नाजायज बातों को मानता रहूं।
2: देखिए शास्त्री जी, माना कि आप रायबरेली के लोकल लीडर हैं, आपका मान सम्मान और दबदबा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप गलत को भी सही ठहराने की कोशिश करें।
1: ऐसा मैंने क्या कह दिया?
2: अभी तक तो नहीं किया पर कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी बर्खास्त मजदूरों को जिला और केंद्र के कानून के अनुसार पैसा देती रहती है। नियम अनुसार उन्हें दूसरी जगह काम पर भेजते समय रेल और बस का किराया भी मिलता है हमारा पूरा प्रयास रहता है कि बर्खास्त मजदूरों को जल्दी से जल्दी दूसरी जगह काम पर भेजा जाए।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात कही है ठाकुर साहब, क्या सबूत है आपके पास ठाकुर साहब?
2: अच्छा अच्छा, आप सबूत की बात करते हैं
1: जी,
2: तो ठीक है सुनिए। पुराने दिहाड़ी मजदूरों को माधोपुर कंपनी का काम खत्म होने के बाद बर्खास्त किया गया था
1: जी,
2: लेकिन वो मजदूर अब अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। इन लोगों को काम छूटने पर वेतन के अलावा 300 रुपए अलग से दिया जाएगा।
1: बड़ा एहसान करेंगे यहाँ, बड़ा एहसान करेंगे ठाकुर साहब। सारी जिंदगी आधी पगार देकर काम लेने वाली कंपनी 300 रुपल्ली पकड़ाकर मजदूरों का भला करने चली है। वाह,
2: देखिए देखिए शास्त्री जी, कंपनी दूसरी कंपनियों की अपेक्षा मजदूरों को सबसे अधिक वेतन देती है, फिर दूसरी कंपनियों में भी तो मजदूरों को बर्खास्त किया जाता है। कंपनी हमेशा बर्खास्त मजदूरों को नए विभाग में बहाल करती आई है।
1: ठाकुर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि बर्खास्त कितने मजदूर होते हैं और बहाल कितने होते हैं? ब्यौरा तो होगा आपके पास।
2: देखिए ये कंपनी का निजी मामला है, बाहरी लोगों के सामने इन बातों का खुलासा नहीं किया जा सकता।
1: अरे क्या करेंगे खुलासा, क्या खुलासा करेंगे आप? मुझसे सुनिए आप, बर्खास्त होते हैं 1000 मजदूर तो बहाल होते हैं सिर्फ 100-200 मजदूर, और वो भी सिर्फ कंपनी के चहेते। क्यों, ठीक कह रहा हूं मैं?
2: देखिए मैं आपसे अधिक बहस नहीं करना चाहता, आपकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि कंपनी ने पुराने मजदूरों के प्रति हमेशा सहानुभूति दिखाई है। जिन मजदूरों ने 20 साल से अधिक कंपनी के लिए काम किया है उन्हें स्वैच्छिक अवकाश की सुविधा दी गई है, ऐसे मजदूरों को ग्रेचुटी स्कीम की सुविधा भी दी जाती है।
1: चलिए ठाकुर साहब, हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं, लेकिन ये तो बताइए कि यूनियन की डीए बंटवाने की मांग पर आपका क्या नजरिया है?
2: हाँ ठीक है, यूनियन की इस मांग से कंपनी किसी हद तक इत्तेफाक रखती है, लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3 महीने के बाद ही मिल पाएगा, तभी इस पर अमल हो सकता है, इसीलिए यूनियन की ये मांग भी निरर्थक।
1: और बोनस, बोनस मजदूरों को कब दिया जाएगा ये बता सकते हैं?
2: देखिए कंपनी ने मजदूरों को पहले ही बता दिया है कि सन 76-77 का बोनस सन 78 के मार्च महीने के बाद ही दिया जाएगा, क्योंकि तभी इसके नफा नुकसान का हिसाब तैयार किया जाएगा।
1: वाह वाह ठाकुर साहब, बहाना बनाकर टालने में बहुत पारंगत हो गए हैं आप, लेकिन मेरा नाम भी शास्त्री है ठाकुर साहब, शास्त्री। अब आप ग्रेचुटी की मांग को भी किसी बहाने से खारिज कर देंगे, क्यों?
2: देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 20 साल से कंपनी की सेवा करने वाले खास मजदूरों को ही ये सुविधा दी जाती है।
1: मैं कंपनी के खास मजदूरों, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। मजदूरों नहीं, खास चमचों या 20 साल पुराने मजदूरों की बात नहीं कर रहा हूं ठाकुर साहब, मैं बाकी के उन मजदूरों की बात कर रहा हूं जिन पर कंपनी की टेढ़ी नजर है।
2: देखिए देखिए, आप सरकारी कर्मचारियों के लिए बने ग्रेचुटी एक्ट की बात कर रहे हैं, ये एक्ट कंपनियों पर लागू नहीं होता।
1: हाँ ठाकुर साहब, हमने तो सोचा था कि हम बातचीत के जरिए किसी सार्थक निर्णय पर पहुंच सकेंगे, लेकिन ठाकुर साहब आपकी लफाजी की वजह से बात बन नहीं सकी। चलते चलते आपको एक बात बता दूं ठाकुर साहब,
2: क्या?
1: भले ही मजदूरों को शहीद होना पड़े, भले ही साई नदी में पानी की जगह रक्त का उफान बहे, लेकिन हड़ताल, हड़ताल जारी रहेगी ठाकुर साहब, याद रखिएगा, हड़ताल जारी रहेगी।
2: क्या?

0: ए बाबू कुछ खाने को देना, बहुत भूख लगी है।
1: अरे
0: कुछ खाने को।
1: कौन है रे तू, कहाँ से आई है?
0: मैं दलितों की बैरक में रहती हूँ बाबू, कुछ खाने को देना, पिछले एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है।
1: अच्छा तो तू यूनियन के साथ है?
0: बातें ना बना बाबू, रोटी का कोई टुकड़ा है तो देना, भूख लगी है।
1: अरे अरे अरे तू जवान है, खूबसूरत है, अरे तू भूखी क्यों मरती है? अरे मुझसे कहना, मैं तुझे यहाँ से दूर ले चलूंगा। हाँ सच में मेरे साथ रहेगी तो फिर कभी भूखी नहीं रहेगी।
0: सच सच बाबू, तू मुझे रोज खाना खिलाएगा?
1: हाँ मैं सच कहता हूँ, खाना भी खिलाऊंगा,

0: के लिए नए नए कपड़े भी दूंगा।
1: सच बाबू, तू कितना अच्छा है। मेरा बाबू और दादी ना तो मुझे खाने को देते हैं, ना ही नए कपड़े दिलवाते हैं।
0: ओह, तभी तो तेरा चेहरा कुमला गया है। देख तो, इस जवानी में तेरा रंग कैसा काला हो गया है। अच्छा अच्छा, ये ले, 5 रुपए ले ले ले ले। अरे रख ले ना, कहीं से कुछ खरीद कर खा ले।
1: बाबू बाबू, तेरा ही एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी।
0: अरे अरे सुन सुन, अपना नाम तो बता दे।
1: मेरा नाम पार्वती है बाबू।
0: हाँ हाँ, तो पार्वती कल शाम को स्टेशन पर मिलियो। हाँ, मैं तेरा इंतजार करूंगा। आई ना।
1: अच्छा, आऊंगी बाबू, आऊंगी।
0: ठीक है,
1: जरूर आऊंगी।
0: ठीक है पार्वती।

0: नारायणी
1: आओ काकी।
0: हाँ भगवान तेरा भला करे नारायणी, जो तू हमको मिल गई। अच्छा पहले ये बता कि तेरा मर्द कैसा है?
1: कैसे होंगे काकी, मौत की राह देख रहे हैं।
0: चुप कर निगोड़ी, हैं क्या अनाप शनाप बक रही है?
1: तुम बताओ काकी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी?
0: अरे हाँ, तुझे एक बात बतानी थी।
1: कौन सी बात?
0: होशियार रहे नारायणी, होशियार।
1: हाँ?
0: तुझे नहीं मालूम कैसे भयानक दिनों का सामना करना पड़ सकता है?
1: भयानक दिन? मैं कुछ समझी नहीं काकी।
0: अरे हम मुंशीगंज में काम के लिए गए थे। हम बीमार लोगों के कपड़े धो सकते हैं, यहाँ तक कि 5 महीने का गर्भ। राम राम राम राम राम।
1: क्या हुआ काकी, क्या कहीं काम नहीं मिला?
0: अरे वो काम की क्या कहूँ, बस पीने का पानी मांगा तो गाली दे दी, कुत्ते पीछे छोड़ दिए। देख नारायणी, तेरी गोद में एक नन्ना बच्चा है, जब छठवीं होगी तो जेठ महीने की लू में तू राय बरेली की सड़क पर बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ फिरेगी। और फिर तेरा वो बीमार मरद, उसको भी घसीटना पड़ेगा, तो क्या करेगी तू? अरे हम तो जानते थे एक भी पैसा न बचा होगा। तू नहीं जानती नारायणी, वो दोनों शैतान झूठी गवाही देने के लिए बदनाम हो चुके हैं। हाँ अच्छा चल छोड़ उन दोनों को, अपने मतलब की बात सुन।
1: हाँ सुन ही तो रही हूँ तुम्हारी बात।
0: सुनने में आया है कि राय

0: अरे उधर देख, मदन भैया उधर देख, एक रोटी के लिए चार कुत्ते आपस में किस तरह लड़ रहे हैं।
1: रोटी? हाँ, रोटी ही तो है वो। बामू भैया क्यों ना मैं कुत्तों से रोटी छीन लूं।
0: अब मरना है क्या? देखा नहीं कितने खतरनाक कुत्ते हैं, काट लिया तो पेट में ये बड़ी बड़ी सुइयां लगानी पड़ेंगी।
1: सुइयां तो तब लगेगी ना जब जब मैं जिंदा रहूंगा, भूख से तो वैसे ही एक दो दिन में मर जाऊंगा बाबू भैया। हथमरा तो मैं पहले ही हो रहा हूँ, कब कश खाकर गिर पड़ूं पता नहीं।
0: ना बाबा ना, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है।
1: तो ठीक है ठीक है, तुम यही खड़े रहो। हाँ मैं कुत्ते के मुंह से रोटी छीन कर लाता हूँ।
0: भूखे कुत्तों के मुंह से बोला आज तक कोई रोटी छीन सका?
1: कुत्ते ही तो है ना, शेर तो नहीं। फिर भूखा इंसान तो शेर के मुंह का शिकार छीन लाता है। मैं तो चलता हूँ।
0: अरे अरे सुन तो, मदन मदन, अरे कहाँ जा रहा? कुत्ते ले आओ, अरे इधर आ जा, बोल दे कुत्ते।
2: अरे बाप रे, लगता है कुत्ते ने उसे जान से मार डाला। अरे अरे अरे, ये कुत्ते तो भाग गए,
0: रोटी भी ले गए।
2: इसको जाकर देखता हूँ। मदन, अरे हाँ मदन मदन,
0: ये हिलडुल क्यों नहीं रहा? मदन मदन मदन,
2: अरे अरे इसकी तो सांस ही बंद हो गई है। मार डाला, अरे अरे मार।

0: बाबू, अरे कहाँ भागा जा रहा है बाबू? अरे बाबू रुक तो, अरे बता के जा कि किसने किसको मार डाला।
1: कुत्तों ने मतलब तो मार डाला, कुत्तों से रोटी छीनने वाले मदन को अच्छा से मार डाला।
0: कुत्तों के मुंह से रोटी?

से ठाकुर साहब की घर वाली घटना घटी है, तब से यशवंत बाबू मुझसे मिलने नहीं आए। पहले तो इनका हाल चाल पूछने आ जाया करते थे, अब वो भी नहीं। शायद मैं उनकी नजरों में गिर गई हूं, उन्हें मेरे चरित्रहीन होने का विश्वास हो गया है। हो भी क्यों ना, परिस्थितियां ही ऐसी थी। उस पर मेरी चुप्पी भी कांटा बनकर उनके सीने में गड़ रही होगी। वैसे भी यशवंत बाबू सज्जन आदमी है, हमेशा मेरी मदद की। हमेशा मेरी मदद क्यों की? लिच्छू, शंभू या बसुमती काकी की क्यों नहीं की? कहीं वो मुझे जाने तो नहीं लगे? ये मुझे क्या हो रहा? नहीं, एक सुहागन को

0: पर पुरुष के विषय में सोचने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है।
1: नारायणी, हरिओम नारायणी।
0: कौन तुम?
1: हाँ मैं कालू राम, यूनियन का सचिव।
0: तुम मेरे पास क्यों आए हो?
1: मैं अरे मुझे तुम्हारी दुर्दशा देख ही नहीं जाती। ये दूध मुहा बच्चा, बीमार पति और उस पर तेरी गरीबी, हाय हाय हाय। हरि नारायणी, मैं तो तेरी मदद करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मदद
0: मदद। कैसी मदद कालूराम?
1: अरे क्या बसुमती ने नहीं बताया, लूडी कारपेट कंपनी के अफसर मुंशीगंज में ही रहेंगे। हाँ, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के माध्यम से सफाई वालों की नियुक्ति होने में तो भी बहुत समय लगेगा। हाँ, अगर तब तक तुम चाहो।
0: हाँ, बसुमती काकी ने मुझे बताया तो था।
1: नारायणी, आजकल तू ठाकुर साहब के यहाँ कपड़े धोने नहीं जा रही है? क्यों क्यों नहीं जा रही?
0: वैसे ही।
1: सुन नारायणी, ठाकुर साहब आजकल बीमार हैं, कुछ दिन के लिए कारपेट कंपनी के तंबू में आकर रहेंगे। हाँ, अगर तू चाहे तो उसकी सेवा में आ सकती है। हाँ, हाँ, समझ रही है ना तू?
0: लेकिन ठाकुर साहब कारपेट कंपनी वालों के तंबू में क्यों रहेंगे वो?
1: अरे नारायणी, तू नहीं जानती, कारपेट कंपनी के साहब के साथ ठाकुर साहब की दोस्ती है। बहुत ही गहरी दोस्ती। इलाज करवाने के लिए ठाकुर साहब ने वहां रहने का मन बनाया है। अगर तू चाहे तो दो दिन बाद चुपचाप पुरानी सड़क से आकर अपना काम शुरू कर दे। हाँ, हाँ।
0: लेकिन वो यूनियन के आदमियों ने देखा और मारपीट की तो?
1: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। कोई डर नहीं। हाँ हाँ। वो क्या है, कारपेट कंपनी के दरवाजे पर दो बंदूकधारियों का पहरा रहेगा। बोल है, क्या कहती है? अरे बोल ना नारायणी, बता मैं ठाकुर साहब को क्या जवाब दूं? बोल बोल बोल बोल बोल।
0: कालूराम, पहले तुम मुझे ये बताओ कि यूनियन के सचिव होकर तुम ठाकुर साहब का साथ क्यों दे रहे हो?
1: ओह, अरे नारायण छोड़ इस बात को, ये अंदर की बात है। हाँ, अंदर की बात, तू अपनी बात बता। ठाकुर साहब ने विशेष रूप से मुझे तुम्हारे पास भेजा है।
0: मुझे सोचने के लिए समय चाहिए।
1: समय चाहिए, ठीक है। तो मैं दो दिन बाद फिर आऊंगा।
0: नहीं नहीं, तुम मत आना, मैं खुद आऊंगी।
1: खुद आएगी? हाँ, ठीक है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, ठीक है।
0: हाँ ठीक है।
1: अच्छा।
2: छिपाई क्यों बैठा? अब चल, जुलूस में हमारे साथ चल।
3: नहीं जाना मुझे जुलूस में, नहीं शामिल होना इस हड़ताल में। मुझे बेनी हालत पर अकेला छोड़ दो।
2: तू रो रहा है भिगू? अरे क्या हुआ तुझे? देख भिगू, मैं तेरे भाई जैसा हूँ, मुझे बता क्या बात है।
1: मैं बर्बाद हो गया यशवंत, मैं बर्बाद हो गया।
2: क्या?
1: मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं कहीं का नहीं रहा यशवंत, कहीं का नहीं रहा।
2: भृगु देख तू रो मत, चुप हो जा। जो भी बात है, मैं तेरे भाई जैसा हूँ, तू मुझे साफ साफ बता।
1: पार्वती?
2: हाँ हाँ, क्या हुआ पार्वती को?
1: पार्वती मेरे मुंह पर काली पोत कर भाग गई।
2: क्या?

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार की 11वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्यप्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगी। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो सकता है। करीब 15 दिन तक चलने वाले इस सत्र में सदन की 10 से 12 बैठकें प्रस्तावित हैं। विधानसभा सचिवालय ने सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया है। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान और नौवे महासचिव एंटोनियो गुतरस का कार्यकाल इस साल के अंत में समाप्त हो जाएगा। अगले वर्ष 1 जनवरी को नए संयुक्त राष्ट्र महासचिव अपना पदभार ग्रहण करेंगे। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब दावे आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे और इनका निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 जुलाई को किया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ाए गए दान और कीमती सामान के दुरुपयोग के आरोप में राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की है। साथ ही 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। और महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

स्वागत है आप सभी प्यारी प्यारी सखियों का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूं मैं दीपलक्ष्मी त्रिपाठी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत महंगा सौदा करती है ये जिंदगी, बहुत महंगा सौदा करती है ये जिंदगी। एक नौकरी के चक्कर में गांव, घर, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त सबको छोड़ना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है सखियों, घर चलाने के लिए दूर शहर या विदेश में काम करने वाला इंसान सिर्फ पैसा नहीं भेजता, वो अपनी खुशियां, आराम और परिवार के लिए सपने भी भेजता है। घर से दूर रहना कोई शौक नहीं, बल्कि अक्सर एक मजबूरी या बेहतर भविष्य की तलाश होती है। चाहे वह देश के भीतर किसी दूसरे शहर में रहने वाले लोग हों या सात समंदर पार विदेशों में बसे प्रवासी, अपने माता पिता, जीवन साथी और बच्चों से दूर रहने का दर्द वही समझ सकते हैं जो इसे जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेशर दिवस इसी संघर्ष को सम्मान देने का माध्यम है। जी हाँ सखियो, हर साल 16 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेशर दिवस, जो अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करने वाले प्रवासियों के त्याग और उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को समर्पित है। कई माता पिता बच्चों की पढ़ाई इसी पैसे से करवाते हैं, घर का खर्च चलता है, इलाज होता है और सपनों को सहारा मिलता है। लेकिन इस पैसे के पीछे एक अलग कहानी भी होती है, परिवार से दूरी, त्योहारों में अकेलापन और लगातार मेहनत। फिर भी लोग मुस्कुरा कर काम करते हैं ताकि उनके अपने खुश रह सकें। हर भेजा गया रुपया सिर्फ कमाई नहीं, परिवार के लिए प्यार और जिम्मेदारी की पहचान होता है। दूरी चाहे कितनी भी हो, परिवार के लिए किया गया प्रयास दिलों को जोड़े रखता है। एक प्रवासी का जीवन बाहर से जितना चकाचौंध भरा दिखता है, भीतर से वह उतना ही एकाकी और संघर्षपूर्ण होता है। त्योहारों, शादियों या किसी बीमारी के समय घर से दूर रहने की टीस सबसे ज्यादा महसूस होती है। अपनों के बिना हर उत्सव अधूरा सा लगता है।

0: आपका बिजनेस करने का सपना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैसा और लोन का है, तो यह जानकारी आप सभी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री योजना स्टैंड अप इंडिया मिशन की। हमारी कई सखियां हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, लेकिन कैपिटल और फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी उनके कदम रोक देती है। तो इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया मिशन शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को स्वरोजगार और बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस मिशन के तहत बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। यह लोन मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग बिजनेस जैसी क्षेत्रों में नया उद्योग शुरू करने के लिए दिया जाता है। योजना का मकसद सिर्फ लोन देना नहीं, बल्कि लोगों को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने के लिए प्रेरित करना भी है। अगर कोई महिला अपना बुटीक, फूड बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट या ब्यूटी पार्लर या सलून या कोई उद्योग शुरू करना चाहती है, तो यह योजना उसके लिए मददगार हो सकती है। आवेदन के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी बैंक या आधिकारिक पोर्टल से ली जा सकती है। याद रखिए, कई बड़े बिजनेस भी एक छोटे कदम और सही अवसर से शुरू हुए थे। और अगर आप कभी बिजनेस शुरू करने का सपना है, तो योजनाओं की जानकारी जरूर लें और आगे बढ़ें। याद रखिए, सपनों की उड़ान तभी मिलती है जब हौसलों के साथ सही जानकारी भी हो। और हाँ, उड़ान से याद आया कि अब वक्त है मेरी उड़ान क्रम का, तो सुनते हैं मेरी उड़ान। सखियों, योगा के प्रति पूरी दुनिया में लोगों की जागरूकता बढ़ी है। आज के समय में खुद को सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखने के लिए लोग योगा का सहारा ले रहे हैं। शायद इसीलिए योगा के क्षेत्र में बहुत ही सुनहरा अवसर है आप सभी महिलाओं के लिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर माया खिलावदिया, जो कि एक योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर हैं। माया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: माया जी, हमारी सखियों को आप बताइए कुछ अपने बारे में।
1: मेरा नाम डॉक्टर माया खिलावदिया है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में योग डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ 4 वर्षों से। मेरा पर्सनल योगा सेंटर है, पर्सनल होम विजिट भी लेती हूँ, एक योगा थेरेपिस्ट हूँ।
0: तो मैम, आप कितने साल से इस प्रोफेशन में हैं?
1: वैसे तो मैं 2009 से सबसे पहली बार योग को मैंने जाना कि योग क्या है, उसके बाद से लगातार आज तक योग के पद पर कार्य कर रही हूँ। जब मैंने योग को समझा कि योग क्या है, योग मुझे ऐसा लगता था सिर्फ आसन वगैरह ही, पर श्वास पर ध्यान लगाकर करा तो मैंने अपने अंदर के हार्ट बीट को सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये इंटरनल जो शांति प्रदान करने वाली जो सुख की अनुभूति होती है, योग कर कर अनुभव किया।
0: मैम, इतने टाइम से आप योग सिखा रही हैं लोगों को, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक का?
1: कई अलग अलग पेशेंट आए, कई स्वस्थ व्यक्ति आए, कई अस्वस्थ व्यक्ति आए। ये चेक करा कि इस संसार में पूर्ण रूप से कोई स्वस्थ नहीं। आजकल वैसे देखा जाए लैपटॉप और मोबाइल की वजह से सर्वाइकल ज्यादा हो रहा है। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी उठे कि, पर क्या हो रहा है, जल्दी कोई भी नहीं उठना चाहता है। जो ज्यादा बिजी है वो तो यही कर रहा है कि समय के आधे घंटे पूरे होकर फटाफट तैयार होके अपने जॉब पे जाना चाहता है। तो उससे भी मेंटल हेल्थ पे आपको इफेक्ट पड़ेगा, आप अस्वस्थ रहेंगे। आप जितना थोड़ा जल्दी उठेंगे, आप रिलैक्स होके हर कार्य को करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहेंगे।
0: मैम, हम सभी जानते ही हैं कि योगा हमें इंटरनली, मतलब अंदर से कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाता है। बहुत सी हमारी महिलाएं हैं जो अपना वेट लॉस करने के लिए जिम भी जाती हैं, वर्कआउट करती हैं, तो योगा इस में क्या हेल्प कर सकता है? मतलब योगा से आंतरिक जो शक्ति वो तो मिलती है, बाहरी तौर पर योगा किस तरीके से काम करता है?
1: जब हम योग को करते हैं तो आप मान लिया कि आप जिम जा रहे, आपको जिम कैसा फायदा करेगा? सिर्फ शारीरिक रूप से ज्यादा फायदा करेगा, आपको मेंटली इतना फायदा नहीं करेगा। आप योग करते हैं, शारीरिक रूप से फायदा करने के अलावा मानसिक रूप से ज्यादा फायदा करेगा। क्यों करेगा? जब हम योग आसन करते हैं तो हमें कष्ट नहीं होता है। हमारे पतंजलि ने कहा है कि आपको जब भी कोई आसन करना है तो स्थिर सुखमासन के रूप में करना है, मतलब स्थिर अवस्था में आपको करना है कि आपको कोई भी आप आसन कर रहे हैं तो कष्ट न हो, जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो रही है वह आसन आप करें।
0: किस तरह के आपके पास क्लाइंट आते हैं?
1: स्वस्थ व्यक्ति भी आते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति भी आते हैं वेट कम करने के लिए, पर हम स्वस्थ व्यक्ति को ज्यादा अच्छे से रिजल्ट दे पाते हैं क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से आसन कर लेंगे, क्योंकि उनको हर टाइप का हम आसन करवा सकते हैं। और अस्वस्थ व्यक्ति को सावधानी पूर्वक आसन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ आसन ऐसे रहते हैं, मान लिया कि सर्वाइकल है तो गर्दन नहीं झुकाना है, तो फिर कुछ आसन ऐसे रहते आप सूर्य नमस्कार ही करना है मान लीजिए, तब उसमें तो बहुत सारे पोस्चर ऐसे कि आपको गर्दन नीचे करना ही पड़ेगी। तो हमें बस थोड़ा सा यह ध्यान में रखना पड़ता है कि आपके पास जो भी व्यक्ति आ रहा है इस बीमारी का, तो उसको कौन से आसन करवाना है और कौन से आसन नहीं करवाना है।
0: मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक करवाना पड़ता है। तो कहाँ से कैसे सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह कुछ होते होंगे, क्या इनिशियल लेवल पे क्या करना चाहिए?
1: सर्टिफिकेट कोर्स तो वैसे कई संस्थाएं करा रही है, स्कूल कॉलेज वगैरह कई जगहों पे सर्टिफिकेट कोर्स होता है। आपको सिर्फ नॉलेज बढ़ाना है तो आप सर्टिफिकेट कोर्स करें, और आपको अगर कहीं किसी पोस्ट पर जैसे स्कूल में जॉब करना है, कॉलेज में जॉब करना है, तो उसके लिए आपको डिग्री करना पड़ेगी, जैसे डिप्लोमा है, मास्टर डिग्री है।
0: तो ये कितने साल के कोर्सेज होते हैं?
1: डिप्लोमा 1 साल का होता है,
0: अच्छा
1: मास्टर डिग्री आपकी 2 साल की होती है सेमेस्टर के अकॉर्डिंग।
0: अच्छा मैम, एक चीज मैं और जानना चाहूंगी कि लगभग कितना इन्वेस्टमेंट होता है जब भी हम कोई क्लासेस शुरू करते हैं या सेंटर स्टार्ट करते हैं, इनिशियल लेवल पे कितना इन्वेस्टमेंट होता है?
1: यदि आप योग का सेंटर खोलना चाहते हैं तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आपके रैंक की प्लेस हो तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि आपको रैंक नहीं लगेगा। और प्लेस भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ खिड़की हो, कमरे हो, जहाँ से हवा अच्छे से आ रही है,
0: जी
1: ऐसी प्लेस होना चाहिए योगा के लिए। मौसम के अकॉर्डिंग आप टेरेस पे भी शुरू कर सकते हैं, गार्डन में भी कर सकते हैं।
0: मैम, काफी सारी चीजें हमने आपसे जानी कि योगा को एज अ प्रोफेशन हम कैसे कर सकते हैं, और हम अपने घर से ही टेरिस से शुरुआत कर सकते हैं या किसी गार्डन से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कोई महिला अगर घर के बाहर नहीं जा सकती तो ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकती हैं।
1: महिलाओं के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वह घर बैठे भी यह विधा को सिखा सकती है।
0: जी आखिरी में हमारी सखियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं यही सखियों से कहना चाहूंगी कि वह एक अच्छी योगा टीचर बनकर सबसे पहले तो स्वयं योग करें, क्योंकि तो जब तक हम स्वयं योग नहीं करेंगे, उसको अनुभव नहीं करेंगे, तो हम सामने वालों को कैसे करवाएंगे।
0: बिल्कुल
1: इसलिए सबसे पहले स्वयं योग करें, फिर घर में सभी की आदत डालें कि भाई आप भी योग करें, परिवार में योग की आदत डालें, समाज को योग के प्रति जागरूक करें। योग की विधा को अपना कर आप सबसे अच्छा आय का साधन अपना सकती है। हम खुद तो स्वस्थ रहेंगे और सामने वालों को भी स्वस्थ करेंगे।
0: बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके कि योगा एक ऐसी चीज है जिससे हम खुद को स्वस्थ रख ही सकते हैं और साथ में हम दूसरों को भी स्वस्थ बना सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी आय का जरिया भी इसको बना सकते हैं। हमारी सखियों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

और सखियों, अब बारी है रूप लावण्य की। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है और गर्मियों में होने वाली टैनिंग को कम करने के लिए महंगे पार्लर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। दही, बेसन, टमाटर और शहद, नींबू जैसी किचन की चीजें स्किन को साफ कर सकती हैं और नेचुरल ग्लो देने में भी मदद कर सकती हैं। सही तरीके से नियमित उपयोग करने पर ये घरेलू उपाय स्किन को फ्रेश और चमकदार बना सकते हैं, क्योंकि दही और बेसन त्वचा की देखभाल के लिए लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा रहे घरेलू नुस्खों में से है। इन दोनों को मिलाकर चेहरे पर लगाया जाता है तो यह स्किन की टैनिंग साफ करता है और चेहरे पर ग्लो लाता है। वहीं बात करें अगर टमाटर के रस की, तो टमाटर को स्किन के लिए एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह माना गया है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं और डलनेस को कम करते हैं। और सखियो, शहद जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करता है और उसे सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, जबकि नींबू में मौजूद प्राकृतिक एसिड त्वचा की सफाई और टोन को सुधारने में सहायक माने जाते हैं। और जब इन दोनों को मिलाकर चेहरे पर लगाया जाता है तो यह डल स्किन को रिफ्रेश करने और हल्की टैनिंग को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही सखियों, स्किन टैनिंग को हटाने के लिए सिर्फ घरेलू उपाय ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की स्किन केयर भी उतनी ही जरूरी है। धूप में निकलते समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, पर्याप्त पानी पीना और चेहरे की नियमित सफाई त्वचा की टैनिंग से बचाने में मदद करता है।

तो क्यों आजकल मार्केट में जाओ तो चारों तरफ आम ही आम दिखाई दे रहा है। आम तो वैसे भी फलों का राजा है और इसको सभी पसंद करते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि आम से कई सारी स्वादिष्ट और ताजा रेसिपीज बनाई जा सकती हैं। जी हाँ, सबसे लोकप्रिय और झटपट बनने वाली रेसिपी है मैंगो मलाई कुल्फी। आज के फूड जोन क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो मलाई कुल्फी की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए झटपट से लिख लीजिए सामग्री को। मैंगो मलाई कुल्फी बनाने के लिए आपको चाहिए पके और मीठे आम, जिनको आप बारीक काट लें या फिर प्यूरी बना लें। साथ ही चाहिए फुल क्रीम दूध 1 लीटर, चीनी 4 से 5 बड़े चम्मच, कटे हुए मेवे, काजू, बादाम और पिस्ता, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। और आप जानते हैं इसको बनाना कैसे है, जो कि बहुत ही आसान है। एक पैन में दूध उबालें और उसे तब तक पकाएं जब तक वह आधा न रह जाए, यानी कि गाढ़ी रबड़ी जैसी कंसिस्टेंसी कर लेनी है। अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालें, दूध को पूरी तरह ठंडा होने दें और जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें आम की प्यूरी, कटे हुए मेवे मिला दें। इस मिक्सचर को कुल्फी मोल्ड्स या छोटी कटोरियों में डालें, ऊपर से थोड़े मेवे डालें और इसे फॉइल पेपर से कवर करके 8-10 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। लीजिए, तैयार है मैंगो मलाई कुल्फी। कितनी आसान और इतनी टेस्टी कि बस बच्चे तो खुश ही हो जाएंगे। तो सखियों, आप ट्राई कीजिए मैंगो मलाई कुल्फी और मैं सुनवाती हूँ आपको ये प्यारा सा गीत। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, ये बात समझ में आ रही है कि खुशी का मतलब बस एक शांत सुबह, अच्छी हेल्थ, टाइम पर भरे हुए बिल और एक सुरक्षित घर और फालतू झगड़ा ना करने वाले लोग होते हैं। वक्त हो रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आपको बता दे सखियो, इस कार्यक्रम का संयोजन था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का। तो अब दे अनुमति अपनी सखी दीपलक्ष्मी त्रिपाठी को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: इस समय आप है हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
5: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
4: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
5: अरे काहे का मजा।
4: क्यों, क्या हुआ?
5: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
4: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
5: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
4: ये हुई ना बात। युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान
6: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: इस समय आप है हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज कलाकार हैं मुकेश राठौर और साथी इनके गाए लोकगीत आज आप सुनेंगे। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

मुकेश राठौर और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सुजाता वैशंपायन की गाए कुछ भजन। आरंभ कर रहे हैं मीरा की इस रचना के साथ। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

0: कबीर की रचना भी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे सुजाता वैशंपायन के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। अब समय है एक अंतराल का।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
5: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
4: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
5: अरे काहे का मजा।
4: क्यों, क्या हुआ?
5: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
4: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
5: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
4: ये हुई ना बात। युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान
6: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

कयामत से कयामत तक फिल्म का ये गीत है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़। मजरू ने गीत लिखा है, आनंद मिलिंद ने धुन बनाई है।

0: अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए फिल्म कयामत से कयामत तक के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और गुना अभयारण्य जाएंगी। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगी। इस दौरान वे दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हो रही कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दों में स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। साथ ही तबादला अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। MyGov पोस्ट में पिछले 12 वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे में आए बदलावों का उल्लेख किया गया है। इन बदलावों से आवाजाही तेज हुई है, लॉजिस्टिक्स को मजबूती मिली है और विकास के नए मार्ग खुले हैं। पोस्ट में कहा गया है कि बेहतर संपर्क सुविधाओं से दूरियां कम होने के साथ साथ अवसरों में वृद्धि और समृद्ध भारत की नींव मजबूत हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों और सांदीपनी विद्यालयों में आज से 30 जून 2026 तक स्कूल चलें अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत शाला प्रारंभ उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूलों में बाल सभा के आयोजन के साथ ही पहले दिन विशेष भोज का आयोजन होगा। इसके साथ ही शाला में शत प्रतिशत नामांकन, पुस्तक वितरण, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, क्रियाशील बालिका शौचालयों की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता, अभिभावकों का शाला से जुड़ाव जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड कर लिए हैं। एजेंसी ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उसकी टीमें सर्वरों पर लोड की लगातार निगरानी कर रही है। वही 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा है कि यह प्रतिबंध नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का मानना है कि मॉनसून के आने के बाद प्रदेश में बारिश की स्थिति में सुधार होगा। फिलहाल जून माह में प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। प्री मॉनसूनी गतिविधियों के चलते आज भोपाल, ग्वालियर, मई, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर और शहडोल संभागों के 30 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समान नागरिक संहिता के संबंध में जन परामर्श को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आगरमालवा जिला जेल और सुसनेर उप जेल में कल से 21 जून तक साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। नर्मदापुरम जिले की जनपद पंचायत बनखेड़ी क्षेत्र में 12 से 18 जून तक जन कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को उनका लाभ दिलाना और लंबित समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
3: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
5: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। पहली फरमाइश शामिल कर रहे हैं देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की। सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि वाघ, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल की। ग्राम चौहलदा बागपत से संजय ढिंगनिया, नमन मुस्कान और कुणाल की। राजा बाजार बिहिया से सुरेश केसरी, पूनम केशरी और प्रतीक केशरी। नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी, पंकज केशरी और रोहन केशरी। रामलखन फिल्म का गीत मनहर उदास और अनुराधा पोडवाल ने गाया है। आनंद बख्शी की गीत रचना है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, गांव भड़भुंजी जिला आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, मिलन, आयुष और ओम प्रकाश की पसंद है। धीसु दिलवाले, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। सुनना पसंद किया है तेजाब फिल्म का गीत, अनुराधा पोडवाल और अमित कुमार का गाया, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अगले गीत का अनुरोध हमें मिला है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया की। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्ल राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और उनके परिवार के सदस्य। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू की। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक की। लाल दुबट्टा मलमल का फिल्म का नाम है। आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा, गाया है उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल ने।

और आकाश कुमार की ग्राम बगबुड़वा पथरिया सा नरे नेताम और कुसुम नेताम की अनुरोध करता है गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले की, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित की, हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मरकर, हार्दिक कर्मरकर, प्राची कर्मरकर, तनु कर्मरकर की पसंद। ये खत है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की। सुनना पसंद किया है वारिस फिल्म का गीत, लता मंगेशकर सुरेश वाडकर का गाया, वर्मा मलिक ने गीत लिखा है, उत्तम जगदीश ने धुन बनाई है।

0: वारिस फिल्म के इसी गीत को सुनना पसंद किया था शुभचंद बजाज, कालका हरियाणा से और मोहाली पंजाब से टीडी मल्होत्रा ने। वारिस फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर माई गव की एक पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभ्यारण्य जाएंगे। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे 2 प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हो रही कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दों में स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। साथ ही तबादला अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्रक डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड कर लिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। और मौसम विभाग ने प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की होगी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे शाम 6 बजे। रात्रि 8 बजे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत आज आप सुनेंगे आतंकवाद। उर्दू प्रोग्राम कहकशा रात्रि 9:30 पर, इसके अंतर्गत आज होगा आबशारे गजल। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा रूपाली पांडे का ध्रुपद गायन, राग होगा जोग। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा। इसके अंतर्गत कुलदीप शर्मा से ली गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। विषय होगा खरीफ फसलों की तैयारी और बीजोपचार। ये थी सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल। इस समय दोपहर के 3:02 होने वाले हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा समाप्त होती है। 5 बजे हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच DTH पर हमारा प्रसारण जारी।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 5 और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त मार्गेशा
1: और मैं काजल स्वागत करते हैं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: तो दोस्तों, आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन हम बात करते हैं हमारे शहर की। तो आज जो शहर हम आपके लिए लेकर आए हैं ना दोस्तों, वो अपने आप में बहुत खास है। मध्य प्रदेश का ये शहर जाना जाता है यहाँ की बहुत ही फेमस गजक के लिए। अब आप गेस कीजिए कि ये शहर कौन सा होगा, इस शहर में क्या खास है, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, इस सब के बारे में हम कार्यक्रम में आगे बात करेंगे ही। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि हर कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे दो प्रश्न पूछते हैं और इन दोनों प्रश्न के उत्तर आपको कार्यक्रम के अंत में बताते हैं।
1: तो फिर जल्दी से नोट कर लीजिए आज के आपके प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे।
0: और इसी कड़ी में आज का दूसरा प्रश्न है कि भारत में कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार को कौन सा बोर्ड नियंत्रित करता है। इन दोनों प्रश्नों के जो उत्तर है आप गेस कीजिए और हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, मैंने आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा। पता है काजल, उसमें क्या बात की जा रही थी?
3: क्या?
2: कि किस तरह से हम कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं, काम के बीच में ब्रेक नहीं लेते, और ब्रेक ना लेने के कारण हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमारा जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, पोस्चर तो खराब हो ही रहा है, और आई साइड की तो बात ही मत करो। और काम के दौरान छोटे ब्रेक लेना उत्पादन बढ़ाने, मानसिक तनाव कम करने और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है।
3: बिल्कुल सही कहा तुमने, और ये आर्टिकल भी बहुत ही काम का था, क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं तो उससे हमारा जो ध्यान है या जो फोकस है वो बेटर हो जाता है, थकान जो है वो कम हो जाती है, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ जाती है, और आंखों को जो तनाव पड़ रहा होता है आंखों के ऊपर वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। हर 2-3 घंटे या 5-10 मिनट में ब्रेक लेना बेहतर काम करने, कार्य प्रदर्शन और स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है।
2: मैंने इसके साथ ये भी देखा है कि जब हम काम के बीच में ब्रेक लेते हैं तो हमें मानसिक थकान यानी कि जो स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, और बर्नआउट जिसे हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, कुछ हमारे दिमाग में आइडियाज़ नहीं आते, वो भी कम होता है। इसके कारण जो ब्रेक लेना है वो और भी ज़्यादा काम का हो जाता है। नहीं तो अगर हम कंटिन्यूस काम करते रहते हैं बर्नआउट के बीच में तो हमें चिंता होती रहती है, क्योंकि हम हमारी 100% नहीं दे पाते, यानी कि हमारी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है।
3: बिल्कुल सही कहा तुमने, प्रोडक्टिविटी तो बिल्कुल कम हो ही जाती है लगातार काम करने की वजह से, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान रखें, थोड़ा मूवमेंट बनाए रखें, और लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे न रहें या फिर स्क्रॉल न करते रहें। और ये भी देखा गया है कि जब हम लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे नहीं रहते हैं तो हमारी गर्दन का दर्द, पीठ दर्द और आँखों की रोशनी पर जो बुरा असर पड़ता है वो ख़त्म होने लग जाता है, और हमारी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होने लग जाती है। इसी के साथ ब्रेक के दौरान टहलना या स्ट्रेचिंग करना फायदेमंद माना जाता है।
2: सही कहा तुमने। इसके साथ मैंने ये भी देखा है कि हमारी जो क्रिएटिविटी है और डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी आराम करने से यानी कि ब्रेक लेने से कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती है। आराम करने से मस्तिष्क जो है हमारा वो बिल्कुल तरोताजा हो जाता है, जिससे नई समस्याओं का समाधान करने और बेहतर निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें भी सुधार होता है। दोस्तों,
3: बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए जो, और सबसे ज्यादा तो एम्प्लॉयज के लिए यानी कि जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। काम के बीच में अगर वो ब्रेक लेने लग जाएंगे तो वो अधिक संतुष्टि के साथ काम कर पाएंगे और अपना 100% दे पाएंगे उसमें, और इसकी वजह से फिर वो बहुत ज्यादा लग के और मन लगाकर काम कर पाएंगे।
2: सही कहा तुमने। और जब ऐसे बीच बीच में एम्प्लॉयज ब्रेक लेते रहते हैं, इसके कारण एम्प्लॉयज के बीच में इंटरेक्शन भी बढ़ता है। इंटरेक्शन बढ़ने से वर्क एनवायरमेंट जो है वो भी बेहतर होता है, एम्प्लॉयज के बीच में जो एंगेजमेंट है वो अच्छी होने लगती है, और लोगों के बीच में जो कॉम्पिटिशन है कि अरे हमें बस काम करते जाना है, बिना रुके हमें 100% देना है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कम होता है। और इंटरेक्शन जैसे मैंने कहा वो बढ़ने से हमारे यहाँ जो वर्क स्पेस है उसमें क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। और दोस्तों, अगर आपको ब्रेक लेना है तो उसकी कई अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। जो सबसे फेमस टेक्निक है वो है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें ऐसा कहा जाता है कि आप करीब एक टाइमर सेट कर लीजिए 20 से 25 मिनट का, 20 से 25 मिनट बिल्कुल मन लगा के बिना डिस्ट्रैक्शन के आपको काम करना है, और जैसे ही वो टाइमर खत्म हो उसके बाद आपको 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेना है। इस ब्रेक में आप खड़े होकर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं, आंखों को आराम देने के लिए आंखें बंद करके बस 5 मिनट बैठ सकते हैं, पानी पी सकते हैं या कुछ खा सकते हैं, और ऐसा आपको अलग अलग सेट्स में करते जाना है। ऐसा करने से आपकी क्रिएटिविटी बनी रहेगी, आप बर्नआउट बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे, और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छी बनी रहेगी।
3: जी हाँ श्रोताओं, तो हमने आपको इसीलिए इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं। हम आशा करते हैं कि आप इन्हें फॉलो करेंगे ताकि आपकी हेल्थ, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मेंटल हेल्थ और ये सब सारी जो भी चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो सके और मेंटेन रहें।
2: और दोस्तों, अगर आप ये कार्यक्रम सुनते हुए बहुत देर से बस बैठे हुए हैं और काम किए जा रहे तो थोड़ा सा उठ
3: जाइए,
2: टहल लीजिए, पानी पीजिए और कुछ स्नैक्स खा लीजिए,
3: और साथ ही सुनिए ये गीत।

0: तो दोस्तों आज जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हमारा स्पेशल सेगमेंट का दिन है जिसका नाम है हमारे शहर से। तो आज जो शहर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो वैसे तो हर बार हर शहर खास ही होता है, पर आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसे शहर की जो इतिहास, संस्कृति, मिठास और रहस्य सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। और उस शहर का नाम है मुरैना।
1: मुरैना नाम सुनते ही चंबल के बीहड़, वीरों की कहानियां और स्वादिष्ट रसगुल्ले और गजक याद आ जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। वैसे तो मुरैना मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। ये ग्वालियर संभाग का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। अगर मध्य प्रदेश के नक्शे यानी कि मैप को देखें तो मुरैना एक रणनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान पर है।
1: दोस्तों, यहाँ बहने वाली चंबल नदी इस जिले की जीवन रेखा है। चंबल सिर्फ नदी नहीं बल्कि मुरैना की पहचान है।
0: दोस्तों, मुरैना का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। माना जाता है कि ये क्षेत्र प्राचीन काल से ही सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है।
1: और यहाँ का सबसे चर्चित ऐतिहासिक स्थल है मितावली का 64 योगिनी मंदिर।
0: बिल्कुल, और 64 योगिनी मंदिर जो है देखने लायक है। और इसी के साथ साथ ये मंदिर जो है 1000 साल पुराना माना जाता है। इसकी गोलाकार संरचना इतनी अनोखी है कि कहा जाता है कि भारत की संसद भवन की प्रेरणा इसी मंदिर से ली गई थी।
1: दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा शहर और उसकी वास्तुकला देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक इमारत से जुड़ी हो।

0: सिर्फ मितवाली ही नहीं, मुरैना में पडवाली किला और बटेश्वर मंदिर समूह भी बेहद प्रसिद्ध है।
1: दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बटेश्वर में 200 से ज्यादा छोटे बड़े प्राचीन मंदिर हैं। वहां जाने पर ऐसा लगता है जैसे समय पीछे लौट गया हो।
0: वाह कितनी सुंदर बात है। और इतिहास के साथ साथ मुरैना ने कई वीर योद्धाओं और समाज सेवियों को भी जन्म दिया है।
1: यानी मुरैना की मिट्टी में वीरता और विरासत दोनों बसी है। अब हम मुरैना के बारे में और भी जानेंगे दोस्तों। इसके पहले आइए सुन लेते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों, हमने अभी मुरैना के पहचान, उसके इतिहास, उसके भौगोलिक बातों के बारे में बात किया। तो अब हम मार्गेशा, मुझे लगता है कि हमें हमारे श्रोताओं को मुरैना की संस्कृति, परंपराएं और उनके त्योहारों के बारे में भी बताना चाहिए।
1: बिल्कुल काजल। तो दोस्तों, मुरैना की संस्कृति में ब्रज और बुंदेली परंपराओं का बहुत गहरा प्रभाव है। यहाँ की बोली में अपनापन और मिठास दोनों ही सुनाई देता है।
0: यहाँ के गांव में आज भी पारंपरिक लोकगीत गूंजते हैं। शादी ब्याह में ढोलक की थाप और लोक नृत्य की का अलग ही रंग देखने को मिलता है।
1: और त्योहारों की बात करें तो दोस्तों, होली यहाँ बहुत ही खास होती है।
0: क्योंकि ब्रज संस्कृति का प्रभाव होने के कारण यहाँ की होली में रंग, संगीत और उल्लास भरपूर होता है।
1: और शायद इसी कारण से जन्माष्टमी भी यहाँ बड़े उल्लास से मनाई जाती है। मंदिरों में विशेष सजावट होती है और रास लीला का आयोजन भी होता है दोस्तों।
0: इसी के साथ नवरात्रि, दीपावली, रक्षाबंधन और मकर संक्रांति भी यहाँ पर पूरे जोश से मनाई जाती है।
1: अगर हम मुरैना की एक खास परंपरा की बात करें तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि गांवों में मेलों का आयोजन ये यहाँ पर बहुत ही खास माना जाता है। ये मेले सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि सामाजिक मिलन का माध्यम भी होते हैं।
0: और अब आते हैं मुरैना के स्वाद पर मार्गेशा।
1: ओहो, और स्वाद का नाम लेते ही सबसे पहले हमें याद आते हैं मुरैना के रसगुल्ले।
0: सफेद, मुलायम और रस से भरे हुए रसगुल्ले। मुरैना का रसगुल्ला पूरे मध्य प्रदेश में मशहूर है दोस्तों।
1: और जैसा हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ की जो गजक है वो इस जगह की एक अलग ही पहचान है। यहाँ की गजक पूरे देश भर में फेमस है और आज भी आप अगर किस देश के किसी भी कोने में गजक खरीदने जाएंगे ना, तो वहां पे एक अलग से लिखी हुई मिलेगी आपको, मुरैना की गजक।
0: अब तो मुझे मकर संक्रांति की याद आ गई है। इसी के साथ तिल, गुड़ और देसी घी से बने गजक जो है वो सर्दियों में यहाँ का सबसे पसंदीदा स्वाद और स्नैक माना जाता है।
1: और इसके अलावा दाल बाफले पूरे मध्य प्रदेश में ही इसे खाए जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कड़ी, बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी, ये बहुत यहाँ की फेमस है और बहुत पारंपरिक भोजन का भी ये हिस्सा रही हैं ये सारी चीजें।
0: यानी कि मुरैना का स्वाद भी उतना ही समृद्ध है जितना कि इसका इतिहास।
1: सही कहा काजल। और मुरैना के बारे में हम और इसकी जो और भी अलग अलग इसकी चीजें हैं, जैसे भूगोल के बारे में और भी हमें जानना अभी बाकी है, तो ये सब हम बात करेंगे इस गीत के उस पार।

0: दोस्तों अब बात करते हैं मुरैना के भूगोल की।
1: तो मुरैना का जो इलाका है वो चंबल के बीहड़ के लिए जाना जाता है। ये गहरी घाटियों और कटाव वाली भूमि, यहाँ पर इसकी जो है वो खास पहचान है।
0: दोस्तों एक समय था जब यही बीहड़ डकैतों की कहानी से जुड़े थे।
1: लेकिन आज वही चंबल क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन संरक्षण के लिए जाना जाता है।
0: और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चंबल नदी में घड़ियाल और कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि डॉल्फिन भी पाए जाते हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं।
1: और यहाँ पर घड़ियालों का कंजर्वेशन भी होता है, यानी कि यहाँ पर ऐसे एक सेंटर्स हैं जहाँ पर घड़ियाल के जो एग्स हैं, उनके जो अंडे हैं, उन्हें कंजर्व किया जाता है और फिर उनमें छोटे छोटे घड़ियाल जो हैं वो हैच होते हैं। और इसी के साथ अगर हम मौसम की बात करें तो गर्मियों में यहाँ का तापमान काफ़ी ऊंचा रहता है, पर जब सर्दियाँ आती हैं तो मौसम सुहाना और ठंडा हो जाता है।
0: और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो इलाका है ये पूरी तरह से जो पहाड़ है वो बहुत चट्टानी और पथरीले पहाड़ है। इसके कारण यहाँ पर उतनी ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इसी कारण से यहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। मतलब मुरैना में ऐसा अगर आप कभी ठंड के मौसम में जाएँ तो बहुत सारी सर्दी के कपड़े, ग्लव्स और चीज़ें लेकर जाएँ। और मानसून में यहाँ की जो हरियाली है दोस्तों वो तो देखने लायक होती है।
1: बिल्कुल। और शायद ये सही वक्त है मुरैना घूमने जाने का। इसी के साथ मुरैना की अर्थव्यवस्था में खेती की बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ पर सरसों, गेहूं और बाजरे की खेती प्रमुख होती है।
0: उफ, सरसों के पीले खेत मुरैना की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
1: आज मुरैना तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा, सड़क और पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ लगातार काम हो रहा है।
0: और दोस्तों इस जगह को सबसे खास बनाती है, जो यहाँ की सबसे खास बात है वो है यहाँ के लोग। यहाँ के लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को कभी भूलते नहीं हैं। आधुनिकता के साथ परंपराओं को संभाल कर रखना, यही मुरैना की असली खूबसूरती है।
1: तो दोस्तों अगर आप ऐतिहासिक अनुभूति करना चाहते हैं और इतिहास देखना चाहते हैं, संस्कृति महसूस करना चाहते हैं और मिठास चखना चाहते हैं तो मुरैना ज़रूर जाइए।
0: क्योंकि मुरैना सिर्फ एक शहर नहीं है दोस्तों, ये तो एक अनुभव है, एक एहसास है। तो ये शहर जाना आप बिल्कुल अपने लिस्ट में ऐड कर लीजिए। और हाँ, गर्मियों के मौसम में जाना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लू भी बहुत चलती है और एकदम ठंड में भी बच जाइएगा क्योंकि यहाँ की ठंड भी बहुत खास है दोस्तों, जैसे यहाँ की गजब खास है। तो ये जो अभी वाला सीजन चल रहा है जून सेप्टेम्बर तक का, इस मौसम में मेरे हिसाब से सबसे बेहतर रहेगा यहाँ पर जाना। तो
1: बिल्कुल।
0: अब आप कब मुरैना जा रहे हैं अपनी अपनी ट्रेवल लिस्ट में से जरूर ऐड कीजिएगा और हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: पर हमारी युवावस्था में आता है और इसी समय हम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी वित्तीय यानी फाइनेंशियल गलतियां भी कर बैठते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमें कभी फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है ये सिखाया ही नहीं गया। और इसलिए आज हम बात करेंगे कि युवाओं को अपने फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करना चाहिए।
1: बहुत ही ज़रूरी है इस बारे में बात करना। अगर हम सबसे आसान शब्दों में कहें तो युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी है वित्तीय सलाह यानी कि फाइनेंशियल एडवाइस लेना, और ये है कि वो अपनी कमाई से कम खर्च करें और जल्द से जल्द निवेश करना शुरू करें।
0: दोस्तों, छोटी उम्र में बचत और निवेश की आदत आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे कहते हैं उसका लाभ देती है, जिससे आप भविष्य में थोड़ा बड़ा कोष यानी आपकी जो वेल्थ है उसको पहले से ही तैयार करना आप शुरू कर देते हैं।
1: इसी के साथ दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है और वो ये है कि अपनी मासिक आय और खर्च को रिकॉर्ड करें, उन्हें नोट करके रखें। सबसे पहले अपनी अनिवार्य अपनी जो ज़रूरी ज़रूरतें हैं जैसे कि किराया, भोजन, बिल का खर्चा निकाल लें और अनावश्यक खर्च ना करें।
0: दोस्तों, हम हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में तब फंसते हैं जब हमारे ऊपर कोई इमरजेंसी हो यानी कि कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको अचानक से बहुत सारे पैसों की या फंड्स की ज़रूरत हो और हमारे पास वो नहीं होते हैं, और ये जो सिचुएशन होती है ये कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। इसी कारण से ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने की आय का हिस्सा आपके पास हमेशा बचा के रखना होगा।
1: बिल्कुल, और युवाओं को कई बार कर्ज लेने की भी आदत लग जाती है और ये आदत एक जाल है जिसमें एक बार कोई फंस गया तो उसे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी अनजान एजेंसी, अनजान व्यक्ति, यहाँ तक कि अपने खुद के दोस्त या रिश्तेदारों पर भी इतना भरोसा ना करें और उनसे इतने बड़े अमाउंट का कर्ज लेने से बचें।
0: समय पर अपने बिलों का भुगतान करना और अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना ये भी कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंस बनाता है। ऐसा करने से आपके ऊपर लेट बिल पेनल्टी भी नहीं लगती ही, और इसके कारण आपको एक आदत डल जाती है कि जैसे ही बिल का भुगतान आपके पास आया आपने उसे तुरंत पे कर दिया और उसे आगे के लिए नहीं डाला।
1: अब इंटरनेट के कारण हम सभी के पास अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी एक्सेस करने का बहुत ही आसान तरीका मिल चुका है। हमें अलग अलग ऐप्स और मार्केट जो है उसे हम स्टडी कर सकते हैं और हम सही जगह निवेश करने के लिए उनकी हेल्प भी ले सकते हैं।
0: सही कहा दोस्तों, निवेश करना यानी कि सिर्फ स्टॉक मार्केट्स में या फिर इसमें निवेश करना नहीं होता। निवेश कई बार अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि SIP हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, आप इसमें भी डाल सकते हैं जिसमें आपको फिक्स रिटर्न्स मिलेंगे। तो दोस्तों, हम खुद से सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और हमें पता होता है कि हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, इसलिए सिर्फ आवश्यक खर्च करें और जब आपको पता हो कि आप अपना जो बाकी का खर्चा है उसे उठा सकते हैं तभी बाकी के आपके जो शौक है उसे पूरा करने की कोशिश करें। तो फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसी के साथ आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये

0: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम और हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अब वक्त है आज के प्रश्नों के उत्तर देने का। तो हमारा पहला प्रश्न था कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे, तो इसका उत्तर है सर ऑसबॉर्न स्मिथ।
1: और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न था कि भारत में कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार को कौन सा बोर्ड नियंत्रित करता है, इसका उत्तर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहा जाता है। तो दोस्तों, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। इसी के साथ समय हो गया है हमारा आपसे अब विदा लेने का। दीजिए इजाजत मार्केशा
0: और काजल को। नमस्कार।

अभी युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे हैं ज्वेल थीफ फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की। मजरू सुल्तानपुरी के बोल एस डी बर्मन का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों के स्वर में। फिल्म का नाम है प्रेम नगर। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है एस डी बर्मन ने।

आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। आप सुनिए प्रेम गीत फिल्म का गीत आशा भोसले के स्वर में। इंदिवर के बोल हैं, संगीत जगजीत सिंह का है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जीरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
3: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
3: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
3: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
3: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में,

0: लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फोमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है, और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है, और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों,
1: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में

0: से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
1: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
2: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
1: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
2: यस। साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
0: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
2: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
3: सू
1: जी,
3: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
1: जी हाँ
3: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही। जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
1: जी डॉक्टर साहब।
3: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
1: मैं पूछती हूँ।
0: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
2: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
1: क्या?
0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11 ओह
1: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
2: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
1: क्या गिन रही हो?
4: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
1: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
0: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
1: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
1: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4
1: मेरी तरफ देखो
4: सू, only 4

0: सिर्फ तीन बचे हैं।
1: क्या तीन बचे हैं? What's three, dear?
0: तीन पत्तियां।
1: पत्तियां?
0: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सु,
1: हाँ हाँ,
0: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
1: क्या लगता है?
0: यही कि बस अब तीन पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
1: क्या चांसी?
0: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
0: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: हाँ
0: सू, अब सिर्फ तीन पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
1: ओह जॉन्सी,
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
0: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
0: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए

0: आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
2: सू मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
2: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल सरक खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
2: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
2: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
2: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
2: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
2: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
2: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
3: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
2: हाँ।
1: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
1: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
2: बेहतर।
3: ये लो कॉफी पियो।
2: थैंक यू
3: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
2: क्या हुआ?
3: वो मिस्टर बेरमन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
2: कौन बेरमैन? वही बूढ़े कलाकार?
3: हाँ।
2: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
3: हाँ वही।
2: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
3: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
2: ओह गॉड,
3: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
2: क्या?
3: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
2: क्यों नहीं गिरा?
3: हाँ,
2: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
3: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया।
2: ओह,
3: उनके उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
2: पेंटिंग?
3: हाँ।
2: कैसी पेंटिंग?
3: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
2: ओह, तो वो पेंटिंग है?
3: हाँ।
2: असली पत्ता नहीं है?
3: नहीं।
2: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
3: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
2: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा और सो उन्होंने बना दिया।
3: हाँ जॉन्सी,
2: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस।
3: हाँ, उन्होंने बना दिया।
2: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
3: हाँ
2: मास्टरपीस।
3: हाँ
2: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
1: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
0: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

श्रद्धा जगताप की गाई गजलें अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत में। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: आकाशवाणी इंदौर से अब सुनिए लोक संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं रंजीत मालवीय और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी इंदौर। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार हैं रणजीत मालवी और साथी। आइए इनसे सुनते हैं ये मालवी लोकगीत।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 7 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की ये लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। एवियों में इस समय सम्मेलन का आउटरीच सत्र चल रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UGC परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता को बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेशों को भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें गांवों में अब कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर ही किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छाया श्रमिक योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग पहाड़ियों और तराई डुअर्स क्षेत्र में बंद पड़े 25 चाय बागानों को फिर से खोलने के प्रयास किए जाएंगे। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनन से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनन पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल इस समझौते को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वो लेबनन में बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक आवश्यक होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल होंगे आमने सामने। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में जानकारी लीजिए इस

सभा के शेष और कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर कार्यक्रम खेती गृहस्थी में आज आप सुनेंगे ऋषभ जैन का कविता पाठ, साथ ही सुनिएगा लोकगीत। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुन सकते हैं रात 8:00। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत प्रसारित किया जाएगा रात 9:15। आज रात 9:30 उर्दू कार्यक्रम कहकशां, इसका अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा। श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के गीत, कार्यक्रम होगा मन भवन, इसे आप सुन सकते हैं रात 10:00। रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे प्रवीण गोंडखिंडी का बांसुरी वादन, राग होगा पूरिया कल्याण। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम।

अब एक नजर कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन का प्रसारण समय रहेगा सुबह 6:30। 6:35 पर कार्यक्रम खेती की बातें में कल जानकारी देंगी डॉक्टर अनुराधा शर्मा। विषय होगा कुसुम चाय एक विलक्षण दवा। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जाएगा कल सुबह 6:40 पर। आपका पत्र ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सुबह 7:20 पर। सुबह 8:30 आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। 9:00 लोक संगीत में कलाकार होंगी लीलाबाई मालवीय और साथी। सुगम संगीत में 9:15 सुनिएगा नियम कानून गोगो। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 आपको सुन पाएंगे विदुषी परवीन सुल्ताना का गायन। राग होगा मेघ। 10:00 जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा। 10:05 से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। दिन में 11:00 से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से होगा। इसमें 11:00 सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। संग्रहालय से कार्यक्रम होगा दिन में 12:30। महिला कार्यक्रम दिन में 1:00। लोक संगीत 1:30। सुगम संगीत 1:45 पर। दिन में 2:00 फिल्म संगीत और 2:30 होगा चित्रपट संगीत। शाम की सभा आरंभ होगी 5:00 कार्यक्रम युववाणी के साथ। इसमें कल सुनिएगा एक ही फिल्म से के अंतर्गत मोहरा फिल्म के गीत। फिल्म संगीत 5:45 पर। 6:00 आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कल शाम 6:30 से आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे मैच की समाप्ति तक। तो ये रूपरेखा थी इस सभा की शेष और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना।
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कल नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बताया कि प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन कल्याण को बड़ी रफ्तार देते हुए कुल 24,200 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण सहित कुल 19,472,29,00,000 रूपये का पुनरीक्षित बजट स्वीकृत किया गया।
1: इंदौर की मेट्रो जिसकी लागत 2017 में 7,500 करोड़ का आकलन किया गया था, उसका पुनर्निरीक्षण अनुमान व कुछ क्षेत्रों में मेट्रो का अलाइनमेंट बदला गया, कहीं पर उसको अंडरग्राउंड भी किया गया, तो अब वह 12,900 के करीब उसकी लागत हो चुकी है। तो यह अतिरिक्त 5,388 करोड़ की लागत की स्वीकृति दी गई और अब यह इंदौर की मेट्रो 31 किलोमीटर की करीब 2030-31 तक पूर्ण रूप से वहां पर परिचालन में आ जाएगी।
0: मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स मॉडल पर चलाने का पायलट प्रोजेक्ट भी मंजूर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभ्यारण्य जाएंगे। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में शामिल होंगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कल नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करना, स्वयं सेवकों की सहभागिता बढ़ाना और देश भर में नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्त मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहलों का भी अनावरण करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान के दौरान देश भर में जागरूकता और सामुदायिक जन सहभागिता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनमें सामूहिक प्रतिज्ञा अभियान, जागरूकता रैलियां, साइकिल रैलियां, युवा नेतृत्व वाले अभियान, पोस्टर निर्माण, निबंध प्रतियोगिताएं, वेबिनार, विशेषज्ञों के साथ संवाद और नुक्कड़ नाटक शामिल है। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों और सांदीपनी विद्यालयों में आज से 30 जून तक स्कूल चलें अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत शाला प्रारंभ उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूलों में बाल सभा का आयोजन होगा। इसके साथ ही शाला में शत प्रतिशत नामांकन, पुस्तक वितरण, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, क्रियाशील बालिका शौचालयों की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता, अभिभावकों का शाला से जुड़ाव जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, इसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। आज मंत्रालय में नीट परीक्षा की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रहे। परीक्षा कराने में संलग्न सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों में 283 परीक्षा केंद्रों में सम्पन्न कराई जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय सत्र के दौरान सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, नीतिगत निर्णयों और विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों को सदन के पटल पर रख सकती है। वहीं विपक्ष भी प्रदेश में कानून व्यवस्था, किसानों, युवाओं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जनहित के मुद्दों को कर सरकार को घेरने की तैयारी में रणनीति तैयार करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में साप्ताहिक कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 के लिए देशव्यापी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अल नीनो की संभावित स्थिति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में कम बारिश या वर्षा में असमानता की आशंका है, वहां पहले से पूरी तैयारी की जाए ताकि किसी भी मौसमी चुनौती की स्थिति में किसानों को तुरंत विकल्प, सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। खरीफ 2026 के लिए फसलवार लक्ष्य, बुआई की प्रगति और राज्यवार तैयारियों के समीक्षा करते हुए कपास उत्पादन बढ़ाने पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम आतंकवाद के खिलाफ सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। सुपर्णा के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का मानना है कि मॉनसून के आने के बाद प्रदेश में बारिश की स्थिति में सुधार होगा। फिलहाल जून माह में प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। प्री मॉनसूनी गतिविधियों के चलते आज भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, शहडोल संभागों के 30 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खजुराहो लोकसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। झाबुआ में आज कलेक्टर ने जनसुनवाई से पहले राणापुर में ट्रेंचिंग ग्राउंड और सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। राजगढ़ जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ के अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कुकिंग कॉम्पिटिशन आयोजित किया गया। आगरमालवा में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना और ई श्रम कार्ड योजना के प्रचार प्रसार हेतु विशेष शिविर आयोजित किए गए। देवास जिले में 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्या खेत करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नर्मदापुरम जिले को मखाना उत्पादन के साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग का केंद्र बनाने की तैयारी शुरू की गई है। मंदसौर में जिला स्तरीय जन सुनवाई में कलेक्टर ने 120 आवेदकों की समस्याएं सुनकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में जबलपुर रेल मंडल ने ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू अर्जित करने में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। सीहोर में कल 17 जून को राजपूत संगठनों द्वारा महाराणा प्रताप जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई बिन्ना के तमारी बेन मनीषा शर्मा की प्रेम भरी राम राम। भाई बहनों देखो, हमारा कार्यक्रम में बहुत सारी सरकारी योजनाओं की बात करा अने ई योजनाओं अपने आर्थिक सहायता भी दे और अपना कामकाज जो भी अपन करा उमें अपने आगे बढ़ने का अवसर भी दे। अने अपन कई बार ऐसी बात करा जिका से अपने आर्थिक लाभ तो हो ही जोए पर साथे साथे सामाजिक तौर पे भी अपनों प्रतिष्ठा और मान बढ़े। हमारा कृषक भाई उनका लिए भी बहुत सारी योजना हमारी सरकार बनाई है, पर आज अपन बात करांगा ऐसी योजना के बारे में जिनमें करोड़ों लोग ना की जिंदगी बदल दी, या यूं कहूँ कि ऐसी योजना है जिन्हें करोड़ों लोग ना के जीवन दान दियो। हाँ भाई बहनों, बात कर रही हूँ आयुष्मान भारत योजना के बारे में। आयुष्मान भारत योजना हर एक मनक के लिए बड़ी कारगर योजना साबित हुई है। यानी कहवे नहीं कि बीमार पड़नो कोई का हाथ की बात तो नहीं रहे। बीमारी भी ना अमीरी देखे ना गरीबी, जब देखो कोई के भी आई के पकड़ी ले। ने वैसे भी आजकल अपनो खान पान कुछ इस प्रकार को हुई है कि बीमारी हो तो साते लगे लगीज रहे, अने बड़ी बड़ी घातक बीमारियों को उपचार घणो महंगो भी रहे। वैसे भी अपन आजकल देखा कि जरा सो बुखार आई जाए ने बाजार जाए ने दवा लेने जाए तो कई सारा रुपया अपना खर्चा हो जाए। अने हर एक मनक चाहे छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी उको पूरो इलाज ले और खर्चा से नहीं घबराए, इका लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करी गई है। छोटी बीमारी हो या बड़ी, जैसे कि दिल की बीमारी, किडनी, कैंसर, इन सब बीमारियों का इलाज में जो लाखों रुपया खर्चा हो उको सारो खर्चो जो है वह सरकार वहन करे। ऑपरेशन, दवाई ना, बीमारी के लिए कई सारा टेस्ट हो, इन सब को खर्चो सब सरकार उठावे। कहने को मतलब है कि कई बीमारी हो तो अपन दवाखाना में भर्ती हो वहाँ से लगे के यदि अपनी छुट्टी हो वहाँ तक को सगलो खर्चो पूरी तरह से मुफ्त रहे। और सबसे बड़ी बात या जो सुविधा है या सरकारी दवाखाना में नहीं बल्कि कई सारा बड़ा बड़ा निजी दवाखाना में भी दी जावे। दवाखाना में जाओ, बीमारी का लिए आयुष्मान कार्ड दिखाओ और मुफ्त में इलाज कराओ। भाई बहनों, अपना नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाइए कि आप आयुष्मान कार्ड बन भी सकता है, या फिर जो अपना ई मित्र होन है वहाँ जाके भी आप कोई भी कंप्यूटर सेंटर पर जाइए अपनो कार्ड बनवाई सकता है। पर जब भी कार्ड बनवाने जाओ तो अपनो आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवासी को प्रमाण पत्र, सक्रिय मोबाइल नंबर जैसी सगली जानकारी जो है वह अपना साथे लेके जरूर जाजो। आने इनी योजना की एक विशेष बात यह है कि 70 वर्ष से अधिक का कोई भी बुजुर्ग मनक हो वे आयुष्मान कार्ड को लाभ ले सकता है। इनमें आय को कोई बंधन नहीं है, चाहे उसकी आय कितनी भी हो उनको इलाज मुफ्त में होवेगो। तो भाई बहनों, 5 लाख तक को मुफ्त इलाज पाने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाओ और स्वास्थ्य लाभ पाओ। अन देखो, बीमारी होने से बचनो तो बहुत मुश्किल हुई है आज के जमाना में, पर इलाज सबके पूरो और अच्छो इलाज मिले इका लिए आयुष्मान कार्ड गरीब होने का लिए वरदान साबित हुआ है। भाई बहनों, या तो अपन ने करी आयुष्मान कार्ड योजना के बारे में बातचीत, अब क्यों नहीं एक लोकगीत अपन सुनना जी के गायो है भाई मांगीलाल बारोट ने।

0: बारोट को गए वो लोकगीत अभी अपन ने सुने हो। अंधे हो गीत और कविता होन अपना मनोरंजन का कितना अच्छा साधन है। आने मनोरंजन का साथे साथे देखो अपनी जो भावना होन है उनके व्यक्त करने को भी बड़ा अच्छा साधन है। कवि अपनी कविता का माध्यम से प्रेम दुख उमंग क्रोध जैसा बहुत सारा भाव अपना तक पहुंचावे। आने देखो मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति पाने को भी कविता एक अच्छा साधन है। अने आप आजकल तो कविता होन लोगों प्रेरणा देने का लिए भी सुनावे। अने ऐसी बहुत सारी कविता होन रे जो कि शब्दों को उनकी सजावट का साथ साथ अच्छा उपदेश और अच्छा संदेश भी हम तक पहुंचावे। ऐसा कवि ऋषभ जैन ने अपने बहुत सुंदर कविता पाठ सुनायो जी में उनने हरियाली बेटी और प्रकृति विषय के चुनियो है और इना विषय पे अपना भाव व्यक्त कर रहा है। तो सुना अपने कविता पाठ।
1: कार्यक्रम सुनने वाला सगलाज भाई बहन के मैतपुर वाला ऋषभ जैन की राम राम। मैं आज आपके मालवी कविता सुनाई रही हूँ और मेरो पहली मालवी कविता को शीर्षक है धरती माँ की लाज बचानी। धरती माँ की लाज बचानी है धरती की सुंदरता दादा मिलके हमें बढ़ानी है। बढ़ता हुआ प्रदूषण से धरती माँ की लाज बचानी है धरती माँ की लाज बचानी है। वन उपवन की शोभा न्यारी वन उपवन की शोभा न्यारी खुशबू से महकेगी क्यारी सच्ची मेहनत और लगन से हल हो है मुश्किल सारी। सच्ची मेहनत और लगन से हल हो है मुश्किल सारी। पेड़ में पुरखा वास करे है पेड़ में पुरखा वास करे है ऐसे ऐसो केवे नानी है। बढ़ता हुआ प्रदूषण से धरती माँ की लाज बचानी है बढ़ता हुआ प्रदूषण से धरती माँ की लाज बचानी है। धरती से हमसे धरती धरती से हमसे धरती फर्ज है रक्षा करा सभी हम। नहीं प्रदूषण बड़े धरा पे नहीं प्रदूषण बड़े धरा पे प्रण लो जब तक है दम में दम प्रण लो जब तक है दम में दम। अब तो जागो सोचो समझो नी करनी नादानी है। बढ़ता हुआ प्रदूषण से धरती माँ की लाज बचानी है बढ़ता हुआ प्रदूषण से धरती माँ की लाज बचानी है। इसके पश्चात एक और मालवी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है हरियाली का गीत। सच्ची मेहनत ही है दादा जीवन को संगीत सच्ची मेहनत ही है दादा जीवन को संगीत। हल्की नोक से लिखा मिलकर हरियाली का गीत। एक दाना से कितना दाना एक दाना से कितना दाना देवे है या धरती हर घर के खुशहाल बनाती सारा संकट खुद हरती। पीड़ा समझा धरती की हम बनके सच्चा मीत हरियाली की नोक से लिखा मिलकर हरियाली का गीत। खेती भी है लाभ को धंधो खेती भी है लाभ को धंधो नई तकनीक अपनाओ खेती भी है लाभ को धंधो नई तकनीक अपनाओ। पानो है तो बोनो सीखो पानो है तो बोनो सीखो इससे लगन लगाओ पीछे कदम हटानो नहीं है मत हो भयभीत। हल्की नोक से लिखा मिलकर हरियाली का गीत हल्की नोक से लिखा मिलकर हरियाली का गीत। दुख सुख दोनों साथ चले है दुख सुख दोनों साथ चले है दुख में मत घबराओ सुख भाई के मत खुद के भूलो सबके यो समझाओ। सुख भाई के खुद के मत भूलो सबके यो समझाओ। हार देख मत हिम्मत हारो होगा एक दिन जीत हार देख मत हिम्मत हारो होगा एक दिन जीत। हल्की नोक से लिखा मिलकर हरियाली का गीत हल्की नोक से लिखा मिलकर हरियाली का गीत। इसके पश्चात एक और कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है

0: करुणो नव निर्माण है। हाथ से हाथ मिलाओ दादा, हाथ से हाथ मिलाओ दादा, करुणो नव निर्माण है। भाईचारा और एकता यह अपनी पहचान है, भाईचारा और एकता यह अपनी पहचान है। मेहनत से ही निज धरती उत्पादन होवे भरपूर, हम इतिहास लिखा मेहनत से, नी रेवा मंजिल से दूर। मेहनत करवा वाला के ही मिलियो यहाँ सम्मान है। भाईचारा और एकता यह अपनी पहचान है, भाईचारा और एकता यह अपनी पहचान है। सदा देवे मालव माटी, सदा देवे मालव माटी, ढक ढक पानी पक पक रोटी। चमकाओ मेहनत से दादा, क्यों कहो के किस्मत खोटी। चमकाओ मेहनत से दादा, क्यों कहो के किस्मत खोटी। महाकाल बाबा को, महाकाल बाबा को अपने मिलो सदा वरदान है। भाईचारा और एकता यह अपनी पहचान है, यह अपनी पहचान है। इसके पश्चात एक और कविता जिसका शीर्षक है बेटी के बचानो है। बदलियो अबे जमानो है, बदलियो अबे जमानो है, बेटी के बचानो है, बेटी के बचाई के दादा, बाप को फर्ज निभानो है। बेटी के बचानो है, बेटी के बचानो है, करो मती पेलासी भूल, करो मती पेलासी भूल, बेटी घर आंगन को भूल। पढ़े लिखे ने बड़े जो आगे, पढ़े लिखे ने बड़े जो आगे, बेटी तारे दो दो कुल, बेटी तारे दो दो कुल, बेटा बेटी में भेद नहीं रखनू, सबके यो समझानो है। बेटी के बचे के दादा, बाप को फर्ज निभानो है, बेटी के बचे के दादा, बाप को फर्ज निभानो है। दुनिया बदली तुम भी बदलो, दुनिया बदली तुम भी बदलो, सोचो समझो और पग धरो अगलो। दुनिया बदली तुम भी बदलो, सोचो समझो और पग धरो अगलो। खूब पढ़ाओ गुणी बनाओ, खूब पढ़ाओ गुणी बनाओ, योज दाइजो दई दो सकलो, योज दाइजो दई दो सकलो। गुण का ग्राहक लोक सभी है, गुण का ग्राहक लोक सभी है, नानी नी यो नानो है, नानी नी यो नानो है। बेटा के बचाई के दादा, बाप को फर्ज निभानो है, बेटी के बचाई के दादा, बाप को फर्ज निभानो है। बेटी घर की शान कहलावे, बेटी घर की शान कहलावे, पूरा घर को मान बढ़ावे। रण सुर ताल गगन में नारी, यो अपनो इतिहास बतावे। रण सुर ताल गगन में नारी, यो अपनो इतिहास बतावे। पहला भरमाया था अबे नहीं भरमानो है। बेटी के बचाई के दादा, बाप को फर्ज निभानो है, बेटी के बचाई के दादा, बाप को फर्ज निभानो। एक और कविता आपके सम्मुख जिसका शीर्षक है बेटी घर को मान है। बेटी घर को मान है, प्रतिभा है सम्मान है। बेटी घर को मान है, प्रतिभा है सम्मान है। जिस घर में नहीं बेटी वो घर पतझड़ है वीरान है। बेटी घर को मान है, प्रतिभा है सम्मान है। जिस घर में नहीं बेटी वो घर पतझड़ है वीरान है। आज समय की यही पुकार, आज समय की यही पुकार, बिटिया से मैं क्या घर दुहार। खुशबू की परिभाषा बेटी, बेटी जीवन को आधार। पढ़ी लिखी ने बड़े जो आगे, लिखे एक नयो इतिहास। पढ़ी लिखी ने बड़े जो आगे, लिखे एक नयो इतिहास। बेटी नहीं बेटा से कम है, बेटी नहीं बेटा से कम है, अवसर दो रखो विश्वास, अवसर दो रखो विश्वास। घर समाज और देश के दादा बेटी पे अभिमान है। जिस घर में नहीं बेटी वो घर पतझड़ है वीरान है। जिस घर में नहीं बेटी वो घर पतझड़ है वीरान है। देव उठ्या ने करी सगाई, देव उठ्या ने करी सगाई, नी देखी बेटी की उम्र। देव उठ्या ने करी सगाई, नी देखी बेटी की उम्र। इन्हीं लगन में झट निपटा काका जी ने कसी कमर, इन्हीं लगन में झट निपटा काका जी ने कसी कमर। बेटी का भी सपना दादा, भरनी नहीं उड़ान है, जिस घर में नहीं बेटी वो घर पतझड़े वीरान है। सभी के हमारी घनी घनी राम राम।
1: भाई बहनों, अभी अपन ने कविता पाठ सुनियो, जिको विषय तो हरियाली, बेटी और प्रकृति, और कवि था ऋषभ जैन। भाई बहनों देखो, अब लगी रही है कि बस जून को महीनों समाप्त होने भेजे आना, अपना किसान भाइयों बवनी की तैयारी भी करी रहा है, खाद की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था, सब प्रकार को काम अपना किसान भाइयों करी रहा है। पर यो भी ध्यान रख जो, जब आप बीज का बोने की तैयारी करो तो बीजोपचार के मत भूल जो। बीज उपचार करना हर कृषक भाइयों के लिए जरूरी है, क्योंकि शुरुआती बीमारी हो जो अपना पौधा के लगे, उन सबसे बचाने का लिए बीजोपचार सबसे बड़ी सहयोग करे है। एक बहुत सारी रासायनिक विधि होन भी रहे और कुछ जैविक विधि होन भी रहे। रासायनिक में फफूंदनाशी, कीटनाशी और भी कई तरीका रहे जिससे कि बीजों के उपचारित किए जाए, और जैविक विधि में ट्राइकोडर्मा, बीजामृत और राइजोबियम कल्चर जैसी विधि उनके अपन अपने के अपनी कृषि का लाभ उठा सकता है। आने खास करके आप अपनी सोयाबीन की बवनी को समय तो आई रही है, किसान भाई उन बवनी की तैयारी में भी लग्या हुआ है कि वो जैसे पानी पड़े तो बस किसान भाई उन तैयार है कि बवनी का काम काज में लगी जाएगा। पर यो भी ध्यान रख जो कि जब आप बीजोपचार करो तो उगा लिए बवनी से एक दिन पहला बीजोपचार जरूर कर जो। ज़्यादा समय पहला यदि अपन बीजोपचार कर लेंगे तो वह जो दवाई है उनको असर कुछ कम हो जाएगा। आने वैज्ञानिक पद्धति से यदि बीजोपचार करोगा तो और भी फायदेमंद रहेगा। वैज्ञानिक पद्धति FIR इके कैसे अपन इन्हीं पद्धति से बीजोपचार करा, यो जानने के लिए सुना एक वार्ता। वार्ताकार है डॉक्टर संजीव कुमार, कृषि वैज्ञानिक सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से ही है।
2: नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हूँ, और आज मैं आप सबके साथ जो सोयाबीन में बीजोपचार की प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी साझा करना चाहूँगा। चूँकि बोनी का समय नज़दीक आ चुका है तो हम सभी अपने खेत की तैयारी में लगे हुए हैं, और बोनी से जस्ट पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है बीजोपचार की, जो कि करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम जानेंगे कि बीजोपचार क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और उनका डोज क्या है जिनसे बीजोपचार किया जाए। देखिए, बीजोपचार एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें कि हम जो सोयाबीन की जो बीज रहती है उस पर जो दवाइयाँ हैं, जो मतलब फंगिसाइड हो गया या इंसेक्टिसाइड है, उससे हम ट्रीटमेंट करते हैं। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है कि बीज और जो प्रारंभिक मतलब जो पौधे रहते हैं सोयाबीन के, तो उनसे रोग तथा कीटों से मतलब सुरक्षा मिलती है और अंकुरण अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे कि बीजोपचार क्यों ज़रूरी है। देखिए, बीजोपचार से क्या होता है कि जो बीज एवं मृदा जनित जो रोग हैं, जैसे कि आपका जड़ सड़न हो गया या कॉलर रॉट हो गया या चारकोल रॉट हो गया, इनसे सुरक्षा मिलती है। साथ ही साथ बीज स्वस्थ रहता है, पौधे जो हैं एक समान रूप से निकलते हैं, और जो प्रारंभिक कीट जो कीट रहते हैं जिनका अटैक होता है, जैसे कि तना मक्खी हो गई या सफ़ेद मक्खी या जो अन्य शुरुआती कीटों का जो प्रकोप होता है वो कम हो जाता है। और अंततः जो हम राइजोबियम से जो हम जो राइजोबियम जीवाणु हैं तो वो क्या करते हैं, जो जो जड़ें रहती हैं, जो सोयाबीन की जो जड़ें रहती हैं उनमें गांठें बनाती हैं, और जो पौधे हैं उनको नाइट्रोजन भी मिलती है। तो जो सोयाबीन में जो बीजोपचार है तो उसमें हमें जो दवाइयां हैं जैसे कि फंगिसाइड मतलब कि फफूंदनाशक है, कीटनाशक है, राइजोबियम है, तो इनसे ट्रीटमेंट करने के लिए एक सिलसिलेवार क्रम है जिसको हमें फॉलो करना है। और वो जो मतलब क्रम है जिसको हम बोलते हैं कि FIR, यानी कि फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, और हिंदी में अगर हम बोलें तो फफूंदनाशक, कीटनाशक और राइजोबियम। तो जो फफूंदनाशक है, सबसे पहले हमें बीज को फफूंदनाशक से ट्रीटमेंट करना होता है। और आजकल मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन एक जो दवाई है वो बहुत ही अच्छी है, जिसमें कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन, थायोफ्रेट मिथाइल और थायोमिथोक्सैम जो है पूर्व मिश्रित दवाई है। इसमें दो फफूंदनाशक और एक कीटनाशक है, और इसे बीजोपचार करने के लिए जो मात्रा है 10 मिलीलीटर प्रति किलो बीज दर के हिसाब से आप इसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इनसे इसमें क्या है कि फफूंदनाशक और कीटनाशक दोनों मिला हुआ है, तो हमें अलग से कीटनाशक से ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कीटनाशक अलग से इसी ट्रीटमेंट करना भी है, तो फफूंदनाशक से बीजोपचार करने के बाद जो बीज है उसको हम छाया में सुखा लेंगे, और जो जो कीटनाशी जो हैं, जो अनुसंचित जो कीटनाशी दवाइयां हैं, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड हो गया,

0: तो उसकी मात्रा 1.25 मिलीलीटर प्रति किलो बीज दर के हिसाब से, या नहीं तो थायमिथोक्सैम 30 FS 10 मिलीलीटर प्रति किलो बीज दर के हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम बीजोपचार करें तो जो राइजोबियम कल्चर हो गया या अन्य कोई जैविक कल्चर है तो उनसे हमें बीजोपचार सबसे लास्ट में करना होता है। और जैसे मान लीजिए हमें कल बोनी करनी है तो हमें बोनी से 24 घंटे पहले अधिकतम या बोनी से कुछ घंटे पहले जो है हम राइजोबियम कल्चर से या किसी भी जैव उर्वरक से हम बीजोपचार कर सकते हैं, जैसे कि राइजोबियम हो गया या PSV कल्चर हो गया। तो आप जो उपचार का जो क्रम है आप वो याद रखें कि फफूंदनाशी, उसके बाद कीटनाशी और सबसे लास्ट में जैव उर्वरक जैसे कि राइजोबियम PSV। और इनका कारण ये है कि यदि हम फफूंदनाशी और जैव उर्वरक एक साथ अगर लगा दें तो फफूंदनाशी लाभकारी जीवाणुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हमेशा जो जैव उर्वरक है या जो जैविक कल्चर है उसको हमें सबसे अंत में सी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपको दी गई है आप उसको फॉलो करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे और निश्चित ही आपको इनसे लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
1: डॉक्टर संजीव कुमार, कृषि वैज्ञानिक, सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से, इनने अपने बताया कि सोयाबीन में FIR पद्धति से बीजोपचार करना चाहिए। आना FIR पद्धति को उपयोग करके कृषि में बीज जनित और मिट्टी जनित जो रोग होने उनसे अपन अपनी फसल के बचे ही सकता है। आना भयोन ध्यान रख जो पहला फफूंदनाशी, फिर कीटनाशक और फिर राइजोबियम, इन्हीं दवाओं को उपयोग करके अपन अपने बीजोपचार जरूर करा। अने देखो भाई बहनों, अब वक्त है कि आज मंगलवार को दन अने रामायण पाठ अपन नहीं सुना, ऐसा तो हो ही नहीं सको। तो मुकेश को गाय हुआ सुंदरकांड को प्रसंग अपन सुना।

कान के और मन के सुख देने वालों मुकेश गायो हुआ सुंदरकांड को प्रसंग अभी अपन ने सुनियो। अनेना प्रसंग का सातेज अब हो रही है चलने की बखत, पर चलने से पहला एक वादो करा कि कल फिर आवांगा तुमसे मिलने, करांगा खूब सारी बातचीत, सुनांगा लोकगीत और विशेषज्ञ भाइयों उनकी बातचीत। आज मनीषा शर्मा के तम दो विदा, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक मधुर गीत के साथ, जिसमें होठों की मुस्कान की तुलना फूलों से की गई। आइए प्यार की इसी मीठी खुशबू और मधुर एहसास के साथ ये सदाबहार नगमा सुनते हैं।

श्रोताओं, प्यार और अपनापन जीवन की वो धूप है जिसके बिना खुशियों के फूल कभी नहीं खिलते। भावनाओं की इसी कोमल दुनिया में चलते हैं अब इस गीत के साथ।

कोई साथी है तो प्रेम है। प्रेम केवल साथ निभाने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने का एहसास भी है। अब जो गीत आप सुनेंगे, इसी विश्वास, समर्पण और सच्चे प्रेम की खूबसूरत अभिव्यक्ति है।

श्रोताओं, प्यार की भाषा हमेशा शब्दों से नहीं कही जाती। कभी एक मुस्कान, कभी एक खामोश अदा और कभी झुकी हुई नज़र भी दिल की पूरी कहानी को बयां कर देती है। अब जो नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो आज भी उतना ही ताज़ा लगता है जितना अपने दौर में लगता था।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

श्रोताओं, इस गुरुवार दिनांक 18 जून को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है आंखों के विभिन्न प्रकार के रोग और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति कोचर से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कर लीजिए। गुरुवार दिनांक 18 जून को समय सुबह 10:32 से। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो फोन करने ना भूलें गुरुवार दिनांक 18 जून को समय सुबह 10:32 पर। विविध भारती इंदौर से FM 101.6 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। उनकी चाहत में हम कुछ इस तरह बंधे हुए हैं कि वो साथ भी नहीं और हम अकेले भी नहीं।

प्रेम की शरारत और मासूमियत दोनों में ही खूबसूरती है। कभी मुस्कान दिल चुरा लेती है तो कभी चंचल आंखें दिन का चैन ले जाती।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी इंदौर, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। नजर में नींद की हसरत लिए चुपचाप बैठे हैं, कोई बहुत दूर रहकर भी हमें सोने नहीं देता।

श्रोताओं, प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। कभी ये मुस्कान बनकर चेहरे पर खिल उठता है, तो कभी दिल की धड़कनों में छुपकर धीरे धीरे गुनगुनाता है।

प्रेम एक एहसास है जो हर मोड़ पर अपने सपनों को जगाता है और अपने प्यार की ताकत को महसूस करना चाहता है, जो जीवन के हर सफर को एक नई उम्मीद से भर दे।

श्रोताओं, इस गुरुवार दिनांक 18 जून को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है आंखों के विभिन्न प्रकार के रोग और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति कोचर से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कर लीजिए। गुरुवार दिनांक 18 जून को समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो फोन करना ना भूलें गुरुवार दिनांक 18 जून को समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार

0: थार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियॉन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियॉन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं

0: ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1,000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुवाई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां

0: से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries, and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability, and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
4: Yes, Sahara. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interests as well as priorities of the Global South. From India's standpoint, one key outcome would be deeper cooperation in areas such as trade, technology, innovation and resilient supply chains, particularly at a time when countries are seeking reliable economic partners. Another important area is collaboration on emerging technologies, including artificial intelligence, where India is increasingly playing a significant role in global discussions. At the same time, India is expected to push for greater international focus on issues that directly affect developing nations, including sustainable development, climate finance, energy security, and inclusive economic growth. The summit also provides an opportunity for India to strengthen bilateral partnerships with major economies on the sidelines. Saira.
3: Well, thanks, Ankit, for those updates. Moving on, earlier in the day, Prime Minister Modi reached Evian on a two-day visit to attend the summit, which commenced yesterday. In a social media post after his arrival, the Prime Minister said that he looked forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts towards a more sustainable and prosperous planet. On the sidelines of the summit, the Prime Minister is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, UK Prime Minister Keir Starmer, and President of UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later this evening, he will attend a gala dinner to be hosted by President Macron. A key engagement during the summit will be PM Modi's meeting tomorrow with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of preparations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in the context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses, and advanced contingency plans for low rainfall districts. Our correspondent has filed this report.
5: The Agriculture Minister gave a clear message that protecting farmers' interests is the government's top priority under the guidance of Prime Minister Narendra Modi. The meeting focused on ensuring that all necessary steps are taken well in advance to safeguard agriculture and farmers from any adverse weather conditions that may arise during the season. Mr. Chauhan gave clear directions that full preparations should be made in advance in those districts where there is a possibility of low rainfall or uneven rainfall. He said that such districts should be clearly identified and crop-wise contingency plans should be prepared in coordination with the state governments so that farmers can be provided immediate alternatives, advice and support that in any weather challenge situation. He strongly emphasized that special attention should be given to water conservation, moisture management, intercropping and alternative crop patterns. With Suparna Sekia, Rohan, Akashwani News, Delhi.
3: Home Minister Amit Shah today chaired a crucial meeting in New Delhi, during which consensus was reached among six states on the long-pending Keshav multi-purpose dam project aimed at rejuvenation of the Yamuna River. The Home Minister said in a statement, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign an MOU for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Keshav project will be placed before the Union Cabinet for approval. The Supreme Court today sought response from the centre and states on a plea alleging the misuse of the unique identification

सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम झुक गया आसमान। हसरत जयपुरी की लिखी गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में पालकी फिल्म का गीत। शकील बदायूनी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया नौशाद ने।

आकाशवाणी इंदौर से अभी आप सुन रहे थे चित्रगीत। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

आदाब दोस्तों, उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त वाजिद खान। इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आबशार गजल प्रोग्राम के तहत आज हम बात करेंगे बहादुर शाह जफर की हयात और शायरी के उनवान पर। सामईन, मुगलिया सल्तनत के आखिरी तख्तनशीन बादशाह बहादुर शाह की विलादत अकबर शाह सानी के जमाना वली अहदी में 18 शाबान 1189 हिजरी बमुताबिक 14 अक्टूबर 1775 को हफ्ते के रोज गुरूबे आफ्ताब के वक्त दिल्ली में हुई। अबू जफर तारीखी नाम था जिसके आदाद 1189 होते हैं। अपने तारीखी नाम अबू जफर की रियायत ही से उन्होंने अपना तखल्लुस जफर रखा था। जफर की तालीम और तरबियत किलाए मुअल्ला में पूरे एहतमाम के साथ हुई, जहाँ मुख्तलिफ उलूम फ़नून में उन्होंने महारत हासिल की। बहादुर शाह किले की जिंदगी और वहाँ के मुख्तलिफ कामों में भी दिलचस्पी लेते थे। किले के दस्तूर के मुताबिक बहादुर शाह जफर की शादी 9 उम्री में ही कर दी गई थी, जिसके सबब वो ताजपोशी के वक्त पोते पोतियों वाले थे। बादशाह बहादुर शाह की बेगमात कितनी थी उनकी तादाद सही मालूम नहीं, लेकिन मुख्तलिफ जराए से ये नाम सामने आते हैं: शराफत महल बेगम, जीनत महल बेगम, ताज महल बेगम, शाह आबादी बेगम, अख्तरी महल बेगम, सरदारी बेगम। इनमें जीनत महल उनकी सबसे ज्यादा चहीती थी। जफर के तकरीबन 16 बेटे और 31 बेटियां थीं, जिनमें से 12 शहजादे 1857 तक जिंदा थे। अंग्रेजों की तरफ से जफर को 1 लाख रुपए पेंशन मिलती थी, जो उनके शाहाना अखराजात के लिए काफी नहीं थी। साहूकारों के तकाजे उनको फिक्रमंद रखते थे। लाल किले के अंदर चोरियों और गबन के वाकया शुरू हो गए थे। अंग्रेजों ने फैसला कर लिया था कि दिल्ली की बादशाहत खत्म कर दी जाए और शहजादों का वजीफा भी मुकर्रर कर दिया जाए।

दोस्तों, अभी आप गुलूकार गणेश दत्त जोशी की जादुई आवाज में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था बहादुर शाह जफर का। सामीन, अंग्रेजों से मुहायदा हो जाने के कुछ ही दिनों बाद 1857 का हंगामा बरपा हो गया, जिसकी कयादत दिल्ली में शहजादा मुगल ने की। अंग्रेजों ने बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली में हंगामा कर रहे बागियों का साथ देने और आजादी की तहरीक की हिमायत करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च 1858 को अदालत ने बहादुर शाह को उनके तमाम जराइम का कसूरवार ठहराया। 7 अक्टूबर 1858 को साबिक शहंशाह बहादुर शाह जफर ने दिल्ली को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया और रंगून में जिला वतनी के दिन गुजारते हुए 7 नवंबर 1862 को सुबह 5 बजे इस दारे फानी को अलविदा कहा। एक शेर में वो कहते हैं, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। बहादुर शाह जफर सिर्फ आखिरी मुगल बादशाह ही नहीं थे, बल्कि वो उर्दू शायरी में दाखली एहसासात, दर्द व कुर्ब और तसव्वुफ के एक इंतहाई मोतबर और बुलंद पाया शायर थे। उनकी शायराना अजमत का असल राज उनके लहजे की सच्चाई, बेसाख्तगी और दर्द की वो शिद्दत है जो आज भी पढ़ने वालों की आंखें नम कर देती है, क्योंकि जफर की शायरी महज तखय्युलाती नहीं बल्कि उनकी अपनी जिंदगी के तल्ख हकायक और बर्रे सगीर की तहजीबी शिकस्त का नूहा है। वो अपने कलाम में दुख, हसरत, बेबसी और महरूमी को इस सादगी और असर आफरीनी के साथ पेश करते हैं कि कारी बराहे रास्त उनके जज्बात से जुड़ जाता है। उनकी गजलों में दाखली एहसासात की गहराई उनको अपने हम असरों में नुमाया करती है। उनका ये शेर उनके दर्द की पहचान बन चुका है। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ।

सामईन अभी आप गुलूकार रूपेश कुमार लाल की दिलकश आवाज में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर का सबसे बड़ा तारीखी कारनामा उर्दू गजल को सादगी और असर आफरीनी के साथ आम करना था। उनकी शायरी ने आने वाले अदवार के कई बड़े शायरों को मुतासिर किया। बकौल मौलाना हाली, जफर का तमाम दीवान जबान की सफाई और रोजमर्रा की खूबी है, अव्वल ता आखिर यकसा है। बहादुर शाह जफर की शायरी अपनी एक अलग शनाख्त रखती है। जफर की शायरी उनकी जिंदगी की दस्तावेज भी है। वो कहते हैं, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। जफर की शायरी में अफसुर्दगी के असबाब खारजी हालात में तलाश किए जा सकते हैं। उनकी शायरी से एक ऐसा किरदार उभरता है जिसकी हर सांस में गम की लहरें पोशीदा हैं। वो कहते हैं, शमा जलती है पर इस तरह कहाँ जलती है, शमा जलती है पर इस तरह कहाँ जलती है, हड्डी हड्डी मेरी ए सोजे नेहा जलती है। जफर की शायरी का दूसरा अहम हिस्सा हुस्नो इश्क के मौजूआत पर मबनी है। जफर ने गजल की मुस्तहकम रिवायत को नहायत सलीके और फनकारी के साथ बरता है। उनकी इश्किया शायरी में तगज़ुल की चाशनी भी जगह जगह मौजूद है। वो कहते हैं, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र व करार, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र व करार, बेकरारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो न थी,

0: गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था बहादुर शाह जफर का। दोस्तों, जफर बतौर शायर अपने जमाने में मशहूर व मकबूल थे। मुंशी करीमुद्दीन तबकाते शौराए हिंद में लिखते हैं, शेर ऐसा कहते हैं कि हमारे जमाने में उनके बराबर कोई नहीं कह सकता। तमाम हिंदुस्तान में अक्सर कव्वाली उनकी गजलें, गीत और ठुमरियां गाते हैं। सामईन, बहादुर शाह जफर की शायरी महज जवाल का नुहा नहीं बल्कि तहजीब दहली की आखिरी रोशनी भी है। उनके कलाम में एक शिकस्त खुर्दा बादशाह की आहकम और एक हसास दिल साहिब जोक और तहजीब शनास शख्सियत की गहरी आवाज ज्यादा सुनाई देती है। उनकी शायरी में जो चीज सबसे ज्यादा असरअंदाज होती है वो दर्द और तहजीब का इम्तिजाज है। जफर का दुख सिर्फ जाती नहीं बल्कि इज्तिमाई है, लेकिन इस दुख को वो जिस सादगी, नरमी और वकार के साथ बयान करते हैं वो सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि एक साहिब ज़र्फ इंसान की गवाही देता है। दोस्तों, इसी मालूमात के साथ हमारा आज का ये प्रोग्राम कहकशां यहीं खत्म होता है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपने खतूत के जरिए हमें जरूर मुत्तला करें। हमारा पता नोट कीजिए, उर्दू प्रोग्राम कहकशां मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल, पिन 462002। अब आपके दोस्त वाजिद खान को दीजिए इजाजत। आदाब।
1: निजी में 4.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम मन भवन के सभी श्रोताओं को महिमा का नमस्कार। आज की सुहानी महफिल की शुरुआत करते हैं बेहद खूबसूरत गीत से, जिसके लिए हमारे बहुत सारी फरमाइश लिखकर भेजी है। फरमाइशकर्ताओं के नाम हैं भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती गणेश दादा, कार्तिक भाऊ और संजना मराठा, ललिता नारायण खर्चे इसी गीत को पसंद करते हैं। मालेगांव से सुनीता बाई घायल, सानिका घायल, गजानन घायल, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा, इंदौर से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा हदिया, अस्मा सालिया, शोएब पोत्रा, मुश्ताबा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई, अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, इंदौर से पसंद करते हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले, खंडवा से इस गीत को सुनना चाहते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। तो सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत आपको लता मंगेशकर तलत अजीज की आवाज में। फिल्म का नाम है बाजार, संगीत खयाम का है, गजल मखदूम मोहिउद्दीन की।

रिश्तों की बड़ी खासियत होती है कि बरसों बाद भी दिल को उसी तरह से छू जाते हैं। ये यूं कहें कि सुनहरे दौर के ये गीत आज भी हमारे दिलों में उतनी ही ताजगी के साथ बसे हुए हैं। लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म से मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजें हैं। पसंद आप सबकी है। कोल्हापुर से तुषार कोड़ने, प्रसीक कांबले, एकता कांबले, मेघना कोड़ने, उत्कर्षा कांबले और अरुण, इसी गीत को पसंद किया है। बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली ने। महाराष्ट्र से पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित सोनू मोनू, झुमरी तलैया से देव इंगोले, छकुली इंगोले, छोटू दादा इंगोले और टेलर आर डी इंगोले। हिंगोली से रामचंद्र, सिद्धांत टिंकू, रमाबाई सुरेंद्र, मयूरी सुरभि, मंजूषा और गौतम इंगोले। लाबरी अभेरू से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कृणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार और आसिफ। सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। और अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। सुनिए अपनी पसंद का ये अगला गीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी इंदौर और इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं, सुरों की इस महफिल में आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। चलिए पढ़ते हैं आपकी ही फरमाइश पर अगले गीत की ओर, जिसे हमने लिया है कोरा कागज फिल्म से। आवाज किशोर कुमार की है। एम जे हसमत के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। सुनना चाहते हैं आप सब पाठर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची, अनुश्री, धनश्री, सूरजी लोंढे, प्राची लोंढे और एकलव्य लोंढे। महाराष्ट्र से अभिजीत गावनकर, सरिता प्रिंस और एकांश, सिद्धांत प्रणीता गावनकर। नागपुर से शैलेश, वैशाली, सुमित और ध्वनि गावनकर। पुणे से प्रियंका आर्य, पंकज पाड़ोदे, जरूड़ वरुड़ से बाबा साहब पाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे। इंदौर से इस गीत को पसंद करते हैं रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, राजश्री, बी आर नामदेव, धीरज, सुमति, निधि। और इसी गीत को पसंद किया राजपुर से घीसु दलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और गुणाल दिलवारे ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। वाशिम से अशोक चुमले, दिनेश चुमले, रूपेश, लीलाबाई, चैताली और प्रीति चांदने। खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। खंडवा से इस गीत को पसंद करते हैं अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। सागर इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम के स्वर में। जावेद अख्तर के बोल हैं या रहमान का संगीत है। सुनना चाहते हैं आप सब सुनावत से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार, इंदौर से रेखा, संतोष, रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती, गणेश, संजना और ललिता नारायण खर्चे। महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, अकोला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, मानपुर से विजय वैद, रानी महिमा और नीतू बैद, ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल, फिशाल, शीला और गायत्री, ग्राम पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेतान, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक, मीका विरक, बलिया से ओम प्रकाश रॉय, ऊषा रॉय, अमित और हैप्पी रॉय, गाजीपुर से प्रदीक, रोशनी और प्रांजल रॉय, गाजीपुर से ही अवधेश रॉय, प्रीति रॉय और नवनीत रॉय। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, लगता है गीतों का ये कारवां यूं ही चलता रहे, पर समय की पाबंदी है। लेते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सभी की पसंद पर। सदमा फिल्म से जिसे गाया है सुरेश बाडकर ने, बीजलपुर से मोहनलाल चौहान, ललिता, प्रियंका, पंकज, सोनू, नितिन, राहुल, गुंजन, मुस्कान चौहान, अदव्या, अंकित सलोनी, कान्हा, ऋषु चौहान। इसी गीत को पसंद करते हैं जालना से सुधाकर, प्रशांत, प्रणव देशमुख, संचित, जगुताई, स्वाति बाई, वर्षाताई, पूजा, प्रणाली और ऋतुजा। इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले, भाटापारा धतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक और झावेंद्र कुमार, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां हरिद्वार से इस गीत को पसंद करते हैं, बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनश्वरी वर्मा, सारागांव से सुजान, सोहात्रा, आयुषी और कृत वर्मा, पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफी मंसूरी, नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि श्रीमती शीतल राजेश।

तो श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही। आपकी फरमाइश और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी गीतों और यादों की नई सौगात के साथ हमारे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए महिमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब पेश है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रवीण गोड खिंडी का बांसुरी वादन। राग है पूरिया कल्याण, संगीतकार तबले पर उल्हास राजहंस।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे प्रवीण गोडखिंडी का बांसुरी वादन। राग था पुरिया कल्याण, संगतकार तबले पर उल्हास राजहंस। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark Inam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships, needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer on the sidelines of G7 summit in Avignon, France. Tomorrow, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors besides exchange.